मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, DTH, DRM 1233 किलो हर्ट्स, वेव्स OTT और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 सितंबर सन 2026, सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30

0: तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी साथ अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISET संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनाधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरेना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें सब्जियों की देखभाल विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: भाइयों, आज हम सब्जियों की देखभाल के बारे में चर्चा करेंगे। जो किसान भाई भिंडी की खेती किए हुए हैं, अगर उनकी फसल में पीला शीरा मोज़ेक रोग लगता है तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले उन प्रभावित पौधों को उखाड़ कर उन्हें जला दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में मुख्य रूप से एक तो कद्दू का लाल कीड़ा लगता है, उसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। यह कीड़ा फसल की प्रारंभिक अवस्था में सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है। इस कीट का प्रौढ़ पत्तियों को खाता है।

0: और उन उसमें अनियमित छेद बन जाते हैं। इनके लार्वे जमीन में पड़े रहते हैं जो कि लताओं और फलों को प्रभावित करते हैं। प्रभावित पौधा सूख जाता है और फल सड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बोरिल धूल का बुरकाव करना चाहिए, 6 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से, या मेलाथियन 50 ईसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फल की मक्खी भी कद्दू कुल की सब्जियों की भयंकर शत्रु है। इसकी मादा अपने जननांग से फलों में छेद बनाकर अंडे देती है, जिनमें से 48 से 72 घंटे के अंदर बच्चे निकल आते हैं। ये नवजात शिशु फल को अंदर से ही खाकर खराब कर देते हैं और फल सड़ जाते हैं। कीड़े के नियंत्रण के लिए फल लगने की प्रारंभिक अवस्था में 20 से 40 मिलीलीटर मेलाथियन 50 ईसी और 1 किलोग्राम गुड़ को 20 लीटर पानी में घोलकर 1 सप्ताह के अंतर पर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में माहू से भी नुकसान होता है। इसका शिशु पत्तियों से रस चूसता है, जिससे पत्तियां सिकुड़कर पीली पड़ जाती हैं। यह कीड़ा एक प्रकार का चिपचिपा तरल पदार्थ भी छोड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 30 ईसी नामक रसायन का प्रयोग करते हैं। डाइमिथोएट दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। जयसिड्स छोटे आकार के हरे कीट होते हैं। इसके प्रौढ़ तथा निम्फ दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं। यह कीड़ा करेला को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रकोप से पत्तियों में सिकुड़न हो जाती है। अब कुछ बातें इन सब्जियों में लगने वाली बीमारियों से संबंधित। पहले पाउडरी मिल्डू यानी खररा रोग की चर्चा। इस रोग से पत्तियों तथा तने दोनों प्रभावित होते हैं। पहले इनकी सतह पर सफेद धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में आटे के समान पदार्थ से ढक जाते हैं। पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में झड़ने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 3 ग्राम घुलनशील गंधक प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक डाउनी मिल्डू बीमारी भी लगती है। इस बीमारी का प्रभाव पत्तियों पर पड़ता है। प्रारंभ में इनकी ऊपरी सतह पर पीले धब्बे बनते हैं, जो कि बाद में लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। ग्रसित पत्तियां और शाखाएं मर जाती हैं तथा फल अस्वस्थ एवं स्वादहीन हो जाते हैं। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सब्जियों की देखभाल करनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें सब्जियों की देखभाल विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। नेत्रदान महादान, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।

भाव सागर में डूबते जीव का एकमात्र अवलंब सिर्फ गोविंद होते हैं। जब हम पूर्ण समर्पण से उन्हें पुकारते हैं तो वह अवश्य ही हमारी रक्षा करते हैं।

जिसने भी परमपिता परमेश्वर को, जो सर्वव्याप्त है, उन्हें अपने जीवन का आधार बना लिया, वह इस जीवन में सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है।

हम सभी क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, असत्य, इन सारे दुर्गुणों को त्याग कर ही उस परम शक्ति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे कैलाश अनुज, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर और KM शुक्ला। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु। विषय है प्रेम।
1: एक दिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, राधा में ऐसा क्या है कि आप उसे प्रतिक्षण स्मरण करते रहते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर बता दूंगा। एक बार श्री कृष्ण चादर ओढ़कर लेट गए। रुक्मिणी के पूछने पर कहा, मेरे सर में अतीव पीड़ा है। रुक्मिणी ने घबराकर पूछा, इसकी औषधि क्या है? कृष्ण ने कहा, अपने चरणों की जरा सी धूल मेरे मस्तक पर लगा दो। रुक्मिणी ने कहा, ऐसा करने से तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने नारद को बुलाकर राधा के पास भेजा और कहा, राधा के चरणों की धूल मस्तक पर लेपन के लिए ले आओ। राधा ने ये बात सुनकर तुरंत अपने पैरों की धूल नारद को दे दी। नारद ने पूछा, तुम्हें नरक में जाने का भय नहीं है? राधा ने उत्तर दिया, यदि मेरे पैरों की धूल से श्री कृष्ण की पीड़ा दूर हो तो मैं 70 जन्म तक भी नरक में जाने को तैयार हूं। यह है प्रेम की

0: पराकाष्ठा। महात्मा गांधी ने कहा था, जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां अधीरता को स्थान नहीं मिलता। शुद्ध प्रेम देह का नहीं, आत्मा का ही संभव है। देह का विषय प्रेम ही है। आत्म प्रेम को कोई बंधन नहीं है, परंतु उस प्रेम में तपश्चर्या होती है और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्यु पर्यंत वियोग रहे तो भी क्या हुआ। प्रेम तत्व संसार पर विजय करता है। समुद्र तल में स्थित चुंबक के चट्टान समुद्र के ऊपर चलने वाले जहाज को अपनी ओर खींच लेती है, उसकी कीलें निकाल डालती है और सभी पटरों को अलग अलग कर देती है। फलतः जहाज समुद्र में डूब जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, तब उसका व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमात्मा के अगाध प्रेम के सागर में डूब जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार प्रेम के दो लक्षण हैं। इस बात का बोध होना कि जगत मिथ्या है तथा शरीर जो कि सभी को प्रिय होता है उसकी कुछ भी परवाह न करना। भाव कच्चे आम के समान है और प्रेम पके आम के तुल्य है। प्रेम भक्त के हाथ में एक रस्सी के समान है, उसी से वो ईश्वर को बांधकर अपने वश में करता है। भक्त की प्रेममय पुकार सुनकर ईश्वर अवश्य उस पर कृपा करता है। सच्चा प्रेम सूर्य के समान आत्मा को विकसित कर देता है। मोह मन को पाले के समान ठिठुरा कर संकुचित कर डालता है। प्रेम का अर्थ है व्यवहार में अपने पड़ोसियों के साथ, उन लोगों के साथ जिनसे आप मिलते जुलते हैं, एकता और अभेदता का अनुभव करना। जिस मनुष्य ने कभी प्रेम नहीं किया वो कदापि ईश्वरानुभव नहीं कर सकता। प्रेम मोह से भिन्न है, वो एकमात्र दैवी विधान है। विषय वासनाहीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकाश है। प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्थ है। जहाँ प्रेम है वहाँ काम है, जहाँ स्वार्थ नहीं होता प्रेम का वहीं साम्राज्य फलता फूलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, विषय था प्रेम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आरटीसी कब और क्यों विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रगति सचान।
1: आरसीटी एक प्रक्रिया है जिसका फुल फॉर्म रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, जिसका संबंध दांत के अंदर जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदर कैनाल से रिलेटेड है। और इस प्रक्रिया के दौरान हम जो दांत के अंदर संक्रमित पल्प होता है उस टिश्यू को हम रिमूव करके एक प्रॉपर फिलिंग करते हैं, जिससे कि दांत का संक्रमण दूर किया जा सके। फिर उसके बाद उसको स्ट्रक्चरली उसको मजबूती देने के लिए हम उसके ऊपर कैप लगाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि आरसीटी की जरूरत जो है वो कब पड़ती है। तो आरसीटी जब हमारा दांत जो है या किसी तरीके से टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, या उस दांत में कीड़ा लग जाए जिसका संक्रमण जो है उसके अंदर उपस्थित जो पल्प टिश्यू है वहां तक पहुंच जाए, या हमें दांतों में ठंडा और गर्म महसूस हो रहा है, उस स्थिति में हमारे जो डेंटिस्ट हैं वो हमें सलाह देते हैं कि अगर आप दांत को बचाना चाहते हैं या इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आपको आरसीटी नामक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के दौरान जो हम पहले तो उस टूथ को जज करते हैं कि ये वाइटल टूथ है या नॉन वाइटल है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनेस्थेटाइज करते हैं। किसी किसी टूथ को एनेस्थेटाइज करने की जरूरत नहीं है, जिसमें हम वाइटल टूथ है, टेंडर है, तो हम उस प्रक्रिया करने से पहले एनेस्थेटाइज करते हैं ताकि प्रक्रिया के दौरान पेशेंट को पेन फील ना हो। एनेस्थेटाइज करने के बाद हम उस टीथ

0: में एक होल क्रिएट करते हैं, उस होल के जरिए हम जो दांत के अंदर पल्प है वहां तक पहुंचते हैं विद प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें हम फाइल्स और इंडोमोटर की हेल्प से उस टिश्यू को, इन्फेक्टेड टिश्यू को वहां से रिमूव करते हैं, और इसके बाद गट्टा पर्चा नामक फिलिंग उसके अंदर उसको सील करते हैं विद हेल्प ऑफ सीलर्स, रूट कैनाल सीलर्स। उसके बाद में उसको ऊपर से एक परमानेंट फिलिंग से क्लोज कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपके जो डेंटिस्ट है वो आपको वन विजिट प्रोसीजर भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये टू विजिट प्रोसीजर है, आपको दो दो से तीन बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। एक्चुअली ये जो प्रोसीजर है ये लोकल एनेस्थीसिया में ही होता है, तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो खा पी के आराम से आए, उसके लिए आपको खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है। एक तो जब आपका ये आरसीटी नामक प्रक्रिया आपकी चल रही है तो आपको दांत पहले से उसमें प्रॉब्लम है या कीड़ा लगा हुआ है या टूट चुका है ऑलरेडी, वो कमजोर है। उसके बाद हम उसमें उसको रूट कैनाल एसेस करने के लिए जो हम एसेस ओपनिंग बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत टूथ स्ट्रक्चर रिमूव हो जाता है, तो आरसीटी के बाद और नर्व्स और ब्लड सप्लाई भी खत्म हो जाती है, तो आरसीटी के बाद दांत जो है वो बेसिकली थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप वहां से कड़ा ना चबाएं, ऐसा करने से आपका दांत, ऊपर का जो दांत का हिस्सा है वो टूट सकता है और या तो आपको दर्द फील हो सकता है। तो ड्यूरिंग आरसीटी ट्रीटमेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहां से आप कुछ हार्ड बाइट ना करें, और आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब आपका रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है तो उसमें कैप लगाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप आरसीटी के बाद कैप नहीं लगवाते हैं तो वो टूथ फ्रैक्चर हो सकता है, फिर आपको मतलब आरसीटी कराना वेस्ट हो जाएगा। ये प्रक्रिया सभी तरह के दांत, या तो वो डेसिडुअस टूथ है या परमानेंट टूथ है, अगर संक्रमण जो है वो पल्प को इफेक्ट कर रहा है और दांत में चबाने में दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है, बच्चे हो, बूढ़े हो, एडल्ट हो, किसी में भी अगर उस दांत को बचाना जरूरी है तो इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। दांत जब हमारा या तो बहुत घिस गए हो, जैसे उम्र दराज लोगों में दांत बहुत यूज होते होते घिस जाते हैं, जैसे एट्रिजन बोलते हैं, उसकी वजह से उन्हें ठंडा या गर्म लगने लगता है, तो उस स्थिति में हम उन्हें सलाह देते हैं कि आप रूट कैनाल करके इन दांतों को सेव कर सकते हैं, उसके बाद कैप लगा सकते हैं। दूसरा, कोई भी अगर गिर जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, दांत उसका टूट जाता है और उस दांत को बचाया जा सकता है, तो हम ये सलाह देते हैं कि आप रूट कैनाल करवा के इस दांत को बचा लीजिए। दांतों में संक्रमण और कीड़ा लग गया हो जिसका जो एक्सटेंशन है वो पल्प तक पहुंच गया हो, तो उस स्थिति में भी रूट कैनाल करके उसको बचाते हैं। एक तो प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए टीथ का भी, और दूसरा ये कि जब आप मीठा या कुछ भी एसिडिक चीज लेते हैं तो उसके बाद दांतों को क्लीन करना आवश्यक है। मीठा खाने के बाद बच्चों को ये सलाह दें कि मतलब दांतों में ब्रश करके ही सोएं। थैंक यू।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आरसीटी कब और कैसे। विशेषज्ञ थी डॉक्टर प्रगति सचान। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

पृथ्वीराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करने का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया,

ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा कर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे ए हरिहरन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शाम 7:31 से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भारत बनाम बांग्लादेश क्रिकेट मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 4 हमारे दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित बाला साहब मूछवाले का गायन। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12:45 पर आप सुन सकेंगे आर्यन मिश्रा का गायन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे गजल। कलाकार होंगे डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्याय। सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत। कलाकार होंगे मन्ना लाल यादव और साथी। इनके गाए लोकगीत आप किसानवाड़ी कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। समय होगा शाम 6:30। किसानवाड़ी कार्यक्रम में डॉक्टर आशीष मेहरोत्रा लतारे की बातचीत आप सुनेंगे जैविक विधि से कृषि प्रबंधन। शाम 7:00 संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिएगा डॉक्टर शुभांकर बाबू की वार्ता त्वम विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। युवा कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, मेरी पसंद और रोजगार सूचना। शाम 5:00 सुनेगा कार्यक्रम धरती के गीत, जिसमें आज आप सुनेंगे बंगला गीत। दिन 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम अंगनैया, जिसमें प्रतिभा त्रिवेदी से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत आप सुनेंगे डिजिटल साक्षरता और महिलाओं का विकास। इसके साथ ही बहनें गीत संगीत का भी आनंद लेंगी। कार्यक्रम कहकशा आप सुनेंगे दिन 2:30 पर। आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का समय होगा सुबह 11:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:00 झंकार में और शाम 6:10 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर और अब से थोड़ी देर बाद 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हाल चाल, सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। हम

बनारस, आज है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और ये तिथि अपने आप में बड़ी विशेष है। कारण ये है कि आज की अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन पूरे साल किए जाने वाले पूजा पाठ और श्राद्ध जैसे कार्यों के लिए कुश का उत्पाटन किया जाता है, यानी कि कुश को उखाड़ा जाता है। शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है कि पूजा काले सर्वदैव कुश हस्त।

तो भवेच्छुचि ही कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया, यानी कि कुश के बिना की गई जो भी पूजा होती है वो विफल हो जाती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा बनारस की सामान्य लोग तो मात्र एक ही प्रकार के कुशे को जानते हैं, और विशेष करके वही कुश का आसन जो मंदिरों में पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को जानते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुल 10 प्रकार के कुशों का वर्णन मिलता है, और कहा जाता है कि जिस कुश का मूल ठीक हो, जिसमें पत्ती हो, आगे का भाग कटा ना हो, हरा हो, वही कुशा देवताओं और पितरों दोनों के कार्यों के लिए प्रशस्त होता है। तो ये हो गई बात बनारस आज के विशेष दिन की। अब आज आपको दो छोटी छोटी कहानी सुनाते हैं। पहली कहानी ये है कि दो दोस्त थे, दोनों ने 500-500 के मूवी टिकट खरीदे। फिल्म शुरू होने के 20 मिनट बाद उनको पता चलता है कि फिल्म बेहद उबाऊ और खराब है। अब तर्क ये कहता है कि उनको फिल्म छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अभी उनके 20 मिनट ही खराब हुए हैं। लेकिन वे सोचते हैं कि हमने 500 रुपए दिए हैं, इसलिए वे गालियां देते हुए भी पूरी फिल्म देखते हैं। इससे उनके बचे हुए बाकी के 2 घंटे भी बर्बाद हो जाते हैं। अब दूसरी कहानी। शर्मा जी की पुरानी कार बार बार खराब होती है और इसे ठीक कराने में हर महीने वे हजारों रुपए खर्च करते हैं। अब तक वे इस पर 70,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। इस बार जब कार फिर खराब होती है तो मैकेनिक कहता है कि इसे ठीक कराने में 30,000 रुपए और लगेंगे। अब शर्मा जी ये सोचकर फिर से पैसे दे देते हैं कि पहले ही इतने पैसे लगा दिए हैं तो अब पीछे हटने से वे पैसे बेकार हो जाएंगे, जबकि समझदारी नई कार ले लेने में होती। तो अब आप बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जरूर होता होगा। और जानते हैं, मनोविज्ञान में इसे कहते हैं संक कॉस्ट फिलासे, यानी डूबी हुई लागत का भ्रम। जानते हैं बनारस, यही वो कारण है कि बहुत लोग वर्षों तक गलत नौकरी नहीं छोड़ते, गलत बिजनेस में पैसे लगाते रहते हैं, या टूट चुके रिश्तों को सिर्फ इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना समय और इतने पैसे लगा दिए, अब कैसे छोड़ दें। लेकिन सोचने की बात यह है बनारस कि जो पैसा, जो समय या व्यक्ति जा चुका है वो वापस तो आएगा नहीं। इसलिए समझदारी पुराने नुकसान को पकड़कर बैठने में नहीं बल्कि सही फैसला लेने में है। अब वो सही फैसला क्या होगा, इसका फैसला आप खुद करें।

0: बनारस संक कॉस्ट फैलासे पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आईआईटी बीएचयू के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण। तो आइए सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं।
1: नमस्कार। आज का जो ये टॉपिक है वो बड़ा ही कमाल का है। संक कॉस्ट फैलेसी क्या होता है? देखिए, जब हम पहले से किसी चीज में अपना पैसा लगा दे, अपना टाइम लगा दे, अपना मेहनत, और सबसे ज्यादा जरूरी है उसके अंदर इमोशंस, तो उसको हम छोड़ना पसंद नहीं करते, मतलब उसको कंटिन्यू रखना पसंद करते हैं। अब लगता है ना कि इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद कैसे छोड़ दे चीजों को। मान लीजिए कि आप ऐसा डिसीजन आपने ले लिया, ऐसे फिल्म देखने ही गए और 2000 की आपको टिकट मिली, और थोड़ी देर बाद बैठने के फिल्म लगा कि नहीं, गलत बैठ गया या गलत टिकट ले लिया, लेकिन लगता है आप ले ही लिया है, टाइम और पैसा दे ही दिया है, तो चलो देख लेते हैं। अब इसके कई सारे पहलू हैं, मतलब होता ना कि एक ईगो बीच में आता है। इमोशनली कई बार हम डिसीजन लेते हैं, लॉजिकली बहुत सोच नहीं पाते हैं, उस संदर्भ में हम कई बार अपने

0: नेगेटिव और या कह लीजिए उस लॉस को हम कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं करते हैं, तो वहां पे आप जब थोड़ा सा स्ट्रेस में आते हैं तो आपका जो सामने का दिमाग होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका डिसीजन मेकिंग लॉजिकल थिंकिंग का काम होता है, वो काम करना बंद कर देता है। उसकी जगह पे एक्टिव होता है आपका एमिग्डाला, जिसका काम है इमोशंस को अराउज करना, और उस वक्त आप इमोशनली ज्यादा सोचते हैं, लॉजिकली कम सोचते हैं।
1: अगर जो इस चीज का सोल्यूशन देखना है तो सबसे पहले इमोशनल होकर के कम सोचे, डिसीजंस पे ज्यादा ध्यान दे। तुरंत फैसला जो आपने लिया है और उसको जो कंटिन्यू कर रहे हो, तो उसमें देखिए उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। कुछ एक एग्जिस्टिंग रूल बनाए, किसी भी कंडीशंस अगर जो आप फॉलो कर रहे हैं तो उस कंडीशन से लॉजिकली आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक फ्रूट क्या निकल के आएगा। और हमेशा डिसीजन मेकिंग को फोकस करें कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट आएगा, या पास्ट में आपने ऐसी गलतियां करी है तो उसमें क्या ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से चीजें और खराब हुई और उसे कैसे बचा जा सकता है। कहते हैं ना कि एक स्टॉप करिए तुरंत, जब कोई ऐसी चीज हो रही है, लग रहा है कि ये बेसलेस है, तुरंत डिसीजन ना लें, उसके फैक्ट को ढूंढे, इमोशंस को थोड़ा अलग रखिए, हमेशा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देखिए कि इसकी जगह पे और क्या कर सकता हूँ। अपने आप को किसी नेगेटिव चीज के साथ श्रिंक मत करिए, और जब भी ना समझ आए कि बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो डेफिनेटली किसी मनोचिकित्सक से मिलिए। थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बनारस, जैसा कि डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि इस चीज को हल्के में ना लें और अपनी जो मन स्थिति है उसको दूसरों से साझा अवश्य करें, क्योंकि यही स्थिति गंभीर होने पर कई बार आत्महत्या तक पहुँच जाती है, और ऐसा ना हो इसी के लिए आज यानी 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आत्महत्याओं की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि किसी परेशान व्यक्ति को सुनना, समझना और समय पर सहायता दिलाना बेहद महत्वपूर्ण है। इस वर्ष इसकी थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विद द कॉल टू एक्शन स्टार्ट द कन्वर्सेशन। और बनारस, एक चीज और आपको बताएं कि सुबह 10:30 बजे आप जो बनारस बीट्स प्रोग्राम सुनते हैं उस कार्यक्रम में भी आज हमने कुछ ऐसा ही विषय रखा हुआ है, और उसका विषय यह है कि यदि आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसे अब आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं लेकिन फेंक भी नहीं रहे हैं क्योंकि वो बहुत महंगा है या उसे पाने के लिए आपने बहुत त्याग किया है, तो आप हमें बताएं कि आखिर वो चीज क्या है। और प्रोग्राम आप सुनेंगे बनारस बीट्स सुबह 10:30 बजे विविध भारती के वाराणसी केंद्र पर। और अब आइए चलते हैं प्रोग्राम में आगे और जान लेते हैं अपने शहर बनारस का हाल समाचार। तो बनारस से गुड मॉर्निंग। बनारस की जो गुड न्यूज आ रही है वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिषदीय स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों के भी बच्चों को अब यूनिफॉर्म मिलेंगे। एक बच्चे को 2 सेट यूनिफॉर्म दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में साल 2017 के बाद 70,000 केंद्रों को नया स्वरूप भी दिया गया है। सीएम बुधवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ पर बोल रहे थे। और बनारस से जो दूसरी गुड न्यूज आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन से जुड़ी प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं को प्रदेश सरकार 1,00,000 रुपए ब्याज मुक्त मुहैया कराएगी। ये रकम महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए दिया जाएगा। 1,00,000 रुपए में से 20,000 रुपए की पहली किस्त दिसंबर में जारी की जाएगी, दूसरी किस्त में 30,000 और चौथी किस्त में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और बनारस आपको बता दें कि गंगा जी में फिर उफान के स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं। बुधवार भोर से जलस्तर में बढ़ाव की गति रात 8 बजे तक बहुत तेज हो गई। सुबह 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक आधा सेंटीमीटर की गति से जलस्तर बढ़ रहा था, जबकि रात में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा यह जलस्तर बढ़ रहा था। केंद्रीय जल आयोग का अनुमान है कि फिलहाल जलस्तर में बढ़ाव जारी रहेगा। तो ये था बनारस अपने शहर का हालचाल, और अब आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे। और अब बातें गुजरे हुए कल की। बनारस, आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत माता के उस वीर सपूत को जिसका नाम सुनते ही शौर्य, साहस और बलिदान की अद्भुत तस्वीर आंखों के सामने उभर आती है। वो हैं परमवीर।

चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद, आज है उनकी पुण्यतिथि। बनारस वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय सैनिकों के अदम्य पराक्रम का साक्षी बना। इसी युद्ध भूमि में एक ऐसा वीर योद्धा उतरा जिसने अपने साहस से दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। वीर अब्दुल हमीद भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में तैनात थे। उनके सामने दुश्मन के शक्तिशाली पैंटन टैंक थे जिन्हें उस समय अत्यंत खतरनाक और अभेद्य माना जाता था, लेकिन भारत के इस वीर सपूत के हौसले के सामने दुश्मन की शक्ति भी फीकी पड़ गई। उन्होंने अपनी जीप पर लगी रिकॉयलेंस गन से दुश्मन के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया। गोलियों की बौछार और मौत के साए के बीच भी उनका साहस तनिक नहीं डगमगाया। वे जानते थे कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हर सांस, हर कदम और हर गोली महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 10 सितंबर 1965 को राष्ट्र की रक्षा करते हुए वीर अब्दुल हमीद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका शरीर रणभूमि में गिरा, लेकिन उनका साहस, उनकी हिम्मत और उनकी जिज्ञासा अमर हो गई। उनकी अद्वितीय वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीर अब्दुल हमीद केवल एक सैनिक नहीं थे, वे भारत की वीरता, एकता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें संदेश देता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस, कर्तव्य और बलिदान से बढ़कर कुछ नहीं। जब तक भारत की धरती है, तब तक वीर अब्दुल हमीद की शौर्य गाथा गूंजती रहेगी। साथ ही बनारस आपको बता दें कि आज है जन्म जयंती भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ, राष्ट्र निर्माता और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत की। आपका जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए आप प्रसिद्ध हुए और बाद में 1955 से 1961 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में देश की एकता और व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रति आपका विशेष लगाव था। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को देखते हुए वर्ष 1957 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका जीवन देश सेवा और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता है। और बनारस अब आइए कार्यक्रम में चलते हैं आगे उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, बनारस काशी कथा। बनारस काशी में 5 पुष्करणी प्रसिद्ध रही हैं, जिनके नाम हैं पापमोचन, ऋणमोचन, कपालमोचन, वैतरणी और कुलस्तंभ। आज यानी भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को इन 5 पुष्करणियों में स्नान करने की काशी में बेहद प्राचीन परंपरा रही है। इन 5 तीर्थों में से आज हम कपालमोचन तीर्थ की बातें करेंगे। बनारस, इस संबंध में पौराणिक कथा ये है कि एक बार ब्रह्मा जी ने अहंकारवश भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने भैरव जी को प्रकट किया और भैरव जी ने अपने हाथ के नाखून से ब्रह्मा जी के उस मुख वाले सर को काट दिया जिसने भगवान शिव की निंदा की थी, और तभी से ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हो गए और उनकी पूजा बंद हो गई। लेकिन ऐसा करने से भैरव जी को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और ब्रह्म हत्या उनके पीछे पड़ गई, जिससे मुक्ति के लिए वे संपूर्ण ब्रह्मांड में और सभी लोकों में घूमते फिरे, लेकिन उन्हें कहीं भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। जब वे काशी जी में आए तो यहाँ प्रवेश करते ही ब्रह्मा जी का वह शीश उनके हाथ से छूटकर गिर गया। अब जहाँ पर ब्रह्मा जी का वह मस्तक गिरा वही स्थान कपालमोचन नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो वर्तमान में कज्जाकपुरा के लाट भैरव मंदिर के पास स्थित है। इस कपालमोचन तीर्थ में लोग ब्रह्म दोष से मुक्ति के लिए स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इस कपालमोचन कुंड में स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्त होती है और कुछ लोग चर्म रोग से निजात पाने के लिए भी इस कुंड के जल का इस्तेमाल करते हैं। पक्की सीढ़ियों, घाटों और इनके अलावा सुरक्षा दीवार वाले इस कुंड का जीर्णोद्धार

0: उद्धार 18वीं शताब्दी में रानी भवानी ने कराया था। तो बनारस ये था काशी कथा का आज का अंक,
1: काशी कथा।
0: और बनारस, इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारस बाबू चलने का वक्त हो गया, तो दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश के 7 सबसे ज्यादा यातायात वाले रेलवे नेटवर्क को 4 लेन करने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लखनऊ और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के 10 रेलवे स्टेशन भी इस परियोजना में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुआ 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला नया स्वरूप। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के मूल्यांकन में हुआ बदलाव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ज्यादा यातायात वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दे दी। इनमें दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली की परियोजनाएं शामिल हैं। इनके तहत दिल्ली से हावड़ा रूट उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन को कवर करेगा। वहीं दिल्ली से मुंबई रूट में मथुरा, दिल्ली से गुवाहाटी रूट में मुरादाबाद, बरेली,

0: लखनऊ गोरखपुर, जबकि दिल्ली से चेन्नई मार्ग पर आगरा और झांसी रेलवे स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन 7 कॉरिडोर पर रेलवे का लगभग 40% ट्रैफिक होता है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: वाराणसी में कल 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को नया स्वरूप दिया गया है।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी दी है इसमें, राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनबाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की, वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं, खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण माह की इस वर्ष की थीम मेरी आंगनबाड़ी मेरी जिम्मेदारी को जन भागीदारी से जोड़ते हुए कहा कि आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का बचपन स्वस्थ, सक्षम और शिक्षित होगा।
2: आत्मनिर्भर विकसित भारत दिल्ली में बनाने से नहीं, गांव और गलियों से होकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला यहां से प्रारंभ होती है। आंगनबाड़ी केंद्र और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इसके प्रारंभिक केंद्र बनेंगे और ये शुरुआत हुई है एक समर्थ और शिक्षित भारत के लिए, स्वस्थ और सशक्त भारत के लिए, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र। और उसकी थीम इसीलिए इस वर्ष रखी गई है कि मेरी आंगनबाड़ी मेरी जिम्मेदारी।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है।
3: सुपोषित बचपन, स्वस्थ मातृत्व और समृद्ध परिवार ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे मजबूत नींव है। हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहें और इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में आयोजित कामकाजी महिला सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही स्नातक अंतिम वर्ष की मेधावी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के साथ जोड़ने जा रही है।
4: हमने बेटियों और युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अभी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहुत से स्नातक फाइनल ईयर्स की बालिकाओं को, 50,000 मेधावी बेटियों को हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे स्कूटी योजना के साथ जोड़ने जा रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कल पीलीभीत में 15 करोड़ रुपए की लागत से खोले गए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र और प्रदर्शन फार्म का शिलान्यास किया। मेरठ के बाद यह देश का दूसरा बासमती और जैविक प्रशिक्षण व निर्यात केंद्र होगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस केंद्र का लाभ सिर्फ पीलीभीत ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के किसान भी उठाएंगे।
5: जनपद के किसान, हमारे नौजवान, हमारे उद्योग जगत के लोग इस केंद्र का फायदा उठाएंगे और जो इस सरकार का डबल इंजन मोदी जी और योगी जी का प्रण है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने, किसानों की आय बढ़ाने और इस क्षेत्र के लोगों का, किसानों का और हम लोग कैसे दायरा बढ़ा सके, वो ये केंद्र

0: इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस केंद्र का लाभ प्रदेश के 29 जिलों के किसानों को भी मिलेगा जिन्हें बासमती उत्पादन में जीआई टैग मिला है। लोकसभा में नेता विपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वह जिले में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किया है।
1: बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विज्ञान गृह विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बोर्ड खुद 30 नंबर की प्रैक्टिकल की परीक्षा लेगा जबकि अन्य विषयों में पुरानी

0: और शिलान्यास किया। वह जिले में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव किया है।
1: बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विज्ञान गृह विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बोर्ड खुद 30 नंबर की प्रैक्टिकल की परीक्षा लेगा, जबकि अन्य विषयों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, यानी मार्कशीट में ग्रेड के साथ प्रैक्टिकल के नंबर भी दिखेंगे। पहले मूल्यांकन 5 पॉइंट स्केल ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर होता था, जिसे अंक पत्र में ग्रेड के रूप में दर्ज किया जाता था। समाचार कक्ष से अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के पुनर्नियोजन की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकार ने यह फैसला जनहित में लिया है, जिससे मरीजों को वरिष्ठ और विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुभव का फायदा मिल सके।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो चिकित्सकों की उम्र है वो चिकित्सीय कार्य के लिए 70 वर्ष तक कर दी गई है, यानी अपने 70वें वर्ष तक उम्र के वो सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। जो चिकित्सकों की कमी है, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, उन्होंने इतना लंबा अनुभव हमारे अस्पतालों में प्राप्त किया है और ये निर्णय जनहित में लिया गया कि मरीजों को उनके अनुभव का लाभ मिल सके।
0: प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 दिनों तक बारिश का यह क्रम जारी रहेगा। उधर बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी जगहों पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 7 सबसे ज्यादा यातायात वाले रेलवे नेटवर्क को 4 लेन करने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। लखनऊ और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के 10 रेलवे स्टेशन भी इस परियोजना में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुआ 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9.5 साल में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला नया स्वरूप। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र का किया शिलान्यास। और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के मूल्यांकन में हुआ बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
5: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। कलाकार हैं पंडित बाला साहब पूंछ वाले। राग है देव गंधार। आपके साथ तबले पर संगति है जेरी मेसी की और सारंगी पर हैं बच्चा लाल मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुना पंडित बाला साहब पूंछवाले का गायन, राग था देव गंधार। आपके साथ तबले पर संगति थी जेरी मेसी की और सारंगी पर थे बच्चा लाल मिश्रा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में।

0: वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
0: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
6: मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।

0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $30 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अर्भिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिले में और लॉन्गटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक

0: स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8 8-flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said, these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsuguda, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The project covers

0: 17 जिले इसके दायरे में आएंगे। इन प्रोजेक्टों से तकरीबन 2100 गांवों के लिए कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, जहां तकरीबन 52 लाख की आबादी है। जनाब वैष्णो ने बताया कि सरकार ने ज्यादा भीड़भाड़ वाले सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली से हावड़ा, मुंबई से हावड़ा, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से गुवाहाटी, दिल्ली से चेन्नई, हावड़ा से चेन्नई और मुंबई से चेन्नई रूट शामिल हैं।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है, तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेजी के साथ आमदोरफ्त, मजबूत कनेक्टिविटी और बारबरदारी की सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि जुनूबी भारत में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 5 रेल प्रोजेक्टों से बेहतर रेल कनेक्टिविटी की राह हमवार होगी और लाखों लोगों को फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों से मुतालिक फैसले से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में इजाफी रेलवे नेटवर्क कायम होगा और कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। जनाब मोदी ने कहा कि इससे सियाहत की हौसला अफजाई होगी और लॉजिस्टिक्स लागत भी कम हो जाएगी। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल-अक़वामी तजारत में कारोबार करने वाली ख़वातीन और ख़वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। वजीर मौसूफ ने ख़वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए तरक्की और मौक़ों को बरूएकार लाने के लिए क्रेडिट और मार्केट्स तक रसाई को सहल बनाने और कारोबार के ज़ाब्तों में सहूलत पैदा करने पर भी जोर दिया। जनाब पीयूष गोयल नई दिल्ली में ब्रिक्स की ख्वातीन की ज़ेरे क़यादत तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब गोयल ने कहा कि भारत ने ख्वातीन को माली एतबार से, समाजी एतबार से, नीज तालीम, हुनरमंदी और बेहतर मेयारे ज़िंदगी के ज़रिए बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की है, ताकि ख्वातीन मुल्क की तरक्की में कायदाना रोल अदा कर सकें। जनाब गोयल ने कहा कि भारत में तकरीबन 30 करोड़ बैंक खाते ख्वातीन के हैं और खुद अपना कारोबार शुरू करने की ख्वाहिशमंद ख्वातीन को आसान शराइत पर कर्जे दस्तियाब होते हैं। वज़ीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि देही इलाकों की तकरीबन 10 करोड़ ख्वातीन अब 90 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुपों की मेंबर हैं। जनाब गोयल ने इस बात को दोहराया कि इसका मकसद ख्वातीन को इक्तसादी एतबार से आज़ाद बनाना है। जनाब गोयल ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने 2047 तक $30 ट्रिलियन की मईशत बनने का निशाना तय किया है, जबकि आज वो $4 ट्रिलियन की मईशत है। मुंबई में जारी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज 3रा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज GFF का इफ्तिताह किया था। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मुंबई में जारी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 3रे दिन एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ सेशन का एहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकॉनमी के उनवान से सेशन से खिताब करेंगे। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा अगली दहाई की फाइनेंस टेक्नोलॉजी एतमाद और इख्तरा की तश्कील के उनवान से एक सेशन से खिताब करेंगे। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे, UIDAI के साबिक चेयरमैन नंदन नीलकनी और SBI के चेयरमैन CS शेट्टी भी दिन के दौरान अहम सेशन से खिताब करने वाले हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने सैलाब से मुतासिर नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद बढ़ा दी है। 35 टन इमदादी सामान के साथ भारतीय फजाइया का 8वां हवाई जहाज कल काठमांडू में उतरा। उधर नेपाल में अचानक सैलाब आने से मुतासिर इलाकों में बचाव कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसमें रसुआ के मुकाम पर वाके टनल भी शामिल है, जहां भारतीय अहलकारों की टीम तलाश और बचाव की कार्रवाई में नेपाल की फौज के साथ मिलकर काम कर रही है। नेपाल की कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने वाली अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 13,646 अफराद को बचाया गया है, जबकि

0: तकरीबन 5,132 अफराद लापता हैं। लापता लोगों में नेपाल की फौज, पुलिस और मुसल्लह पुलिस फोर्स के अहलकार, सरकारी मुलाजमीन, बैंक और माली इदारों के मुलाजमीन और गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अलाक्वामी एजेंसी IAEA ने गुज़िश्ता 20 साल में पहली बार ईरान का मामला अक्वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। एजेंसी ने कुछ मुकामात पर यूरेनियम आसार पाए जाने के मामले की तवील अरसे से चली आ रही छानबीन में ताउन करने में ईरान के नाकाम रहने का हवाला दिया है। ईरान ने इन मुकामात के बारे में पहले से कोई इंकशाफ नहीं किया था। IAEA के 35 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड ने 5 के मुकाबले 23 वोटों की हिमायत के साथ मुतालिका करारदाद मंजूर की, जबकि 8 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस, चीन और नाइजर ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ये करारदाद तजवीज़ की थी। ईरान का मामला सलामती कौंसिल के सुपुर्द किए जाने से ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ और असासों पर रोक लगाई जा सकती है। अलबत्त इस तरह के ताज़ीरी इकदामात का इम्कान नहीं है, क्योंकि ईरान के इत्तेहादी मुल्क रूस और चीन सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर हैं और वो किसी भी ताज़ीरी कार्रवाई को वीटो कर सकते हैं। उधर मगरबी मुल्कों के अहदेदारों ने यह ख्याल जाहिर किया है कि यूरेनियम के आसार एटमी हथियारों के खुफिया प्रोग्राम की जानिब इशारा करते हैं और हो सकता है कि ईरान 2003 तक ये प्रोग्राम चलाता रहा हो। दूसरी तरफ ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की बात से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि उसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन है। माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF ने माली जराइम के लिए गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म के बढ़ते हुए बेजा इस्तेमाल के बारे में मुल्कों को खबरदार किया है। FATF ने कहा है कि जराइम का इर्तिकाब करने वाले अफराद रकम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस वाले ऑनलाइन गैम्बलिंग को एक बड़ा खतरा करार दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। इधर तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में इस महीने की 15 तारीख तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD ने शहर के सभी 12 जोन्स में खतरे वाली खस्ताहाल इमारतों, गैर कानूनी तामीरात और दिल्ली मास्टर प्लान नीज तामीरात से मुतालिक ज़ैली कवानीन की खिलाफवर्जियों के ताल्लुक से अपनी मुहिम तेज कर दी है। कल अंजाम दी गई सरगर्म कार्रवाई के तहत MCD के सभी 12 जोन्स में 34 इन्हदामी कार्रवाइयां की गईं। इसके अलावा 17 इमलाक को सील कर दिया गया, 22 को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया और इन्हदाम से मुतालिक 4 अहकाम मंजूर किए गए। मंगल के रोज भी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की थी, जिसके दौरान दिल्ली मास्टर प्लान और तामीरात से मुतालिक ज़ैली कवानीन की खिलाफ वर्जियों की पादाश में 17 इमलाक मुनहदिम की गईं, जबकि 5 इमलाक को सील किया गया। कौमी राजधानी में पेइंग गेस्ट PG इमारतों के बड़े पैमाने पर सर्वे के तहत ऐसी तकरीबन 1,243 इमारतों की निशानदेही की गई जो PG सहूलियात के तौर पर काम कर रही हैं। इनमें तकरीबन 24,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। पूरी दिल्ली में सर्वे का अमल जारी है और ये सर्वे आज मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। US ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल्स सेमीफाइनल में 2 अमेरिकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में 8वें नंबर के खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के सनसनीखेज मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हरा दिया, जबकि टियाफो ने अपने हमवतन एलेक्स माइकलसन को शिकस्त दी। इधर खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल पिछली बार की चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला 3रे नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगुला से होगा, जबकि 4थे नंबर की खिलाड़ी कोकोगाफ कजाखिस्तान की एलिना रिबाकीना का सामना करेंगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے آج الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار برتاب نے حکومت کے ذریعے تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں ریل لائنوں کی صلاحیت

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658
4: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

मधुरिमा सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुप्रभात और नमस्कार। आज इस सुरीले सफर में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव। दोस्तों, भारत गांवों का देश है। यहाँ के लोकगीतों में भारत की माटी की खुशबू बसी है। लोकगीत वो गाने होते हैं जो सदियों से हमारे त्योहारों, खेतों और आंगन में गूंजते आए हैं। चाहे वो यूपी बिहार की कजरी और सोहर हो, राजस्थान का मांड, पंजाब का टप्पा गिद्धा या बंगाल की बाउल या भटियाली, हमारे हर प्रदेश के लोक संगीत की अपनी विशेषता है। हिंदी सिनेमा ने भी हमेशा से ही हमारी लोक संस्कृति को संजोया है और उसे वैश्विक मंच दिया है। जब ये लोकगीत हिंदी फिल्मों की दुनिया में पहुँचते हैं तो उनकी चमक और बढ़ जाती है। इन्हें सुनकर हम बरबस ही थिरकने लगते हैं। तो आज की मधुरिमा में बातें होंगी इन्हीं लोकगीतों की। तो पहला गाना मैं आपको सुनवा रही हूँ भोजपुरी और अवधी लोक धुनों से बना हुआ फिल्म गंगा जमुना से।

दोस्तों, 60 और 70 का दशक वह दौर था जब संगीतकार सीधे लोक कलाकारों के बीच जाकर धुनें तैयार करते थे। साल 1966 में फिल्म तीसरी कसम में शैलेंद्र जी ने कजरी और नौटंकी के लोक रंग को पिरोया। तो अब सुनिए फिल्म तीसरी कसम से ये गाना, जिसे सुनकर हम आज भी झूम उठते हैं।

अमर हो गए। तो पूरब से निकलकर अब चलते हैं राजस्थान के रंगीले रेतों की तरफ। राजस्थान का लोक संगीत इतना अमीर है कि बॉलीवुड बिना इसके अधूरा है। पारंपरिक राजस्थानी लोकगीत मांड का गीत अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लम्हे से। थार के मरुस्थल की हवाओं जैसा ये गीत सीधे दिल को छूता है।

सदी बदली, सहस्त्राब्दी बदली और हिंदी सिनेमा में लोकगीतों का रूप भी थोड़ा बदला। अब लोकगीतों में मॉडर्न बीट्स और फ्यूजन का तड़का लगने लगा। दिल्ली सिक्स का ससुराल गेंदा फूल मूल रूप से छत्तीसगढ़ का एक बेहद खूबसूरत लोकगीत है, जिसे रेखा भारद्वाज की आवाज़ में एक नया जीवन मिला। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों, 2020 से लेकर 2025 तक इस नए दौर में बॉलीवुड ने एक बार फिर अपनी जड़ों की तरफ रुख किया है। आज के संगीतकार भी इंटरनेट के इस दौर में पुराने क्षेत्रीय लोकगीतों को उनकी सादगी के साथ नए कलेवर में ढाल रहे हैं, और आप और हम इन्हें पूरे सम्मान से सुनते हैं। हमारी फिल्मों ने ये हमेशा साबित किया है कि माटी के सुरों में जो कशिश है वो दुनिया के किसी भी सिंथेसाइजर या वेस्टर्न बीट्स में नहीं।

लोकगीत हमारी पहचान और संस्कृति का आईना है। उम्मीद है आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। लोकगीतों पर आधारित इन फिल्मी गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा। तो आज का मधुरमा का ये सफर बस यहीं तक। फिर मिलूंगी किसी दिन कुछ और नई बातों और सुरीले गानों के साथ। अब अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिय का।
1: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर महोबा के वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली से आई स्पेस इंडिया की टीम ने विद्यार्थियों को रॉकेट विज्ञान के सिद्धांतों और अंतरिक्ष तकनीकी की बारीकियों से परिचित कराया। कार्यशाला के दौरान छात्रों ने स्वयं पेपर रॉकेट और गैस रॉकेट तैयार कर उनका सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही हाइड्रो रॉकेट और वाटर रॉकेट का प्रक्षेपण कराया गया। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को रॉकेट के निर्माण, प्रक्षेपण और उसके सिद्धांतों के पीछे काम करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष की वर्चुअल विजिट कराई गई। वहीं सेफ सोलर ऑब्जर्वेशन के जरिए छात्रों को सूर्य एवं सौर मंडल का सुरक्षित तरीके से अवलोकन कराया गया। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिविटी के माध्यम से आधुनिक भवनों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक की जानकारी भी दी गई। विशेषज्ञों ने भवनों में ऊर्जा प्रबंधन, तापमान नियंत्रण, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों के बारे में छात्रों को समझाया। जिले के पार्षदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए 40 इसरो लैब का निर्माण कराया गया है। इन लैबों में छात्र सौर मंडल, अंतरिक्ष और विभिन्न खगोली गतिविधियों के बारे में प्रयोगात्मक तरीके से जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस अवसर पर AIASC में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DM गजल भरद्वाज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि उन्हें उचित संसाधन और अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री कृष्णा पासवान ने महोबा पहुंचकर पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने निराश्रित गौवंश के संरक्षण और गौआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने वर्षा ऋतु को देखते हुए सभी गौआश्रय स्थलों पर व्यवस्थाएं समय से दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संक्रामक रोगों से पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 100% टीकाकरण कराने पर जोर दिया। गौशालाओं में संरक्षित गौवंश के साथ ही जिले के अन्य पशुओं का भी नियमानुसार टीकाकरण सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए।

0: मंत्री ने गौ आश्रय स्थलों में पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए गौचर भूमि पर नेपियर घास की बुआई कराने के निर्देश दिए हैं। महोबा जिले समेत मध्य प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जिले के कई गांव प्रभावित हुए हैं। क्यूलारी और धसान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद लहचूरा बांध के 9 फाटक खोल दिए गए। बांध से काफी पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे नदी किनारे बसे गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि लहचूरा बांध के सभी 9 फाटक 2-2 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि पानी के फ्लो के अनुसार फाटकों को घटाया और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बांध से पानी छोड़े जाने के कारण महोबा जिले के 9 और झांसी जिले के 6 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित गांव में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क कराया जा रहा है। लोगों से नदी और जल भराव वाले क्षेत्रों के आसपास नहीं जाने की अपील की गई है। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उधर सीहोर नदी के उफान पर आने से करीब 13 गांव का संपर्क टूट गया है। जैतपुर और कुड़ई के साथ थुरट छतवारा मार्ग के बीच करीब 20 गांव का भी संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील की है।
1: लहचूरा डैम के 9 फाटक खोले गए इस समय 2 मीटर की हाइट से, और जैसे जैसे पानी का इनफ्लो हमें मिलेगा नदी में, उसी के हिसाब से हम उसकी मात्रा घटाएंगे बढ़ाएंगे। जनपद महोबा के 9 गांव प्रभावित हैं और झांसी के 6 गांव, दोनों जनपदों को लगा के लगभग 15 गांव प्रभावित हैं। 89,700 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं आज हम, और जैसे जैसे आगे हमें पानी की मात्रा हमको ऊपर से मिलेगी, उसी के हिसाब से हम अपने फाटकों की संख्या घटाएंगे बढ़ाएंगे। लोगों से अपील की जा रही है, हम लोग मुनादी भी करा रहे हैं, जिला प्रशासन भी लगातार सहयोग कर रहा है, और हम लोग भरसक यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई दुर्घटना न होने पावे।
0: महोबा जिले के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें कौशल प्रशिक्षण और बेहतर कैरियर मार्गदर्शन देने के लिए सेवा योजना विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को पंजीयन के बाद उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। जिला सेवा योजन अधिकारी आकांक्षा वाजपेयी ने बताया कि सरकार की पहल के तहत स्नातक युवाओं को सेवा योजन विभाग से पंजीकृत कराने के साथ ही स्किल और एबल्ड जैसी पहल से जोड़ा जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध हो सके। विभाग की ओर से रोजगार मेले और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से भी युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न कंपनियों के साथ विभाग का टाई अप है। इसके माध्यम से हर माह करीब 100 से 150 युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार मेले में युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता, कौशल और रुचि के अनुरूप कंपनियों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसी के साथ ही सेवा योजन विभाग अब युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। इसके तहत जापान, सऊदी अरब, जर्मनी और रूस जैसे देशों में रोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। विदेश में नौकरी के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने और अन्य प्रक्रियाओं में भी विभाग की ओर से मार्गदर्शन दिया जाता है। विदेश जाने वाले युवाओं को संबंधित देश की भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके लिए स्मार्ट क्लास के माध्यम से भाषा एवं तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा विदेश जाकर बेहतर तरीके से रोजगार हासिल कर सके।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की ग्रामीण महिलाओं के हौसले और आत्मनिर्भरता की जमकर सराहना की। बिजनौर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त सहयोग से विदुर प्रेरणा ब्रांड की शुरुआत की गई है। इस स्थानीय ब्रांड ने जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। इस पहल के तहत जिले के स्वयं सहायता समूहों की लगभग 2,40,000 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़कर काम कर रही हैं। इन समूहों द्वारा उच्च गुणवत्ता के अचार, पापड़, साबुन, झाड़ू, यहां तक कि इलेक्ट्रिक वाहन भी उत्पाद किए जा रहे हैं। विद्युत स्टोर के माध्यम से इन उत्पादों को देशव्यापी बाजार मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें बिजनौर के स्थानीय उत्पादों को वोकल फॉर लोकल के तहत नई पहचान मिली है। विदुर प्रेरणा ब्रांड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक वर्ष में 10 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर दर्ज किया है, जिससे जिले की 35,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने की राह पर अग्रसर हैं। जिले के कोतवाली ब्लॉक के ग्राम टांडा माईदास में एक हर्बल टी प्लांट की स्थापना की गई है। इस प्लांट का पूरा प्रबंधन और संचालन आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 10 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया,
4: जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी विस्तार देने की सोच रहे हैं। हम लोग एक प्रोड्यूसर ग्रुप बनाएंगे जिसमें कम से कम 100 महिलाएं एक साथ कार्य करें, और इसकी जो टेस्टिंग है, क्वालिटी है, कंट्रोल है, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं।
3: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी किए गए नवीनतम आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। इन आंकड़ों के अनुसार आयरन फॉलिक एसिड सिरप सप्लीमेंट कवरेज में बिजनौर जनपद ने पूरे प्रदेश में 85% कवरेज के साथ पहला स्थान हासिल किया है। 95% कवरेज और सटीक रिपोर्टिंग के

0: चलते जिला राज्य में नंबर एक पर है। इस रैंकिंग में मुरादाबाद मंडल का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। मंडल के सभी 5 जिलों ने प्रदेश में शीर्ष जिलों में अपनी जगह बनाई है। बिजनौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में गंभीर लापरवाही बरतने पर मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक की 27 आशा कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। वहीं 5 आशा संगनियों का मानदेय रोकते हुए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों, कमिश्नर और जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की निरंतर समीक्षा में सामने आया कि मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक में आभा आईडी बनाने की प्रगति मात्र 67.14% और आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए प्रगति केवल 57.59% रही है। इसके अतिरिक्त परिवार कल्याण कार्यक्रम, पल्स पोलियो अभियान और संस्थागत प्रसव जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पिछले 2 वर्षों में इन कार्यकर्ताओं द्वारा कोई संतोषजनक सुधार का या प्रयास नहीं किया गया। अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी भी स्तर पर अनदेखी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद बिजनौर में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा जल को सहेजने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़े महाअभियान की शुरुआत की है। कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जिले के सभी 11 विकास खंडों में एक साथ 157 तालाबों में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। बिजनौर में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। जिले में अब तक 409 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है और कुल 562 भूमियों को चिन्हित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि तालाब भूगर्भ जल को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। गौरतलब है कि जनपद का जलीलपुर विकास खंड वर्तमान में पूर्णतः क्रिटिकल यानी संकटग्रस्त जोन में है, जबकि नेटौर, सिहारा और कोतवाली देहात को सेमी क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में तेजी से घटते जल स्तर को थामने के लिए इस तालाब खुदाई अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना लोहता, सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रद्युम्न प्रजापति, पुत्र सुरेश प्रजापति, हरपालपुर लोहता वाराणसी के निवासी हैं। प्रद्युम्न प्रजापति की उम्र 25 वर्ष, लंबाई 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 30 अप्रैल 2026 को दोपहर 1:30 पर बाजार के लिए निकले और लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने काला पैंट एवं काला शर्ट पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना लोहता जनपद वाराणसी को सूचित करें। थाना राजा तालाब, सहायक पुलिस आयुक्त राजा तालाब वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रत्ना यादव, पत्नी मंशा यादव, ग्राम लश्करिया राजा तालाब वाराणसी की निवासी हैं। रत्ना यादव की उम्र 24 वर्ष, लंबाई 5 फुट, रंग गेहुआ एवं चेहरा गोल है। रत्ना यादव दिनांक 4 अगस्त 2022 को घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं और लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया थाना राजा तालाब जनपद वाराणसी को सूचित करें।

थाना कैंट प्रभारी निरीक्षक कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती पूनम पत्नी ब्रिजेश टकटकपुर सरसौली कैंट वाराणसी की निवासी हैं। पूनम की उम्र 42 वर्ष, लंबाई 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला एवं चेहरा लंबा है। विशिष्ट पहचान, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये दिनांक 28 अप्रैल 2026 दिन 3 बजे से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने सफ़ेद रंग की मैक्सी पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा

0: रंग सांवला एवं चेहरा लंबा है। विशिष्ट पहचान इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये दिनांक 28 अप्रैल 2026 दिन 3 बजे से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने सफ़ेद रंग की मैक्सी पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना कैंट वाराणसी को सूचित करें। खोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 13 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधारण की समस्या और समाधान। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर दीपा मिश्रा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 10 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आप हमें फोन जरूर करें। हमारा फोन नंबर है 0542-222-1052।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आज की पेशकश है आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। आज सुनिए जिगर मुरादाबादी की यौमे वफात पर जिगर की शायरी का सफर। मुबाहिसा है एक आग का दरिया। शायर हैं डॉक्टर यासिर अंसारी, सैयद गुलाम अब्बास, प्रेजेंटर हैं सैयद मोहम्मद उमेर। आइए सुनते हैं।
1: आज की उर्दू बज्म लेकर मैं आपका मेजबान सैयद मोहम्मद उमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, उर्दू गजल की तारीख एक ऐसे वसी दरिया के मानिंद है जिसमें मुख्तलिफ शेरी लहरें, मुख्तलिफ तजर्बात एक दूसरे से मिलते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी दरिया में कुछ आवाज़ें वक्त के साथ साथ मध्यम पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो गुजरे हुए जमानों के फासले मिटाकर आज भी दिलों में घर कर जाती हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, जिगर मुरादाबादी की शायरी भी ऐसी ही एक आवाज है। ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दोस्तों, जिगर साहब की शायरी में इश्क महज एक जज्बाती कैफियत नहीं, बल्कि एक तहजीबी और इंसानी तजर्बा बनकर सामने आता है। उनके अशार में मोहब्बत की कसक भी है और हिज्र का दर्द भी, वसल की आरजू भी है और जिंदगी की भरपूर वाबस्तगी भी। जिगर साहब की शायरी की सबसे नुमाया खसूसियत उसकी मौसिकियत और तरन्नुम है। उनके अशार पढ़ने के साथ साथ सुनने में भी अपना एक खास लुफ्त रखते हैं। यही वजह है कि मुशायरों में उनकी गजलें सामीन के दिलों पर गहरा असर छोड़ती थीं। उनके यहाँ अल्फाज का इंतखाब, बहर की रवानी, काफिया और अदीब की खूबसूरती और जज्बात की शिद्दत मिलकर एक ऐसी शेरी फिजा पैदा करती है जो कारी और सामे दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सामीन, जिगर मुरादाबादी बुनियादी तौर पर गजल के शायर थे। उनका कलाम हमें यह एहसास दिलाता है कि अच्छा शायर सिर्फ अल्फाज को खूबसूरत अंदाज में तरतीब नहीं देता, बल्कि अपने अहद, अपने तजर्बात और अपने जज्बात को इस तरह पेश करता है कि वो दूसरों के दिल की आवाज बन जाते हैं। जिगर साहब की शायरी भी इसीलिए आज तक जिंदा और मकबूल है कि इसमें दिल की धड़कन सुनाई देती है। आज के इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम में हम जिगर साहब की शायरी के मुख्तलिफ अदवार, उनके फिक्री जज्बाती तजर्बात, इश्क व मोहब्बत के तसव्वुरात, उनके उसलूब और उर्दू गजल पर उनके असरात का जायजा लेंगे। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि

0: अगर के शेरी सफर में वो कौन से नशेब व फराज हैं जिन्होंने एक शायर को महज मकबूल नहीं बल्कि उर्दू अदब की तारीख में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक मुबाहसे का। मौजू है एक आग का दरिया, जिगर की शायरी का सफ़र। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ फरमाएं जनाब डॉक्टर यासिर अंसारी साहब, जनाब सैयद गुलाम अब्बास साहब और नाचीज सैयद मोहम्मद उमर। हम सबसे पहले अपने दोनों खुसूसी मेहमान का आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमहीद व ताखिर डॉक्टर यासिर अंसारी साहब से सवाल है। यासिर साहब, सबसे पहले हमारे सामीन के लिए जिगर मुरादाबादी का मुख्तसर शख्सी तारुफ और उनके अदबी सफर का पस मंजर बयान फरमाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उमर साहब। क्या लुत्फ कि मैं अपना पता आप बताऊं, कीजिए कोई भूली हुई खास अपनी अदा याद। 20वीं सदी के निसफ अव्वल के अहम शायर जिनके यहाँ गज़ल में हुस्न व इश्क के तसव्वुर के साथ रुमानियत और रूहानियत के एक हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है
0: जी।
1: इस शायर को दुनियाए अदब अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी के नाम से जानती है। जिगर का आबाई वतन यूं तो मुरादाबाद है और खुद जिगर ने लिखा है कि उनकी पैदाइश बनारस में हुई और वो जमाना 1890 के आसपास का रहा है। एक महज़ब तालीम याफ्ता और बावकार घराने से जिगर का ताल्लुक था। उनके वालिद मोहतरम मौलवी अली नजर साहब खुद शायर थे और नजर तखल्लुस करते थे। जिगर की इब्तदाई तालीम मुरादाबाद में हुई। मुरादाबाद से एटा और लखनऊ के बाद गोंडा तशरीफ लाए, आखिर वक्त तक कायम किया वहाँ पर। 15-16 साल के रहे होंगे जब से उन्होंने दाग दहलवी को अपना उस्ताद तस्लीम किया और उनके इब्तदाई जो पहला मजमुआ है उनका उस दागे जिगर, उस पे दाग दहलवी के असरात भी नुमाया हैं। आखिरकार असगर गोंडवी से उनका ताल्लुक रहा, वो ताल्लुक बहुत देरीना था जो रिश्तेदारी में भी बदला। और उसके बाद शेर कहा है कि क्यों कर बहार शेर से टपके नए जिगर, रंगे कलामे हजरत असगर नजर में है।
0: बहुत ही उम्दा बात आप कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा कि जिगर मुरादाबादी उर्दू गजल के मुमताज तरीन शुआरा में सरे फहरिस्त हैं। उनकी शायरी का बुनियादी मौजू इश्क व मोहब्बत है, लेकिन इसमें दर्द, जिंदगी, हुस्न और इंसानी जज्बात के मुख्तलिफ रंग भी नुमाया हैं। अपनी मुनफरिद जबान, तरन्नुम और जज्बे की शिद्दत के बाइस जिगर साहब ने उर्दू अदब में अपना एक मुनफरिद मकाम हासिल किया है। मजीद आपने उनके मजमू का तस्करा किया और उनके तमाम असातिज़ा का भी तस्करा किया, बहुत ही खूब अपने शख्सी तारुफ पेश किया है। यहाँ पर हमारे साथ सैयद गुलाम अब्बास साहब मौजूद हैं। गुलाम साहब, हम आपसे सवाल करेंगे यहाँ पर कि जिगर मुरादाबादी की शायरी ने उर्दू गजल को क्या अता किया, उर्दू गजल की तारीख में उनका मकाम और उसके असरात को आप किस नजरिए से देखते हैं, इसकी वजाहत फरमाएं।
2: बहुत शुक्रिया सैयद उमर साहब, जिगर मुरादाबादी के हवाले से आपने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम और बड़ी अच्छी बज्म सजाई है। यकीनन जिगर को पढ़ने की ज़रूरत है, जिगर को समझने की ज़रूरत है और उनके ज़रिए जो मैसेजेस और जो पैगाम आज उर्दू दुनिया के लिए हैं उनको आयां और आम करने की ज़रूरत है। जिगर मुरादाबादी ने उर्दू गज़ल को नया रंग, ताजगी, मिठास और एक तरह से कह लीजिए कि एक दिलकशी अता की। उन्होंने गज़ल की पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए इसे नए ज़माने के एहसास से हम आहंग किया कि मीर तकी मीर और मीर दर्द ने गज़ल की रिवायत को जिस दिल सोजी से मजबूत किया था, जिगर ने उसे अपनी नरमी और तगज़ुल से मजीद जाज़िबे दिल बना दिया। उनके यहाँ हुस्न इश्क के जो जज्बात हैं वो बड़ी सादगी और एक तरह से कह लीजिए कि शाइस्तगी के साथ सामने आते हैं। जिगर की सबसे बड़ी पहचान तगज़ुल और नगमगी, मौसीकियत, दर्द भरे लहजे और खूबसूरत तरन्नुम से बनती है। उनकी शायरी में अगर आप एक तरह से मुलाहिजा करें, एक शेर पेश करूँ आपके सामने कि हमने सीने से लगाया दिल ना अपना बन सका,
0: हमने सीने से लगाया
2: दिल ना अपना बन सका, मुस्कुरा कर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया, मुस्कुरा कर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया।
0: बहुत ही उम्दा बात आपने कही, गोया कि आप अपने अशार में इस तरफ इशारा कर रहे थे। यह मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ साकी सबका इमाम है, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है, जो जरा सी पी के बहक गया इसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले जर्फ

0: का काम है। अभी कायनात में ए जिगर कोई इनकलाब उठाएगा फिर, के बुलंद हो के भी आदमी अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। तो बहुत ही उम्दा बात आप कर रहे थे गज़ल के ताल्लुक से, कि जिगर साहब ने उर्दू गज़ल को जज्बे की शिद्दत, ज़बान की शीरनी, मौसीकियत अता किया है। नीज़ उन्होंने रिवायती गज़ल के मौजूआत को अपनी ज़ाती तजर्बात और मुनफरिद लहजे के साथ पेश किया है और उर्दू गज़ल को अवामी सतह पर गैर मामूली मकबूलियत भी अता कराई है। यासिर साहब से एक सवाल और करेंगे। डॉक्टर साहब, जिगर की शायरी आज की नई नस्ल के लिए किस कदर मानवियत रखती है? क्या जदीद दौर का नौजवान उनके शेरी एहसास से अपना रिश्ता कायम कर सकता है या नहीं कर सकता, इस पर आप इजहार खैर फरमाएं।
1: बिल्कुल सही सवाल है आपका। जैसा कि अभी बात हुई कि जिगर मुरादाबादी ने गजल को एक बुलंद मकाम अता किया, जिगर मुरादाबादी की शायरी में आप देखेंगे कि नई नस्ल हकीकत को रुमान बनते देख सकती है।
0: जी,
1: यही वो शायरी है जिसमें रिंदी और सरमस्ती है, उसके साथ ही तल्ख तजर्बात का इजहारिया है, उनके यहाँ इश्क की तलकीन है और साथ ही इश्क से बचने का, उसे इज्तनाब करने की ताकीद भी है। वो अंजाम आगही से बाखबर भी करते हैं। उनका एक शेर है कि आतिश इश्क वो जहन्नम है जिसमें फिरदौस के नजारे हैं, या फिर वो कहते हैं कि हाय रे मजबूरियां, महरूमियां, नाकामियां, इश्क आखिर इश्क है, तुम क्या करो हम क्या करें।
0: क्या बात है।
1: वो अपने अशार के जरिए नौजवानों को हौसला भी अता करते हैं। वो कहते हैं तूले गमे हयात से घबरा न ए जिगर, तूले गमे हयात से घबरा न ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो।
0: बहुत खूब।
1: वो नई नस्ल से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि चमन के माली अगर बना लें मुआफिक अपना शियार, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से रूठी बहार, अब भी। मेरे ख्याल से माशरती अकदार की बहाली और जहनी व रूहानी तरक्की के लिए नई नस्ल को जिगर की शायरी का मुताला करना जरूरी है।
0: बिल्कुल, बिलाशुबा आप जिगर की शायरी में आप जो कह रहे हैं, मोहब्बत, तन्हाई, उम्मीद, नाकामी और इंसानी जज्बात जैसे मौजूआत भरपूर नजर आते हैं जो हर दौर में जिंदा रहते हैं, उनको फरामोश भी नहीं किया जा सकता। आज का नौजवान भी इन्हीं एहसास से गुजरता है, इसलिए जिगर का कलाम आज भी इसे अपने दिल की आवाज महसूस होता है। ये बातें आप कर रहे हैं बहुत ही उम्दा तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल अब्बास साहब से करेंगे। अब्बास साहब, जिगर के शेरी सफर में अभी मस्ती का तस्करा किया था, रिंद का तस्करा किया था डॉक्टर यासिर साहब ने, कि जिगर के शेरी सफर में मस्ती, सरशारी और बेखुदी का रंग बहुत नुमाया हमें नजर आता है। इस रंग के पसे पुश्त कौन से जज्बात और कौन से तजर्बात कार फरमाए, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: जी जी, बेशक आपने दुरुस्त फरमाया। असलन जिगर की मस्ती और बेखुदी महज जाहिरी रंग नहीं बल्कि उनकी जज्बाती और रोमानवी जिंदगी से पैदा हुई थी। आप देखेंगे कि वो नहायत हसास, जज्बाती और हुस्न पसंद इंसान थे, इसलिए मोहब्बत और हुस्न ने उनकी शायरी को गहरा असर दिया था। जैसा कि अभी आपने भी शेर पढ़ा कि यह है मैकदा, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है, यह हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सरशारी और बेखुदी उनकी शायरी में तो पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उनकी जिंदगी में इश्क, जुदाई, तन्हाई और मुसलसल सफर जैसे कई तजर्बात आए। उन तजर्बात ने उनके दिल में जो कैफियत पैदा की वो उनकी शायरी में दर्द, सरशारी और बेकरारी बनकर जाहिर होती है। अब मैं शेर आपके सामने पेश करता हूँ, यासिर सर मुलाहिज़ा हो, कि जुनूने सजदा की मेराज है यही शायद, कि तेरे दर के सिवा कोई आस्था न रहा। बाद के जमाने में यही बेखुदी एक नई समत अख्तियार करती है और जिगर तसव्वुफ और रूहानियत की तरफ मायल होते नजर आते हैं।
0: तो बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि जिगर की मस्ती और सरशारी दरअसल उनके गहरे जज्बात और इश्क के तजर्बात की अक्कासी करते हैं। मोहब्बत की खुशी, हिजर का दर्द और जिंदगी के नशेब व फराज ने उनके शेरी जोक में बेखुदी और सरशारी पैदा की है जो बाद में जिगर के कलाम की नुमाया खसूसियत बन गई। यहाँ पर यासिर साहब से एक सवाल और करेंगे। यासिर साहब, जिगर मुरादाबादी के कलाम की मौसीकियत, तरन्नुम और रवानी ان کی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ ان خصوصیات نے ان کی عوامی مقبولیت میں کیا کردار ادا کیا، اس پر روشنی ڈالی۔
1: بالکل، جگر صاحب کے کلام میں ترنم، موسیقیت اور نغمہ کی یا روانی ان کی مقبولیت کا خاصا ہے یہ، کیونکہ شاعری میں، خاص کر غزل میں، جو ترنم اور نغمہ کی جو میر تقی میر نے اپنے زمانے میں جہاں سے چھوڑی تھی، میرا

अभी आपने सुना देवी गीत, स्वर था मन्नालाल यादव और साथी का। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए इन्हीं के स्वर में दादरा।

0: मन्ना लाल यादव और साथी के गाए दादरा के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 13 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधारण की समस्या और समाधान। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर दीपा मिश्रा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 10 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आप हमें फोन जरूर करें। हमारा फोन नंबर है 0542221052। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
3: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं घर फिल्म से ये गाना। आवाज़ है लता मंगेशकर की, शब्द रचना गुलजार की और संगीत से सजाया है आरडी वर्मन ने।

झंकार में अगला गीत हमने लिया है फिल्म बेमिसाल से, आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी वर्मा।

झंकार का अगला गीत हमने लिया है फिल्म खुशबू से। आवाज़ आशा भोसले की, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं आर डी वर्मन।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 13 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधारण की समस्या और समाधान। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर दीपा मिश्रा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 10 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आप हमें फोन जरूर करें। हमारा फोन नंबर है 0542-222-1052। सुनते रहे कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
2: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10

0: से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिलाषा से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एक बार फिर आरडी वर्मन का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। लता मंगेशकर की आवाज़ में अब सुनिए बहारों के सपने फिल्म से ये गाना। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत आर डी वर्मन का।

0: झंकार में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 13 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधारण की समस्या और समाधान। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर दीपा मिश्रा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिन

0: दीपा मिश्रा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 10 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आप हमें फोन जरूर करें। हमारा फोन नंबर है 0542221052। सुनते रहे कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव सोटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।
2: सुन जा ठंडी हवा।
3: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद फिल्म का ये गाना। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं सलिल चौधरी।

झंकार में अगला गाना आप सुनिए आशा भोसले की आवाज में, इजाजत फिल्म से। संगीत है आर डी वर्मन का और शब्द रचना गुलजार की।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झंकार। किशोर कुमार की आवाज़ में अब सुनिए अभिमान फिल्म से ये गाना, बोल मजरू सुल्तानपुरी के, और संगीत है एसडी वर्मन का।

0: कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार प्रातः 11:30 पर। इस बार दिनांक 13 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधारण की समस्या और समाधान। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर दीपा मिश्रा। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार दिनांक 10 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आप हमें फोन जरूर करें। हमारा फोन नंबर है 0542221052। सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। रूना लैला की आवाज में फिल्म घरौंदा से ये गाना सुनिए। गीतकार हैं नक्श लैलपुरी और संगीतकार हैं जयदेव।

झंकार में अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में सबसे बड़ा रुपया फिल्म से ये गाना। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत है सपन चक्रवर्ती का।

झंकार का आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जमीन आसमान से। आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना अनजान की और सुरों से सजाया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओ आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गुरुवार है और आज का प्रोग्राम आपके द्वारा भेजे हुए ईमेल पर आधारित होता है। कार्यक्रम की ईमेल आईडी है airvnsfgeexp@gmail.com। फरमाइशें आप कभी भी भेज सकते हैं और ये कार्यक्रम बुधवार और गुरुवार को इसी वक्त प्रसारित होता है, उसमें आपके मेल शामिल किए जाते हैं। तो आपके जो मेल हमारे पास आए हुए हैं और उनमें से आपकी फरमाइशें हम पूरी कर रहे हैं। कार्यक्रम का आरंभ आप सबकी फरमाइश के साथ। समस्तीपुर बिहार से ये मेल है। मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह, रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं। तहसील रोड गंज डुंडवारा से केएच राही, गुड़िया बेगम और हम्माद जमील का मेल है। कुंडावल तारा लाल रोड स्टेशन जिला देवरिया के हमारे श्रोता हैं रतिना त्रिपाठी, राखी, आर्या, एंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और उनकी माता जी निर्मला त्रिपाठी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से ये मेल है रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। मुबारकपुर उच्चतकिया, आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा और वकार हैदर।

परवेज अहमद हैं शुकुलपुरा वाराणसी के श्रोता। छोटी बलिया मुंबई से ये फरमाइश आई है। अहमद भाई फूलवाले, सदफ आरजू, इकबाल, इमरान और कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना, नसरीन, राबिया, मंतशा और आशु अहमद। जीटीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद अख्तर, जासमीन, शकीला, सना, शमा, हीना और रजिया सुल्ताना। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देवकुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। कासम कॉलोनी सनावत से हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीना, इरफान और कासिफ मीना। ये फरमाइश है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान और लव दीवान। अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर की फरमाइश टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से आई। आप सबकी पसंद का गीत पंकज दास और अलका याग्निक की आवाजों में है। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।

आदमी खिलौना है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, पंकज उधास और अलका याग्निक की आवाजें थी। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश, फरमाइश आप सबकी आई है ओखला संगम विहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता। जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता की फरमाइश पोफाली यवतमाल से। हमारे श्रोता हैं कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव और संचित देशमुख। वेद मिढा और अलका मिढा की फरमाइश नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, आप सभी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर के हमारे श्रोता हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी। ग्राम बहरीपुर पोस्ट राजेपुर जौनपुर से मातिवर यादव, सावित्री, ज्योति, ईशु, दीपक, गोलू, आहाना, जहाना और भोलू। मनिहरा कंडेहरा चंदौली से मोती यादव, राजू यादव, रामखिलावन यादव, रीमा देवी, अंतिमा देवी, हंसराज यादव, गुलशन यादव, मौसम यादव, शुभम यादव, रागनी और रुचि यादव। रेखा पांडे, संतोष

डे प्रगति पांडे और शिवम पांडे की फरमाइश चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से। उदिता और सुचिता विश्वकर्मा हैं देवरिया उत्तर प्रदेश की श्रोता। पटेल नगर मुगल सराय से ये मेल सुनील कुमार सिंह का है। अशोक विहार कॉलोनी पहाड़िया वाराणसी से अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गौंड, अविरल और अग्रिम गौंड। पंचेरी जम्मू से राकेश कंगोत्रा और अनीता कंगोत्रा। लल्लापुरा वाराणसी से अलीसा, अयान खान, अलीसा और ऐनुल खान। कर्णो खलालगंज रोहतास बिहार से ये मेल राजकिशोर सिंह चौहान, बड़ा सिंह चौहान, अशोक और उनके परिवार के सदस्यों का। अशोक कुमार प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश, राहुल प्रजापति हैं करौता वाराणसी से। इमृति यादव ग्राम बरठी पोस्ट सकलडीहा चंदौली के श्रोता है। अथर्व अग्रहरी, हनी अग्रहरी, खुशी अग्रहरी और मानसी अग्रहरी हैं दुद्धी सोनभद्र से, साथ में मुरलीधर अग्रहरी। वाराणसी के श्रोता हैं आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोकोरानी। दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना और हसीन दिलशाद। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मागे खान, शहीद खान, ईदो कुमारी, इसरोल बाड़मेर राजस्थान से। संजय नगर कॉलोनी ऐशबाग लखनऊ के श्रोता हैं वारिस अली खान, मुरीनुन निशा, ये मुनीर उन निशा नाम है। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव हैं संबलपुर कांकेर के श्रोता। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। परली का तहसील नोहर हनुमानगढ़ जंक्शन से हैं विनोद कुमार जांगड़ा, रामनिवास छीपा और उनके मित्र। बड़ी गवी चौराहा वाराणसी के श्रोता हैं अरुण कुमार मालवी दर्द, नवीन सिंह, ज्योति सिंह और उनके परिवार के बाकी सदस्य। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपका मेल आया, शुक्रिया आपको। अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार और सन्नी भावसार हैं वीरम गांव गुजरात के श्रोता। आप सबकी पसंद का गीत आशा भोसले, अमित कुमार और साधना सरगम की आवाजों में, फिल्म है तड़प ऐसी भी होती है। विश्वेश्वर शर्मा ने गीत के बोल लिखे हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

अरब कार्यक्रम की अगली पेशकश। फरमाइश इन श्रोताओं की है बाघामुड़ा कुमा खान छत्तीसगढ़ से, प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन और प्रकाश देवांगन, यहीं से गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। शिवाजी चौक कटनी के हमारे श्रोता हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और सौम्या, साथ में उनके माता पिता। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई के श्रोता हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनी आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, यश प्रयाण वर्मा, बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपकी फरमाइश आई। ये मेल है अकोट अकोला महाराष्ट्र से राम राव नितोने, शारदा नितोने, सानिया और रिया का।

बाजार रोड मुगिसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी और नुमैर मंसूरी। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी, डोंडी लोहारा से राधिका और प्रभाराज पासवान। नलेश्वर नगर नरवेल के श्रोता हैं जिनका ये मेल है, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आशीष मुन्हेकर।

गांव बिठोड़ा भोयर तहसील मंगरूल पीर वासिम पश्चिम विदर्भ से ये मेल योगीराज मस्के श्री हरि मस्के इंदुमती मस्के कविता मोहन विशाल कुशल गोपाल श्याम गोविंद मस्के और उनके साथियों का है। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसुतासु अर्णव आनंद और सत्यमानंद बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले और सुशील येले हैं सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से। अनु बड़जात्या शमसुल खान और अनुराज बेनारा की फरमाइश मुंबई से आई है। वीरेंद्र भ्याण सुरेंद्र भ्याण शमशेर भ्याण और मनोज भ्याण हैं जेवरा हिसार के श्रोता। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म सूर्या का ये गीत। अनुराधा पौडवाल की आवाज साथ में मोहम्मद अजीज संतोष आनंद ने गीत के बोल लिखे हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

सूर्या फिल्म का युगल गीत आप सुन रहे थे और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम। इससे पहले आपको बता दें कि वक्त 11:31 का। आज का ये प्रोग्राम आपके ईमेल संदेशों पर आधारित, आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। श्रोता, हमारे केंद्र के कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतिक्रियाएं हमें आप भेज सकते हैं pkld@varanasi.gmail.com पर। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम इस हफ्ते क्रिकेट मैच है शाम को, इस वजह से 13 तारीख रविवार को दिन में 1:15 आप पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुन पाएंगे। और आमतौर पे क्रिकेट मैच नहीं होने की स्थिति में ये कार्यक्रम यानी पत्र के लिए धन्यवाद रविवार शाम 7:30 पर प्रसारित होता है। उस कार्यक्रम में मेल आप कभी भी भेज सकते हैं pkld@varanasi.gmail.com पर, और लेकिन वहाँ फरमाइशें न भेजें, फरमाइशी मेल इस कार्यक्रम का आपको बता रहे हैं airvnsfgexp@gmail.com। और अब अगले गीत की बारी, फरमाइशें आप सबकी हैं। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और कुलदीप सिंह होरा। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढिंगरा और उनके दोस्त। थाना रोड बक्सर से हैं जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता। बंडूलोहार माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट हैं तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से। वंजारा नागपुर महाराष्ट्र से हैं अनिल कोल्हे, छाया कोल्हे, प्रियांश कोल्हे और उनके परिवार के बाकी सदस्य। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और उस्मान अंसारी हैं गंज डुडवारा से। ये मेल है गणों का लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़ा सिंह चौहान, मोतीमाला गुप्ता और आर के सिंह चौहान का। धानोरा विटाली तहसील नांदूरा से हैं भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ये ईमेल रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान का है। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन हैं मालियान सरधना मेरठ से। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से ये मेल आया है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया, अयान बाबू और उनके परिवार के सदस्यों का। चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा और कृष्टि पटवा हैं

धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से। आप सबकी पसंद का गीत फिल्म गुलामी से है, लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज़।

लता मंगेशकर की आवाज में गुलामी फिल्म का गीत था। और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फरमाइशें आप सबकी हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना और केशु खुराना, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हरिभाव बिड़वे, श्रावण, शुभांगी और अनीता बिड़वे, कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, हिप्पर सोगा लातूर से उस्मान शेख, फौजी, सायरा बानो शेख, करिश्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्य, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और संवी गुप्ता हैं पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार की फरमाइश भोपालगढ़ राजस्थान से आई है। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिहा जुबैर और अंजुमन खान, निमनाबाद जिंदा हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर और रोशनी मनवर, सहारनपुर कुमार हेड़ा से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और उनके परिवार के सदस्य, गुरप्रीत तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत कौर हैं मोहाली पंजाब से, अनु बड़जात्या, शमसुल खान और अनुराज बेनारा की फरमाइश मुंबई से, मालियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान जैन और जीबीएम जैन, दुर्गई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का मेल उत्तम नगर दिल्ली से आया है। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने यह मेल भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। पदमपुर गंगानगर से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा।

गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, बाबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल।

वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताई जाधव और संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वेद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख हैं पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। मजनू कटीला दिल्ली से ये मेल आया है, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा का। सतना मध्य प्रदेश से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, हमद जमील और बेबी अरीबा हबीबा हैं पटियाली रोड गंज डुंडवारा से। आप सबकी फरमाइश का गीत किशोर कुमार की आवाज में है, फिल्म है एक नजर। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत के बोल लिखे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: एक नजर।
1: जी हाँ श्रोताओं, और इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल करना चाहते हैं अपनी फरमाइश तो आप हमें मेल भेज सकते हैं airvnsfgexp@gmail.com, ये इस कार्यक्रम की मेल आईडी है। कभी भी आप फरमाइशें भेज सकते हैं, वो बुधवार को और गुरुवार को इसी वक्त यानी 11 से 12 बजे के बीच इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही कार्यक्रमों से जुड़ी अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें भेजें पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में pkld@varanasi.gmail.com पर। अगला गीत जिसकी फरमाइश आई है आप सबकी, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा से हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। गांधीनगर गुजरात से ये मेल आया है जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष परमार और दीपल परमार का। सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना और गुरवंश सिंह जौड़ा हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से। जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना गुप्ता और सानवी गुप्ता की फरमाइश बक्सर बिहार से आई है। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार और कृष्टि पटवा हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से। ऊपर कोट मोहल्ला चखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई और प्रीतेश संघई। गांधी चौक बाड़मेर से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबू राम जयपाल। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता की फरमाइश। दिव्यांशु यादव, संजय ढींगिया, अनिल जैन, राधा रामदेव और दर्शन, साथ में कविता गौंड मेरठ कैंट से। आप सबकी फरमाइश का गीत फिल्म आशा से है, लता मंगेशकर की आवाज़।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप मेल भेज सकते हैं airvnsfgexp@gmail.com पर, airvnsfgexp@gmail.com। कभी भी आप मेल भेज सकते हैं और वो मेल आपके बुधवार और गुरुवार को 11 बजे प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। साथ ही हमारे केंद्र के दोनों ही चैनल यानी विविध भारती वाराणसी और आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं, सलाह और सुझाव भी pkldairvaranasi@gmail.com पर। वो कार्यक्रम रविवार शाम 7:31 पर प्रसारित होता है, लेकिन इस हफ्ते क्रिकेट मैच शाम को है, इस वजह से आप दिन में 1:15 बजे कार्यक्रम सुन पाएंगे।

आशा फिल्म से था ये आखिरी गीत कार्यक्रम का, लता मंगेशकर की आवाज में। और अब आज का ये प्रोग्राम फरमाइश गीत एक्सप्रेस समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद

0: करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CITNCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
6: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
0: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल हैं। एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए।

0: लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
1: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
0: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
1: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
0: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
1: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ

0: नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत,
3: फूल सी गुड़िया हमारी।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्याय। पहले सुनिए अहमद फराज की गजल, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए।

तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। अहमद फराज की गजल अभी आप सुन रहे थे। स्वर डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय का था। और अब मिर्जा गालिब की गजल। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। फनकार हैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्याय।

अभी आप सुन रहे थे। आवाज डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्याय की थी। आज का सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 12:45 और 44 सेकंड हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है आर्यन मिश्र का गायन। राग है मुल्तानी, तबले पर संगति की है गौरव चक्रवर्ती ने।

0: अभी आप सुन रहे थे आर्यन मिश्र का गायन, राग था मुल्तानी, तबले पर संगति की गौरव चक्रवर्ती ने। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में

0: सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। मुंबई।
0: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। पुलिस

शिक्षक कार्यालय जौनपुर से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार मधु चौहान, पिता का नाम ओम प्रकाश चौहान, ये लमहन महाराजगंज जौनपुर की निवासी हैं और 24 जनवरी 2026 से लापता हैं। मधु चौहान की आयु है 15 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था सफ़ेद सूट सलवार। इनके बारे में कोई जानकारी आपको हो तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जौनपुर को सूचना दें। कुमारी शिखा सिंह, पिता का नाम मुकेश सिंह, ये खरगनपुर चिलबिला बड़ा गांव वाराणसी की निवासी हैं और 8 दिसंबर 2023 से अपने घर से लापता हैं। कुमारी शिखा सिंह की आयु है 17 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग गोरा, एकहरा शरीर, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था मैरून रंग की समीज और सफ़ेद सलवार। इनके बारे में कोई जानकारी आपको हो तो प्रभारी DCRB कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जौनपुर से प्राप्त एक और सूचना, इसके अनुसार आमिर हमजा, पिता का नाम जकाउल्ला, ये बद्दोपुर शाहगंज जौनपुर के निवासी हैं और 24 मार्च 2026 की शाम 6 बजे से शाहगंज से लापता हैं। आमिर हमजा की आयु है 22 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीले रंग की टी शर्ट और काले रंग की लोअर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय जौनपुर को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 7:31 से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7 बजे आज डॉक्टर शुभांकर बाबू की वार्ता आप सुनेंगे, त्वम विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। शाम 6:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा, आज का मौसम, किसानों से बातचीत, आज का बाजार, मंडी भाव। इसके अलावा डॉक्टर आशीष कुमार मेहरोत्रा लतारे जानकारी देंगे जैविक विधि से कृषि प्रबंधन विषय पर। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे मन्ना लाल यादव और उनके साथी। इनके गाए कुछ लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत में भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले होगा शाम 4 बजे। धरती के गीत कार्यक्रम में आज संजीत मंडल के गाए बांग्ला गीत सुनवाए जाएंगे शाम 5 बजे। कहकशां प्रोग्राम होगा 2:30 पर। 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में चर्चा और गीत संगीत के अलावा प्रतिभा त्रिवेदी से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत होगी, डिजिटल साक्षरता और महिलाओं का विकास। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अजीम मुजाहिद आजादी मुल्क के साबिक वजीर दाखिला और उत्तर प्रदेश के पहले वजीर आला भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 147वीं योम पैदाइश पर

0: आज लखनऊ में उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि पंत जी ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी और इकतसादी तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और कौमी मफाद के लिए वक्फ कर दी। रियासत की हुक्मरानी में अच्छी हुक्मरानी की आला आदर्श कायम किए।
1: पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी एक महान अधिवक्ता थे, स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन हो या समय समय पर स्वाधीनता संग्राम के लिए होने वाले हर बड़े आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 1947 में देश की आजादी के साथ वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। इस बड़े राज्य की व्यवस्था को सुशासन के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना और इसके आर्थिक उन्नयन, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करना, इसके लिए उन्होंने उस समय अपना प्रयास प्रारंभ किया।
0: मरकजी काबिने ने रेल राबते को बढ़ाने के लिए 9 रियासतों में 20,800 करोड़ से ज्यादा के 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबिने ने 7 हाई ट्रैफिक रेलवे नेटवर्क्स को 4 लेन मंजूर किया है। इनमें दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता और कोलकाता दिल्ली प्रोजेक्ट शामिल है। दिल्ली हावड़ा रूट उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशनों का अहाता करेगा। दिल्ली मुंबई रूट में मथुरा, दिल्ली गुवाहाटी रूट में मुरादाबाद, बरेली लखनऊ और गोरखपुर शामिल होंगे, जबकि दिल्ली चेन्नई रूट में आगरा और झांसी रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। नई दिल्ली में काबिना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये 7 रहदारी तकरीबन 40% रेलवे ट्रैफिक का हिस्सा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तमाम कॉरिडोर को 4 लॉइंग और जोगनी कर रहे हैं। 7 हाई डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर और कई दीगर कॉरिडोर जो मुस्तकबिल में काबिल जिक्र ट्रैफिक हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में आज स्ट्रोक की यूनिट, सुपर स्पेशलिटी वेट और न्यूरो सर्जरी वार्ड का इफ्तिताह किया, सेहत की नई सहूलत का आगाज किया। उन्होंने कहा आज लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और सिविल अस्पताल के दरमियान राबता कायम किया गया है ताकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के ख्वाहिशमंद मरीजों के लिए फौरी तौर पर आला मियार के तिब्बी देखभाल को यकीनी बनाया जा सके। वहां के डॉक्टर यहां आएंगे और मरीजों को आला मियार की देखभाल फराहम करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कल वाराणसी में नवे कौमी गजाइत के महीने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9.5 सालों में 70,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी मराकज की तजयीन और आराइश की गई है। कौमी गजाइत के महीने की इस साल की थीम मेरी आंगनवाड़ी मेरी जिम्मेदारी को अवामी शराकत से जोड़ते हुए वजीर आला ने कहा कि आंगनवाड़ी सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का वजीर आजम का ख्वाब तभी पूरा होगा जब मुल्क के बच्चे सेहतमंद, काबिल और तालीम याफ्ता होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नवा कौमी गजाइत का महीना एक सेहतमंद और मजबूत हिंदुस्तान के अज़्म को आगे बढ़ाने की मुहिम है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी मुनक्किदा वर्किंग वुमेन्स ऑनर्स तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि हुकूमत जल्द ही फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट तलबा को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम से जोड़ेगी।
2: हमने बेटियों और युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और अभी मुझे बताते प्रसन्नता बहुत से स्नातक फाइनल ईयर की बालिकाओं को 50,000 मेधावी बेटियों को हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे स्कूटी योजना के साथ जोड़ने जा रहे हैं।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासती तिब्बी और सेहत खिदमात कैडर के रिटायर्ड माहिर डॉक्टरों को दोबारा मुलाजमत के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद को 65 से बढ़ाकर 70 साल करने का फैसला किया है। नायब वजीर आला और रियासती वजीर सेहत ब्रजेश पाठक ने कहा कि हुकूमत ने यह फैसला मफाद आम्मा में लिया है ताकि मरीज सीनियर और माहिर डॉक्टरों के तजुर्बे से फायदा हासिल कर सके। आज खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन है। ये दिन दुनिया भर में खुदकुशी को रोकने और जहनी सेहत के बारे में शौर उजागर करने के लिए मनाया जाता है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगा। दरियस्ता बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत के 26 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। तमाम इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। गंगा और यमुना नदियों में पानी की सतह अब भी उतार चढ़ाव का शिकार है जिसकी वजह से साहली इलाकों के बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:16 और 26 सेकंड हुए हैं। अब ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया।

0: अग्निया कार्यक्रम सुनने वाली बहनी लोगन के नमस्ते, अगुंजा तोहरो के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो लाली दीदी, नमस्ते। हमरे ओरी से भी बहनी लोगन के नमस्ते।
0: आजकल तो देखा थे कि भर दिन कामे में तू अझुरायल रहत हो, का बात हो?
1: अरे का करी दीदी, जब घर में ना महतारी या बाऊ जी जब बुजुर्ग हो जाला ना, तो काम बढ़ जाला। कहे से कि जनबे करेलू, हर हर वक्त कुछ न कुछ उनके जरूरत रहला, कुछ न कुछ के लिए आवाज देबे करेलन। तो धाई धाई के जाके उनका आवाज सुना, उनकर की काम करा, माने कि कुछ न कुछ जरूरत हो तो देखे के पड़ेला। कहे से कि अब उन लोगन तो चल पावत ना हुअन, एक जनी चल ना पावत हुअन तो एक जनी का हाथे खराब हो गए, तो उनमें हमई के देखे के पड़ा। तो लेकिन का करी, अब ये समय अगर उन लोगन का सेवा ना कीहल जाए तो का करल जाए।
0: बिल्कुल सही बात कहत हो। बूढ़ पुरनिया मने तो घरे में बट वृक्ष के जैसे होलन। हाँ, भले वो कुछ न कर पाए लेकिन घरे में रहेलन तो कितना वजन लगेला। हाँ, माने घर के अगोरत रहेलन। एकरे संगे संगे देखा ना, जब बुढ़ापा आवेला मनई का तो सोचे ला ना कि हमरे पजरे केहू आवे आ घड़ी घंटा बैठे बोले बतियावे, तो ई करे के भी चाहिए हो। देखा उन लोगन अगर कहीं जाए आवे में असमर्थ हुआ, तो अगर उनके लगे मनई समय न दे तो उनकर मन कैसे बहली। हाँ,
1: सही बात है।
0: आ उनके दुख सुख के समझी। धीरे धीरे जब अवस्था हो जाए ना, तो मनई का जो दिमाग होला, बुद्धि होला, वो बहुत नकारात्मक सोच से प्रभावित हुए लगेला। कबो कबो बूढ़ पुरनिया लोगन बैठे बैठे सोचत रही है, पुरान समय सोची है कि हम कैसे काम करत रही, कैसे चलत रही, कैसे सबकर देखभाल करत रही। कबो कबो जब केहू उनकर अनदेखी करेला ना, तो उनके मन में ऐसा ख्याल आवेला कि अब हम बेकार हो गए, हमरे जियले कोनो फायदा नहीं। तो ये एहसास उनके न होए के चाहिए, इतना तो सबके ध्यान रखे के।
1: एकदम सही कहलुए लाली दीदी। अब देखा ना, घर का ननका न हुए ना, हम उनके इतना समझाई ला कि ये बच्चा जब कोई बुलावे तो तनी सुन ले हल कैली। कहे से कि भाई उन लोगन बुजुर्ग हो गए लोगन, उन लोगन के हम लोगन के जरूरत हो तो तनी सुन ले हल कैली। लेकिन का करे सब खेल में ना, तो का करियन जो बाऊजी हुन खिजी आ जालन कभो कभो, मार बोले लगेलन। तो हम कहिला कि बाऊजी मत बोला, छोट लइकन हुन, अब खेल खेल में ना सुनत हुन तो जायदा कोई बात नहीं। फिर भी बड़ा समझावे के पड़ेला हो ननकन के कि तनी सुन ले ओल करा। कहे से कि भाई उनके पानी हो, समय पे दवाई हो, चाहे कुछ खावल जाए ना, तो सबसे पहले तो उनके देहल जाला। कहे से कि भाई सही कहलू है कि वट वृक्ष हुन हम लोगन का, उन लोगन अब अभी हुन, जब न रहियन ना तो उनकर महत्व तब हम लोगन के पता चली कि वो का रहलन।
0: लेकिन बड़ी धीरज का जरूरत हो। अगर केहू के घरे पुरनिया रहे तो जैसे कही लाना कि पुरनिया लोगन का दिमाग का हो जाला कि की बतिया की बार बार कही है, बार बार कही है, बार बार तो के गोह रही है, कौनो काम ना रही तब वो सोची है कि पजरे हमरे बैठल रहे। तो इमन कबो कबो बहनी लोगन भैया लोगन खिसिया जालन कि अरे केहू के काम धंधा नहा का हर घड़ी चिल्लात रहेलिन बोलत रहेलिन। लेकिन उनके परिस्थिति के समझे के चाही। हम हई तू हौ केहू ह, सबके ओ दशा से गुजरे के। हाँ, तो ओ समय में का मानसिक स्थिति होले का

0: स्वास्थ्य के स्थिति होले सब कुछ देखभाल करल जानल हमही लोगन का जिम्मेदारी है। एकरे साथे साथे देखा अगर वो बीमार पड़ जात हुआ या कोनो समस्या उनके स्वास्थ्य संबंधी हो जाता तो उनके अनदेखी न करे के चाहिए घर परिवार वाले उनके। हाँ, उनके तुरंत चिकित्सा करावे के चाहिए, डॉक्टर भैया बहनी के यहाँ ले जाए के चाहिए और समझे के चाहिए कि भाई इनकर भी दुख तकलीफ जल्दी से दूर हो।
1: भाई जब चिकित्सा का बात कैलू है ना लाली दीदी, देखा हो अब तो सरकार की ओर से भी जवन आयुष्मान भारत योजना चलावल जाता ना तो ओकर भी बड़ी लाभ मिला। तो भाई भाई जे आर्थिक रूप से मजबूत ना हो चाहे जेकरे पास से उतना पैसा ना हो पावत हो कि वो बीमारी में लगा सके, तो अगर वो आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा लेते हो ना तो ओके बड़ा सुविधा मिला। तो सरकारी अस्पताल में भी अगर सुविधा मिला तो जवन निजी अस्पताल हो जवन की आयुष्मान भारत योजना के सूची में हो उनमें भी जाके अपन इलाज करवावल जा सकेला।
0: ऐसे बहुत भाई बोझा न पड़ी मनई के ऊपर कि अरे अब इन बूढ़ पुरनिया हो गए उनका इलाज करावे में हम इतना पैसा लगावती, इकुल सोच से भी मनई आगे निकल जाए। हाँ, अब भाई अच्छे से आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले तो हम तो कहे ला कि अगर केहू के घरे में पुरनिया होते मन देरी न करे, अगर कार्ड न बनल हो तो ओके बनवा ले हाली।
1: हाँ, समय से भाई कार्ड बनल जरूरी हो। अब बहनी लोगन के ई भी बतावल चाहती ना कि देखा एमे अपने ओरी से पैसा ना लगेला, अगर तू अस्पताल में भर्ती केहू के कर देत हो तो ओकर जितने जांच होए चाहे इलाज हो चाहे डॉक्टर का फीस होए कुल यही से हो जाला।
0: बस एक बार भर्ती करे का देरी है उकरे बाद पूरा अस्पताल का जिम्मेदारी हो जाएले कि वो जब तक उनके यहाँ से डिस्चार्ज होके छुट्टी होके चल ना जाता मरीज जी तब ले वो अस्पताल का पूरा जिम्मेदारी रही कि उनकर पूरा खर्चा उठाइए।
1: तो बहनी लोगन ये योजना का लाभ ले में अलाली दीदी।
0: हाँ हो,
1: देखा हो हम लोगन जानकारी का बात तो दिल्ली है बहनी लोगन के, अजय संदेश हो उसे भी बहुत जानकारी मिली तो इस संदेश सुन ले जाए
0: सुनवा दा।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
6: 0542227658।
4: ओ
3: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ
3: 0542227658। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला सुनिए आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6:30 बजे।
7: देखा जानकारी का बात सनेश के माध्यम से बहनी लोगन सुन ली जा। अब देखा औरों का जानकारी सुनवा वथु।
8: जानकारी तो सुनवाई, बाकी ई कहब न दीदी। देखा हो आजकल जने जने के हाथ में मोबाइल हो गए लो, खास करके जो घर का घर आईती नहीं ना।

0: जब काम से फरी आ जाइए तब तो मोबाइल लेके बैठ जाइए हैं, तब मोबाइल में हमें न जाने माने कि अपने जन मनोरंजन का साधन होता देखते हैं, बाकी आजकल बाजारे का जन सामान हो ना मोबाइले पे आ गए लो तो हमें वो भी खरीद लेते हैं। अब भाई कभो कभो ऐसा हो जाता ना उनसे कोनो गलत बटन दब जाते तो भाई उनके बहुत भुगतान भी भरे के पड़ा था। तो ऐसने में बहनी लोगन देखा तनी ध्यान दा मोबाइल ले ले हो तो ओकर पूरा जानकारी भी संगे संगे रखा, कहे से कि जानकारी न हुई तो भाई ई होई कि मोबाइल हौ हाथे में लेकिन ओकर इस्तेमाल करल ना आवत हो। तो बहनी लोगन के देखा जब मोबाइल ले ले ले हो चाहे लइकन भी हवन संगे संगे ऐसा हो कि लइकनो हवन ना तो लइकनो मोबाइल में कुचुर कुचुर कर ले रहियन कैले रहियन लेकिन उनके समझ में ना आवेला तो बड़ा बड़ा भारी भुगतान भोगे के पड़ेला। भाई कबो कबो तो ऐसा हो जाला ना कि जानकारी ना हो तो हम लोगन के ओमें कुछ का कुछ बटन दब जात हो चाहे लइकन छोट हुअन तो खेल खेल में कुछ और बटन दबा देत हुअन। तो ऐसने में हम लोगन के बहुत ध्यान देवे का जरूरत हो। अब देखा शिक्षा तो सबके लिए जरूरी होला ना, ये तो मानल बात हो कि बिना ज्ञान के मनई एकदम पशु समान होला, लेकिन भाई अपन ज्ञान बढ़ावे खातिर आजकल देखा मोबाइल हो उसे ज्ञान भी बढ़त हो उसे मनोरंजन भी होत हो उसे सब सुख सुविधा मिलत हो, लेकिन सुख सुविधा के साथे साथे ओकर इस्तेमाल करल जरूरी हो। तो ऐसने में देखा मोबाइल का भी जो जानकारी होला मोबाइल जो शिक्षा होला ओके का कहल जाला डिजिटल साक्षरता, माने कि अगर डिजिटल साक्षरता हम लोगन की ओर में रही ना ध्यान में तो हम लोगन मोबाइल का सही इस्तेमाल कर सकब। तो आज बहनी लोगन खातिर एको बहुत ही बढ़िया देखा नीक बात कही लेके आवल गए हो कि डिजिटल साक्षरता और महिलाओं का विकास कैसे हो में इपे डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी से अपन शिखा श्रीवास्तव बहन बतियाइले हैं। तो बहनी लोगन एके सुने।
1: श्रोता बहनों, हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और शिक्षित होने के लिए हम लोग हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, चाहे वो बालिका हो, बालक हो, महिलाएं हो या फिर प्रौढ़ शिक्षा की बात करें। लेकिन आज जो विषय लेकर हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है डिजिटल साक्षरता। तो ये डिजिटल साक्षरता क्या है और इसकी क्या क्या लाभ हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है प्रतिभा त्रिवेदी जी को। ये प्रधानाचार्य हैं और आप लोगों को डिजिटल साक्षरता के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाली हैं। तो प्रतिभा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: जी। आप श्रोता बहनों को ये बताएं कि ये डिजिटल साक्षरता होती क्या है।
2: डिजिटल, जैसा कि अंग्रेजी शब्द है डिजिटल, मतलब जो भी चीजें कंप्यूटर से मोबाइल से जुड़ी जो भी जानकारी है उसे डिजिटल कहते हैं
1: जी।
2: जो आपको तुरंत उपलब्ध है, किताबों में नहीं जाना पड़ता
1: जी।
2: आज पूरा जो दुनिया है एआई पे चल रहा है, रोबोटिक्स पे चल रहा है, डिजिटल हम बहुत पहले ही हो चुके थे। जब मोबाइल का जैसे ही प्रवेश हुआ वो डिजिटल हुआ, उसके बाद कंप्यूटर्स आया, लैपटॉप्स हैं। आज तकनीकी विकास इतने चरम पर है कि आप मन में जो विचार करें वो भी मेटा एआई से कैच कर ले रहा है और चीजें हो जा रही हैं। हर किसी को इसकी जानकारी रखनी चाहिए, ये साक्षरता है
1: जी।
2: सरकार ने भी बहुत से स्कीम्स चलाए हुए हैं जहाँ पे उनका विशेष ध्यान है ग्रामीण महिलाओं के ऊपर कि वो भी डिजिटल साक्षरता को हासिल करें, उन्हें सारी जानकारी हो तो वो अपने कार्य क्षेत्र में वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करेंगे अगर वो डिजिटली साक्षर हो जाए।
1: अच्छा, इसी क्रम में ये भी जानना चाहेंगे कि ये आवश्यक क्यों है, क्यों हर किसी को डिजिटल रूप से साक्षर होना जरूरी है।
2: देखिए, जब कोरोना आया तो कोरोना ने एक चीज सिखा दिया, एक तो लोगों ने मास्क लगाया, आज फिर लोग भूल गए हैं मास्क, सैनिटाइजर, और तीसरा ये रहा कि लोगों ने मोबाइल यूज कर, आपके हाथ में मोबाइल आ गया तो ये वो खिलौना है जिसका वार दोनों तरफ से होता है
1: जी।
2: अगर वो आपके फेवर में है, आप सब्जी भी लेते तो देखिए सब्जी वाला भी स्कैन करके, अब रुपए ले जाने की नहीं, कोई चोरी का झंझट नहीं कि कोई बटुआ मार के ले गया, आप स्कैन कर दीजिए तो आप डिजिटल मनी से सारी खरीदारी कर लेते हैं
1: जी। जी,
2: इसका दूसरा साइड ये है कि अगर आप डिजिटल साक्षर नहीं है, मोबाइल आपने लिया है तो आपको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल फोन किसी ने टैप कर लिया हो, उसकी जानकारी इधर उधर लीक आउट हो रही हो, आपके फोन जो है आपके गैलरी में जो तस्वीरें हैं इधर उधर ना जाए, ये जानकारी रखनी जरूरी है ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। कई बार देखिए लोगों के पास फोन आता है उन्हें जानकारी नहीं होती और कहीं से कोई लैपटॉप से उसको

0: वहां से पूरा ट्रेन कर रहा होता है और लोगों को जानकारी नहीं होती तो महिलाएं सीधे सीधे ओटीपी दे देती है। ओटीपी डालते ही अगर बैंक में जो भी पैसा है वो खत्म हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, निकाल लेते हैं ये जो फ्रॉड है। तो इसीलिए डिजिटल साक्षर होना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, तो ये बताएं, ये डिजिटल साक्षरता को लेकर के क्या सरकार की भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं?
0: जी, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। उसमें पहला है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसमें ज्यादातर देखिए कि सभी वर्ग के शहर में जो महिलाएं काम कर रही है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग डिजिटली साक्षर हैं, उसके बगैर तो काम हो नहीं सकता। लेकिन गांव तक भी पहुंचाना जरूरी था, तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई है ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इसके तहत महिलाओं को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, फ्री प्रशिक्षण दिया हुआ है और 52 से

0: उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, फ्री प्रशिक्षण दिया हुआ है और 52 से 57% तक के जो कैंडिडेट है उनको नौकरियां भी दी जा रही है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है वो ट्रेनिंग करने के बाद और उनको कहीं ना कहीं नौकरी दी जा रही है। एक है साइबर सखी इनिशिएटिव। साइबर सखी में क्या है कि पहले भी आपने महिला पुलिस में देखा होगा सखी शब्द आता है, बैंकिंग में भी सखी शब्द आता है कि गांव में छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर उनको लोन पास होता है, छोटे कुटीर उद्योग वो चला पाते हैं। तो अब साइबर सखी इनिशिएटिव ये है, इसमें महिलाओं को ट्रेन कर दिया जाता है, उनमें आत्मविश्वास आता है और अगर एक महिला अगर किसी तरह से साइबर क्राइम की शिकार हो रही है तो साइबर सखी जो इनिशिएटिव है ये जो ट्रेन्ड महिलाएं हैं उसको टेकअप करती है और साइबर सेल में जाके उसका भी निवारण कर लेती हैं। कृषि के क्षेत्र में देखिए तो नमो द्रोण दीदी है। नमो द्रोण दीदी में क्या है, ये भी एक स्कीम है जिसमें छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। द्रोण आपने देखा होगा कि द्रोण से आज शादी ब्याह हो, तो नमो द्रोण दीदी जो इनकी सरकारी योजना है उसके तहत महिलाओं को प्रशिक्षित करके उनको ये सुविधाएं दी जा रही है कि वो जाए और एक जगह बैठे हैं, अब अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, द्रोण से कहाँ पे कहीं कीड़े लग रहे हैं फसलों में, उसकी पैदावार का है आगे का हिस्सा जहाँ पे कई बार हम जा नहीं पाते कीचड़ के कारण, तो एक जगह सेफ जगह पे बैठ के महिलाएं वो भी पिक्चर लेकर के फसल को उपज को अच्छा कर सकती है।
1: जी जी।
0: उसके बाद एक संचार शक्ति स्कीम भी है, वुमनिया ऑन जेम है कि अगर महिलाएं प्रशिक्षण लेकर के, सरकारी बहुत सी स्कीम्स आती हैं और महिलाओं को लगता है कि अगर वो अपना उद्योग धंधा करना चाहती हैं तो एजेंसी आपको ट्रेनिंग दे दी गई, आपको लाइसेंस मिल गया तो वो सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सी स्कीम सरकार ने किया हुआ है महिलाओं के लिए, स्पेशली ग्रामीण महिलाओं के लिए।
1: जी, आपके विचार से क्या डिजिटल साक्षरता से समाज में लाभ की स्थिति देखने को मिल रही है?
0: मैं बता रही हूँ कि मेरा 99% काम डिजिटल होता है।
1: जी,
0: एक जगह बैठ के तकनीकी विकास इसके दोनों पहलू होते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्टली ट्रेन्ड हैं तो आप उसको अच्छे के लिए यूज करते हैं। राम और रावण हर इंसान में होता है, तो आज उसमें क्या होता है कि हम एक जगह रह के सारे ब्रांचेस में क्या चल रहा है, पिछले 5 साल, अब मैं शिक्षा क्षेत्र में हूँ, इस साल के हमारे जो भी रिजल्ट आए पिछले 5 साल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम बड़े आसानी से कर लेते, पहले नहीं संभव था। अब कितना आप बनाएंगे कागज में, कितनी फाइलें मेंटेन, अब छोटे से चिप में इतनी ज्यादा जानकारी आ जाती है, तो ये डिजिटल युग का, डिजिटल प्रगति का ही ये है कि हम आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: जी, प्रगति की बात आप कर रही हैं, तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं जिनको, जिनके पास वो स्मार्टफोन नहीं है, उस तरह की सुविधा नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से डिजिटल साक्षरता की ओर अग्रसर हो?
0: आपसे बातचीत में पहले ही बताया कि कोरोना एक ऐसा समय आया जब मोबाइल जो है कि हर कोई मोबाइल अफोर्ड कर लिया, मोबाइल कंपनियों ने भी बहुत सस्ते सस्ते मोबाइल निकाले, तो आज की डेट में, आज की तारीख में सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, लोन की सुविधा है, तो मैं नहीं देखती कि कोई ऐसा रह गया जिसके पास मोबाइल ना हो।
1: लेकिन उसमें वो जानकारी की चीजें तो नहीं करती, उसमें सोशल मीडिया का जो प्रभाव है या जो उसका मोबाइल चलाने का उनके ऊपर जो दुष्प्रभाव हो रहा है वो साक्षरता के रेंज में तो नहीं आ रहा?
0: नहीं आ रहा, यहीं पे ट्रेनिंग का, यहीं पे बात हो रही है कि साक्षरता की महिलाओं को ट्रेन किया जाए कि सिर्फ वो व्हाट्सएप चैट और फोटो नहीं, कोई उनका फोन लेकर के उसमें कुछ ऐसे कोडिंग कर सकता है कि वो अपना फोन भी नहीं चला पाएंगे, वो किसी से बात कर रहे हैं बट उसके सारे मैसेजेस, उसके कॉल रिकॉर्ड दूसरे फोन पर जा रहे हैं, तो यही ट्रेनिंग, ये इसीलिए कई बार फ्रॉड देखे, जो सीधी साधी महिलाएं हैं जिनको पता नहीं होता, वो कोई भी फोन उनसे मांगता है वो फोन दे देती हैं और उनके बहुत से अंदर के बैंक के खाते, बहुत से डिटेल्स दूसरों के हाथ में पहुंच जाते हैं, तो उनको कम से कम प्रधानमंत्री द्वारा दिए गई जो योजना है उनका लाभ लेते हुए उनको कहीं ना कहीं सीख लेना चाहिए कि मोबाइल को कैसे हैंडल किया जाता है, इसके कितने एप्स है, अपने मोबाइल को कैसे सेफ रखना है, कैसे लॉक रखना है, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, कोई ओटीपी मांगे तो ओटीपी नहीं दे, ये सब जानकारी उनको प्रशिक्षित तो होना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो कोई काम आगे नहीं बढ़ पाएगा।
1: जी, तो श्रोता बहनें अगर सुन रही हैं तो इस बात पर ध्यान देंगी कि अगर वो मोबाइल चला रही हैं तो पहले तो अगर वो डिजिटल रूप से साक्षर होना चाहती हैं, रोजगार के क्षेत्र में कुछ जानकारी लेना चाहती हैं या सरकारी योजनाओं के क्षेत्र में कोई जानकारी लेना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं प्रशिक्षण प्राप्त, और प्रशिक्षण प्राप्त करके फिर वो जानकारी ले सकती हैं। लेकिन इसके पहले भी अगर वो केवल मोबाइल चला करके उस पर जानकारी की चीजें देख रही हैं या कुछ शॉर्ट्स है, रील्स है देख रही हैं, तो उसमें उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है ये आप बताएं श्रोता बहनों को।
0: ये जरूर, कई महिलाएं जैसे शॉपिंग करती है,

0: कई एप्स हैं, अगर वो अच्छे कंपनी को नहीं जानते, बहुत सारे फेक और फ्रॉड एप्स आते हैं, तो ये सस्ते सस्ती कीमत देके उस पर क्लिक कर देती है, ओटीपी आता है और फिर बाद में उनको पता चलता है कि उनके बैंक के उनके खाते से पैसे चले गए।
1: जी
0: तो कभी भी ऐसे भ्रामक चीजों पर ना जाएं, किसी को इन्फॉर्म करके करें, अगर जानकारी नहीं है तो अवॉइड करें जब तक कि पूरी जानकारी ना उपलब्ध हो। ओटीपी किसी को ना दें, फोन को लॉक करके रखें, और किसी ऐसी वेबसाइट पे ना जाएं जिसमें कि जो सेफ नहीं है, जब तक पता ना हो तब तक किसी ऐसी वेबसाइट पे, वो बार बार एडवर्टीजमेंट डालते हैं लोग, उस लालच में ना फंसे। कई बार क्या होता है कि कुछ साइट से आ जाता है कि आपको 50 लाख का ये इनाम मिला, इसके लिए ये बटन दबाएं और ओटीपी आए शेयर करें, इस तरह की चीजों में बिल्कुल ना फंसे। भाई जब आपने कुछ लिया ही नहीं तो 50 लाख कहाँ से आ जाएगा?
1: जी
0: आज एक आदमी 50 रुपए देने में आनाकानी करता है, आपको बैठे बैठे 50 लाख कहाँ से मिल जाएगा?
1: जी
0: थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाने की जरूरत है। ये चीजों को देखते हुए उन्हें अपने मोबाइल को सेफ रखना है, किसी को अपनी जानकारी नहीं शेयर करनी है, ओटीपी नहीं शेयर करना है, गलत वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहिए, फोन को लॉक करे रखना चाहिए। जो वेबसाइट्स नहीं जानते हैं उस पे तो बिल्कुल ही नहीं जाए, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे खुलती है और तब आप लॉक नहीं कर पाएंगे और तभी आप किसी ना किसी फ्रॉड के शिकार होते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपने जो फोन है, आपका फोन एक छोटा ब्रह्मांड है, वो एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन है कि अगर आप अच्छे के लिए यूज करेंगे तो राम राज्य है, अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो वही आपको भस्म कर देगा। ये
1: जी
0: सावधानी
1: जी
0: बरतनी
1: जी
0: पड़ेगी।
1: बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आप दे रही हैं श्रोता बहनों को। एक और प्रश्न मन में आ रहा है जो श्रोता बहनों के लिए भी लाभकारी होगा कि डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो रोजगार के कौन कौन से नए अवसर उनके सामने खुल सकते हैं।
0: देखिए, आने वाले समय क्या, अभी ही डिजिटल युग आ चुका है, आने वाले समय में और जो भी लोग डिजिटली अपने को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, नौकरी इनको नहीं मिलेगी और ऑप्शंस इतने ज्यादा ओपन हो चुके हैं। कई बार ये लोगों में डर भी आ गया है कि शायद कंप्यूटर हमारा जगह ले लेंगे ना, जिस ब्रेन ने जिस दिमाग ने कंप्यूटर बनाया है वो उसकी जगह कभी कोई कंप्यूटर नहीं ले सकता।
1: जी
0: लेकिन हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा आने वाले समय को देखते हुए। जो जो नौकरियां हैं ज्यादातर वो AI बेस्ड होगी, स्किल्स पे आपको ध्यान देना होगा। देखिए, अब स्किल्स में जो हमने सीखी थी आज वापस उस जगह पे आ रहे। कोरोना के टाइम में आप देखिए कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट थे, बंद हुआ तो लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों ने सुसाइड किया, डिप्रेशन में गए, लेकिन जो स्किल थे, जो ब्यूटी पार्लर्स थे वो चल रहे हैं,
1: जी
0: जो खाना बनाने वाले थे वो, जिन्होंने हाथ से अपने काम करना करे हैं, स्किल्स
1: जी
0: वही कहलाते हैं। आदमी को अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, डिजिटली साक्षर हो, क्योंकि उसके बगैर अब ये समय ऐसा है कि आप आगे काम नहीं कर पाएंगे।
1: जी
0: नौकरियां हजारों हैं, बट आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, आप जो भी कुछ करें अपने पैर पर खड़े हों।
1: जी
0: आपको कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, उसी को अपना उद्योग बनाएं, और डिजिटली आप उसको, आप ऑनलाइन एक ऐप बना करके, ऑनलाइन मोड में जा करके आप अपना एक अच्छा मार्केट तैयार कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका डिजिटल जो लिटरेसी है, डिजिटल साक्षरता है, वो आपके लाभ आता है कि एक कोने में बैठा आदमी छोटी सी चीज को, आप देखिए ना, ऊन के छोटे छोटे से खिलौने इतने महंगे आ रहे, 10,000-15,000 में आ रहे हैं।
1: जी
0: हम लोगों की माए कितना बना के हम लोगों ने फेंक दिया।
1: जी
0: तो अगर कोने में कोई कुछ बना रहा है तो उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शोकेस करके अच्छे पैसे कमा सकती हैं ग्रामीण महिलाएं।
1: जी जी
0: तो यहाँ पे उसको समझना होगा कि कैसे हम आगे बढ़े।
1: जी
0: डिजिटल ट्रेनिंग लेके अपने घर में बैठे बैठे लाखों का बिजनेस किया जा सकता है।
1: जी बहुत जागरूक करने वाला और प्रोत्साहित करने वाला विषय है ये, और आपने उतनी ही अच्छी तरीके से बहनों को समझाया है। चलते चलते हमारी श्रोता बहनों के लिए क्या संदेश है?
0: मैं कहूंगी कि आप इतनी बेहतर हैं, प्रकृति से जुड़े रहे हैं, आप इतने साफ, इतने स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, आपको अपनी पहचान बनाए रखनी है, अपने आप को बिल्कुल मत भूलिए, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं, बस थोड़ा सा डिजिटली आप साउंड अपने आप को साक्षर कर लीजिए, और आप जहां कहीं भी हैं, जिस कोने में भी हैं, आप ऊंचाइयां छू लेंगी। आपको ऑल द बेस्ट।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके प्रतिभा त्रिवेदी जी। आप हमारे कार्यक्रम में आई और डिजिटल साक्षरता के द्वारा महिलाओं का किस तरह विकास किया जा सकता है इस विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी श्रोता बहनों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनी लोगन, अभी नीके का बतकही सुन लीन, डिजिटल साक्षरता और महिलाओं का विकास डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी से हम बतियावत रही है। लेकिन कहें कि जानकारी तो बहुते दियावत हो गुंजा, मन का मनसायन के करी,
2: मन का मनसायन भी हम ही लोग करल जाई। अब बहनी लोगन

देख तू एक बेरिया, हंसे के देख

0: गुंजा गीत तो नीचे रहा ला देखा ना सही में, अगर केहू के ओरी हंस के देख लाना तो ओकर दुखो होला तो दूर हो जाएला, है ना। जिंदगी में हंसी का कितना महत्व है।
1: एकदम महत्व हो भाई, हंसी से ना अपन मानसिक तनाव भी खत्म होला और लोगन के भी अच्छा लगेला भाई, हंसल चेहरा तो सब के अच्छा
0: तो
1: लगेला।
0: यही से सब केहू हंसत रहे मुस्कुरात रहे और घड़ी की ओरी हम लोगन के भी देखे के है, चले का बेरा होता तो चला चलल जाए, बहनी लोगन से कहल जाए
1: नमस्ते।

महिलाएं सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हुए हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं मन्ना लाल यादव और साथियों के गाए लोकगीत। पहले इनकी गाई एक लचारी।

0: इस देशभक्ति लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम में कलाकार थे मन्नालाल यादव और उनके साथी।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिडडे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Agha Khan V in New Delhi. Discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi today met eminent

योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों

0: 2026 का सातवां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफॉर्म

0: लोगों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
2: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम TVK के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी DMK ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से S. सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मिश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनिता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदा सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशां।

एक गजल उस पे लिखूं, दिल का तकाजा है बहुत। एक गजल उस पे लिखूं, दिल का तकाजा है बहुत। इन दिनों खुद से बिछड़ जाने का धड़का है बहुत। रात हो दिन हो, गफलत हो कि बेदारी हो, रात हो दिन हो।

वो गफलत हो कि बेदारी हो, उसको देखा तो नहीं है, उसे सोचा है बहुत। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह। मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। कोई आया है जरूर और यहाँ ठहरा भी है, कोई आया है जरूर और यहाँ ठहरा।

है जरूर और यहाँ ठहरा भी है। घर की दहलीज पे ऐ नूर उजाला है बहुत, घर की दहलीज पे ऐ नूर उजाला है बहुत। कृष्ण बिहारी नूर की लिखी इन चंद लाइनों के साथ आइए आगाज करते हैं आज के इस कहकशां प्रोग्राम का।

हम आप फिर मिलेंगे किसी और शक्ल में। हम आप फिर मिलेंगे किसी और शक्ल में, हम एक फिर बनेंगे किसी और शक्ल में। कहने को दिल की बात जो अब तक न कह सके, एक दिन वो सब कहेंगे किसी और शक्ल में। जो चंद फूल बाग के मुरझा गए हैं आज, कल वो सभी खिलेंगे किसी और शक्ल में। जैसे प्रणय मिले थे तुम्हें कल, उसी तरह आओ मिला करेंगे किसी और शक्ल में। आओ मिला करेंगे किसी और शक्ल में।

सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना। फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, इसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, इसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते।

बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे, मनाने की जरूरत क्या है, आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम, आप जब हैं तो जमाने की जरूरत क्या है, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में, हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है, हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत क्या है।

दोस्तों, आज के इस कहकशां प्रोग्राम में आपने सुनील जोगी, अमीक हनफी, राशिद कामिल और अनवर मिर्जापुरी के लिखे कलाम सुने, जिनमें आवाजें थी पंकज उधास, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, गुलाम अली और तलत अजीज की। इसी के साथ आज का कहकशां प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र आशुतोष को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कहकशां।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर, कहीं भी कभी भी। आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

0: हेलो फोन इन फरमाइश, आपके दिल की आवाज। जी हाँ, आप भी यही कहेंगे जब सुनेंगे खुद अपनी ही आवाज कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में। तो फोन कीजिए, इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। 222-1052 और 222-1050 ये नंबर डायल करना है STD 0542 के साथ। रिकॉर्डिंग हर बुधवार सुबह 10:10 से 11 बजे तक, प्रसारण शनिवार दिन 11 बजे से और रविवार को 12 बजे से, पूरे 1 घंटे।
1: एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो।
0: सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव, DTH, DRM, वेव्स OTT और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DTH, DRM, वेव्स OTT और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं, आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 4 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। कुछ ही पलों में संदेश टू सोल्जर्स प्रोग्राम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये भारतवर्ष कितना सुंदर है ना, वो वादियां, वो पहाड़, वो फूल पत्ते, वो मिट्टी और उसकी महक, ये देश, ये लोग, वो प्रांत, वो भाषा, वो जौहर, वो जलवा, वो प्रसिद्ध अभिनेता, वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, वो उच्च स्तरीय एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि बस दुनिया कहने पर विवश हो जाती है कि भारतवर्ष इस पृथ्वी का सबसे अच्छा देश है। हम जैसे भी हैं हम एक हैं, हम जैसे भी हैं इस मिट्टी के बच्चे हैं। इस मिट्टी से हमें इतना लगाव है, इतना प्यार है जो शायद ही हम किसी और से करते हों। इस फिजा में, इस सबा में वो खुशबू है जिसकी बदौलत हम शान से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और इसी आन बान और शान को दुरुस्त रखने के लिए सरहदों पर और इस भारतवर्ष के अंदर हमारी सेनाओं का प्रमुख रोल है। वो पैरा सर्विसेज हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो या आर्म्ड फोर्सेज हो, द पीपल इन यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट आवर कंट्री। और आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद है हमारे साथ, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, जो आज हमसे एसएसबी की गाथा, उसके गुण और अपनी उस शौर्य की गाथा शेयर करेंगे। क्योंकि एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, एक ऐसी फोर्स है जिस पर दायित्व है भारत की सुरक्षा का। आइए मिलकर स्वागत करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड इवनिंग। मैं सईद अफसर, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सबसे पहले मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक महोदय तथा आकाशवाणी FM रेनबो का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित होकर अपने सेवा अनुभव और अपनी यात्रा साझा करने का अवसर प्रदान किया। मेरे लिए यह अवसर एक इंटरव्यू नहीं बल्कि देश के श्रोताओं से सीधा संवाद करने और अपने अनुभवों के माध्यम से युवाओं तथा देशवासियों तक कर्तव्य, साहस और राष्ट्र सेवा का संदेश पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर के लिए मैं आकाशवाणी FM रेनबो और पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूं।
0: आपकी आवाज़ सुनकर मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में लोगों को बहुत ही उत्साह, एक गर्व महसूस किया गया होगा। आप पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं और दो खास ऑपरेशंस जिनकी हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में, और वो है पिथौरागढ़ और जमुई में जो दो ऑपरेशंस हुए, वो बड़े खास और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी इन ऑपरेशंस के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल, मैं अभी जमुई में हुए ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ प्रकाश डालूँगा। उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी काफ़ी विस्तृत है और यह कई फेजेस में कंडक्ट किया गया था।

11 फरवरी 2021 मेरे सर्विस कैरियर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दिन था। हमें इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि लखीसराय जिले के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों का एक सशस्त्र दस्ता देखा गया है और उनके लिए आसपास के क्षेत्रों से भोजन सामग्री पहुंचाई गई है। प्राप्त सूचना को वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हमने 10-11 फरवरी 2021 की मध्य रात्रि के दौरान अपना मूवमेंट शुरू किया। क्षेत्र की ज्योग्राफिकल कंडीशंस काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, इसलिए ऑपरेशन में पेशेंस, एंडोरेंस और सतर्कता की विशेष आवश्यकता थी। ऑपरेशन के दौरान प्राप्त एक अन्य इनपुट के आधार पर परिस्थितियों के अनुरूप हमारी टीम ने अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करते हुए आगे मूवमेंट किया। 11 फरवरी की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारी टीम पर अचानक भारी मात्रा में फायरिंग शुरू हुई। हमने स्थिति का असेसमेंट करते हुए जवाबी कार्रवाई की। एंगेजमेंट का कुछ समय तक रुक रुक कर जारी रहा। इसके बाद एरिया की सिस्टमेटिक सर्च की गई। इस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण नक्सली कैडर मनसा कोड़ा जोनल कमांडर को न्यूट्रलाइज किया गया तथा कुछ अन्य कैडर के घायल होने की जानकारी बाद में प्राप्त हुई। साथ ही साथ कुछ हथियार, गोला बारूद एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे संतोषजनक और महत्वपूर्ण बात मेरे लिए यह रही कि हमारी पूरी टीम सुरक्षित रही और किसी भी साथी को कोई इंजरी नहीं हुई। मेरे विचार से यही किसी भी ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता होती है। मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करना और अपनी पूरी टीम को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन मैं इस पूरी कार्रवाई को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। यह पूरी टीम का कलेक्टिव एफर्ट था। हर व्यक्ति ने, हर कार्मिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सभी ने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा। हमारे लिए ऑपरेशन की सफलता केवल ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नहीं थी, हमारे हर साथी का सुरक्षित रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उस दिन पूरी टीम का डिसिप्लिन, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत रही।

0: तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपने किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब अचानक से फायरिंग शुरू होती है तो मन में पहला विचार क्या आता है? आपके मन में वो पहला विचार उस समय क्या आया जब एकदम से फायरिंग शुरू होगी? और खासतौर से मैं जानना चाहूंगा कि जो सिविलियंस होते हैं वो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम से फायरिंग शुरू होगी और जवाबी कार्रवाई हुई, तो जब एकदम से फायरिंग शुरू होती है तो मुझे जहाँ तक कॉम्बैट की नॉलेज है कि हम गोलियों के सामने नहीं आते, हम एक कवर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स कवर लेने के बाद थोड़ा सा उस कवर के दौरान ही हम लोग एक समीक्षा करते हैं, एक ऑपरेशन हो रहा होता है, फायरिंग शुरू होगी, इसके लिए ट्रेनिंग हमें वाकई में पहले दी जाती है, पर फिर भी ट्रेनिंग और उस एक्चुअल मोमेंट में जब अचानक फायरिंग शुरू हुई तो आपके मन में पहला विचार क्या था?
1: जी बिल्कुल, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सिचुएशन को जल्दी एसेस करना, एसेस किया जाए और टीम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में ट्रेनिंग बहुत काम आती है, आपके पास सोचने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए ट्रेनिंग के कारण रिस्पांस इंस्टिंक्ट और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। उस समय मेरा फोकस था कि फ्रंटलाइन को एस्टेब्लिश किया जाए, कम्युनिकेशन क्लियर रहे और टीम एफेक्टिवली रिस्पांस कर सके।
0: ओके, तो उस समय जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आप क्या आपने एक क्षण के लिए

0: भी कुछ विचार आया उसमें होता है ना, एकदम से फायरिंग शुरू हो गई, दिस इज द रियल एक्शन, अब क्या होगा आगे पता नहीं। लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं जहन में, कुछ होता है।
1: जी, खतरे की स्थिति में डर या तनाव एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन ऑपरेशनल ड्यूटी में ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि उस भावना को अपने डिसीजन मेकिंग पर हावी नहीं होने देना है। उस समय मेरे लिए पर्सनल फेयर से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी टीम और मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं करेज को इस तरह देखता हूँ कि खतरे के बावजूद आप अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें।
0: आप बीच में फायर डिसिप्लिन, आप आपने एक वर्ड यूज़ किया, तो मैं चाहूँगा कि इसका महत्व आप लोगों को समझाएं, वो लोग जो आपको अभी सुन रहे हैं, क्योंकि हमने डिसिप्लिन तो बहुत सुना है कि द पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म वो डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन कॉम्बैट के वक्त फायर डिसिप्लिन, ये मैं चाहूँगा कि ये मैंने सुना तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सशस्त्र सीमा बल के फायर डिसिप्लिन का एक जो महत्व है वो लोगों को बताएं, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कितनी जल्दी आप लोग आपस में अपने साइन लैंग्वेज में ही बात करते होंगे शायद, एंड यू माइट नॉट बी काइंड ऑफ यू नो, एक वो भी एक महत्वपूर्ण एक अंश है कॉम्बैट का, लेकिन फायर डिसिप्लिन एंड ऑफकोर्स उसके बाद उसका जो महत्व है वो थोड़ा बताएं।
1: जी बिल्कुल, ऑपरेशन में किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फायर डिसिप्लिन का होना, और कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये इंश्योर किया कि आरटी के माध्यम से जो भी ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे उन्हें सभी सेक्शंस तक क्लियर और काम तरीके से रिले करना आवश्यक था। इंटेंस एंगेजमेंट के दौरान अगर कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो जाए तो सिचुएशन और डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसलिए मैंने कोशिश की कि ऑर्डर्स एक्यूरेटली और टाइमली तरीके से आगे पहुँचे और ट्रूप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसी तरह फायर डिसिप्लिन भी बहुत महत्वपूर्ण था
0: जी।
1: हमारा उद्देश्य कंट्रोल्ड और इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना था, ना कि केवल अधिक एम्युनिशन खर्च करना।
0: ऑलराइट, बेसिकली यू नो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो पब्लिक तो होती नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम जो है संदेश टू सोल्जर्स, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसके माध्यम से हम सिविलियंस को कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि किस तरह का डिसिप्लिन, हम लोग डिसिप्लिन एक वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा फैलाव है, और डिसिप्लिन हमेशा रहने में मेरे ख्याल से इट डजेंट मीन कि आप हमेशा सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, जैसे हम आकाशवाणी रेनबो में करते हैं, थोड़े से गीत संगीत भी सुनते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमें चुनकर बताएं कि कौन सा गीत हम इस समय थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए प्ले कर सकते हैं, और कौन सा गीत हो सकता है वो?
1: जी मैं चाहूँगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।
0: दिस इज ग्रेट सॉन्ग, है ना, पुरानी फिल्म का है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हो गई थी
1: जी,
0: और आपकी फिगर और आपकी स्मार्टनेस देखकर मेरे ख्याल से हमारे पैदा होने से पहले ये फिल्म बनी थी। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके से जानना चाहूँगा, आपके पास आऊँगा दोबारा, कि ये गीत आपको क्यों पसंद है, पन्ना की तमन्ना। लेट्स हेयर इट आउट ऑन संदेश टू सोल्जर्स।

0: तो आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। तो कुछ बताना चाहेंगे, पन्ना की तमन्ना बड़ा सॉलिड सॉन्ग है, एक बॉलीवुड से कुछ खास प्यार?
1: जी मुझे किशोर कुमार जी के गाने सुनने अच्छे लगते हैं, और जब मैं स्टडी करता था कॉलेज टाइम पे, तो उस वक्त जो है मैं जब भी टाइम मिलता था तो फोकस तोड़ने के लिए मैं किशोर जी के गाने और अपने
0: मतलब एक अलग ही जादू है इनकी आवाज़ में, यू नो। खिलाड़ियों से हम बात करते हैं वो किशोरदा के फ़ैन हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो किशोरदा के फ़ैन हैं, लता मंगेशकर जी के फ़ैन हैं, भले ही ये लोग फिज़िकली हमारे साथ नहीं हो लेकिन इनकी आवाज़ सदियों तक रहेगी। और आई एम श्योर किशोरदा, लता जी की सोल, उनकी आत्मा जहाँ भी होगी बहुत गर्व महसूस करती होगी कि द मैन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म आज भी उनकी आवाज़ उनको इतना प्रेरित करती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपके सैन्य जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, अभी नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि जब हम उन अफेक्टेड एरियाज़ में जो ड्यूटी करते हैं तो उस समय जो पर्सनल होते हैं वो किस प्रकार विजिलेंट रहते हैं?
1: जी बिल्कुल। नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कभी भी कंप्लेसेंट ना हो। ऐसे एरियाज़ में ग्राउंड सिचुएशन लगातार बदल सकती है, इसीलिए इंटेलिजेंस इनपुट्स, ब्रीफिंग्स, लोकल सिचुएशन, रूट असेसमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि रूटीन मूवमेंट को भी पूरी प्रोफेशनल अलर्टनेस के साथ किया जाए, लेकिन विजिलेंट केवल हथियार लेकर चौकन्ना रहने का नाम नहीं है। विजिलेंट का अर्थ है अपने सराउंडिंग्स को समझना, असामान्य गतिविधियों को पहचानना, कम्युनिकेशन बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना।
0: आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं, और SSB की जहां तक हम बात करें तो ओरिजिनली इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1963 को, तब स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसे जाना जाता था, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व ये इसका मोटो है, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं और देश के अंदर जब भी कोई चुनौतीपूर्ण एक मौका आता है या वो क्षण आता है उसमें बिल्कुल सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, उसका सामना करते हैं और विजयी होते हैं। चलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़े से पन्ने जो हैं उनको घुमाते हैं, और सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ जब हम ये पन्ने थोड़ा सा पीछे मोड़ रहे हैं कि आपके प्रारंभिक जीवन के जो पल थे, जहाँ बचपन है, शिक्षा है, परिवार है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं जमशेदपुर झारखंड का निवासी हूँ। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन की बात करूँ तो मेरा बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय पारिवारिक परिवेश में बीता है। मेरे परिवार ने बचपन से ही मुझे अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और बड़ों का सम्मान करने जैसे संस्कार दिए। मैंने रांची यूनिवर्सिटी से BSc मैथमेटिक्स में स्नातक की शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ मुझे शारीरिक गतिविधियों, खेल और अनुशासित जीवन में रुचि थी। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे माता पिता और परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति की सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं होती, उसके पीछे परिवार के संस्कार, शिक्षकों का मार्गदर्शन और जीवन में मिले अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: SSB में जब आपके भर्ती होने की जब बारी आई तो आपको ये SSB में ही, सशस्त्र सीमा बल में ही आने के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा

0: कि आपने जब SSB ज्वाइन किया तो उसकी भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कैसी रही?
1: जी बिल्कुल, मेरे लिए प्रेरणा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेरे पिता रहे हैं। वे इंडियन रेलवेज़ में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, साथ ही टेरिटोरियल आर्मी में थे। बचपन में जब मैं उन्हें वर्दी में देखता था, तो उन्हें वर्दी में देखकर मेरे अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जोश और जुनून पैदा होता था। शायद वहीं से मेरे मन में यह भावना विकसित हुई कि भविष्य में मुझे भी ऐसी वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा करनी है। इसी भावना को व्यक्त करने वाला अंग्रेजी का एक कोट जो मुझे प्रेरित करता है, वो मैं कहना चाहूँगा। द यूनिफॉर्म इज नॉट मेयरली वॉट यू वेयर, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी, द वैल्यूज यू अपहोल्ड एंड द नेशन यू सर्व। मेरे लिए वर्दी केवल पहनावा नहीं है, यह उस जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण की पहचान है जिसे पहनने वाला व्यक्ति अपने कंधों पर लेकर चलता है।
0: तो दोस्तों, आप सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर की आवाज़ सुन रहे हैं। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे उनकी ही जुबानी कि SSB ज्वाइन करने से पहले और उसके बाद उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
1: जी, परिवार के लिए यह गर्व का विषय था, लेकिन स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता भी थी। यूनिफॉर्म सर्विस में पोस्टिंग्स अलग-अलग राज्यों और कई बार कठिन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में होती है, इसलिए परिवार को पता था कि आगे का जीवन आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया और उसके बाद अलग-अलग लोकेशंस पर मेरी पोस्टिंग हुई, तो धीरे-धीरे उन्हें भी इस प्रोफेशन की चुनौतियों की समझ हुई। और जब मुझे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया, तो वह मेरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गर्व का क्षण था।
0: आपने अपने गैलेंट्री अवार्ड की बात की, तो मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशंस आपने किए जिसके लिए ये सम्मान आपको दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है ना, तो इसकी जो उपलब्धि थी, इसके महत्व के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आपके लिए वो क्षण कैसा था जब आपको पता लगा कि आपको इस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ख़ास तौर से जब एक ऐसी फोर्स के बारे में हम बात करते हैं जिसे 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे जो मैनिंग की जो ड्यूटीज़ थी, उसके बाद एक और दायित्व दिया गया इन्हें, क्योंकि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कारगिल युद्ध के बाद, तो एक अडॉप्शन जो कहते हैं कि वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया, और बॉर्डर एरिया हो या मैंने जैसे आपने का आप भी बता रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ अपने श्रोताओं को कि देश के अंदर जो गतिविधियाँ चलती हैं, जहाँ पर भी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आता है, उसको उसका सामना करने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए सशस्त्र सीमा बल हमेशा तैयार रहती है, और वहीं से गैलेंट्री अवार्ड के लिए ये सम्मान अनाउंस होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जब ये अनाउंस हुआ और आपको पहली बार पता लगा, तो आपके वो क्षण कैसे थे?
1: जी, यह मेरे लिए बहुत गर्व और भावनात्मक क्षण था। सबसे पहले मेरे मन में अपने सीनियर्स, अपने साथी कार्मिक और अपने परिवार के प्रति आभार आया, क्योंकि जिस ऑपरेशन के लिए मुझे यह सम्मान मिला, उसमें मैं अकेला नहीं था। पूरी टीम ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए मैं इस मेडल को पूरी टीम के साहस, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन का सम्मान मानता हूँ।
0: ये जो गैलेंट्री अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर से मैं पूछना चाहूँगा कि ये मेडल मिलने के बाद आपकी सोच में भी कोई बदलाव आया?
1: जी, बताना चाहूँगा, सम्मान मिलने के बाद मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई।

0: मेडल मेरे लिए यह रिमाइंडर है कि मुझे आगे भी अपने प्रोफेशन में उसी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखना है। मैं इसे उपलब्धि का अंत नहीं, बल्कि आगे बेहतर करने की प्रेरणा मानता हूँ।
1: और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अर्थ है गैलेंट्री मेडल का।
0: जी बिल्कुल।

0: जी बिल्कुल.
1: राइट देन, जब गैलेंट्री अवार्ड मेडल मिलता है सैयद अफसर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो मेडल की जब खबर आती है तो उस दिन रात को नींद कैसे आती है और अगली सुबह वो भाव कैसे होते हैं? गौरव का क्षण होता है.
0: बिल्कुल, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए जो ऑपरेशन में उस दिन डटकर खड़े थे साथ, और उन सभी मेहनत और ट्रेनिंग के दिनों के लिए जो हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किया था.
1: उस दिन जब ये खबर आपके पास आई तो शायद कोई ऐसा मोमेंट भी होगा जहां आप अकेले होंगे, कोई नहीं होगा आसपास, कुछ देर के लिए, उस समय नहीं तो उसके थोड़ी देर बाद, आप और सिर्फ आप, जहां आप अपनी आत्मा से बात कर रहे होंगे, कुछ ऐसा मोमेंट था, कुछ शेयर करना चाहेंगे?
0: जो बिल्कुल, जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में मेडल्स ये सब नहीं होता, बट जब आपके किसी अच्छे काम को रिकग्निशन मिलता है तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है, और वो भावुक क्षण था मेरे लिए.
1: एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जिसके बारे में मैंने आपसे नहीं बताया, और मैं नहीं बताता किसी को कि ये सवाल मैं शो में पूछूंगा आपसे, और ये सवाल मैंने भारत के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन से पूछा है, देश के जांबाज सिपाहियों से पूछा है, अफसरों से पूछा है, सोल्जर से पूछा है, इसलिए ये सवाल मैं अब आपके आंखों में देखकर ये पूछना चाहता हूँ. सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है, जिसकी आन बान शान के नीचे आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, और इसी के लिए हम अपनी जान निछोर कर सकते हैं. इसी के हमेशा ऊंचा रहने के लिए हम अपनी सब कुछ निछोर कर देते हैं, और
1: भावुक क्षण है. सवाल उतना आसान नहीं है, है ना? ये तिरंगा कभी कभी वो भाव निकाल ही लाता है हमारे अंदर से, है ना? अच्छा, मुझे ये बताइए, आप देश की सेवा कर रहे हैं और आपका परिवार भी है, और उसके बीच में एक कहते हैं ना, एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, कि फैमिली की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली कहती है कि भाई हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फ़ोन आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे, ये थोड़ा सा जो आपकी डिसिप्लिन लाइफ है उससे सिविलियन लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, तो आप देश सेवा और परिवार के बीच में जो संतुलन है वो कैसे बनाए रखते हैं?
0: जी, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है. यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है. हमारी पोस्टिंग्स और ड्यूटीज़ के कारण कई बार परिवार से दूर रहना पड़ता है, और जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं जो हमारे परिवार के, वो भी कई कबार मिस हो जाते हैं. ऐसे में परिवार का अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. जब भी समय मिलता है मैं परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता हूँ और कम्युनिकेशन बनाए रखता हूँ. मैं हमेशा मानता हूँ कि जब एक सोल्जर देश की सेवा करता है तो उसके साथ उसका परिवार भी सैक्रिफाइस करता है.
1: देखो, परिवार का योगदान तो बहुत रहता है, एंड ऑफकोर्स जब हम बात करते हैं परिवार के संतुलन के बारे में, उनका सपोर्ट, उसके बगैर तो कोई बैलेंस बन ही नहीं सकता लाइफ में. और हम आकाशवाणी में एक बैलेंस बना के रखते हैं अपने लिसनर्स के साथ, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी श्रोता इस समय संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से देश और विदेश में भी हमें सुना जा रहा है, हम इस बात से परिचित हैं, तो अगर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर आप व्हाट्सएप से अपने भाव, अपने प्रतिक्रिया, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सईद अफसर जी से तो वो पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070 9868107070. हाँ, लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी से मुलाकात हो रही है, और समय हो गया है कि एक और गीत सुने, तो कौन सा गीत आप प्ले करना चाहेंगे?

0: किशोरदा के तो आप फैन ही।
1: जी एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
0: अरे इसके अंदर तो बहुत राज छुपे हैं असिस्टेंट कमांडेंट साहब, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन है। तो ये गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश किशोरदा की आवाज में फिल्म अजनबी से।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर मौजूद हैं, सशस्त्र सीमा बल जो हमारी फोर्स है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए भी आकाशवाणी की तरफ से, और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं जिनसे थोड़ा सा परिचित होंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सशस्त्र सीमा बल में जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है और आपके लिए कैसी थी?
1: जी, मैंने SSB वर्ष 2012 में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर ज्वाइन किया एवं अपनी सेवा यात्रा शुरू की। भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षण, इंटरव्यू तथा अन्य निर्धारित चयन प्रक्रिया

0: प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। सेलेक्शन और जॉइनिंग के दौरान मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। एक यूनिफॉर्म फोर्स में आने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल प्रिपेयर्डनेस, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की भी आवश्यकता होती है। जॉइनिंग के बाद मेरा पहला महत्वपूर्ण चरण सलोनीबाड़ी असम में सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग का रहा। ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब केवल व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन और देश के प्रति जिम्मेदारी भी थी। वर्ष 2023 में मैंने विभागीय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट इज LDCE उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के पद पर पदोन्नति प्राप्त की। वर्तमान में मैं सशस्त्र सीमा बल 24वीं वाहिनी रंग्या असम में बतौर सहायक कमांडेंट अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं।
1: तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा, और इससे पहले कि आप उत्तर दें मैं कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेता हूं जो हमारे पास आ रहे हैं देश भर से। और सबसे पहले ये मैसेज जिनका आया है वो हैं यश शिंदे, मुंबई से लिख रहे हैं, और प्रोग्राम के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ये है कि उन्हें ये प्रोग्राम आपकी आवाज़ और आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। शांताचारा बदीगर कोकानूर देवनागरी से संदेश टू सोल्जर्स की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि वो याद दिलाते हैं ये प्रोग्राम की सर्विस सैक्रिफाइस ड्यूटी हमारे ब्रेव सोल्जर्स की जो हमारे इस भारतवर्ष को गार्ड कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। और प्रभावित होते होते बी के दत्त हमें नई दिल्ली से मैसेज लिख रहे हैं, अनमोल राय छपरा बिहार से हमें मैसेज लिख बैठे हैं, और आकाशवाणी का धन्यवाद दे रहे हैं चेतन पटेरिया ग्वालियर से। राजकुमार संतानी एक मैसेज लिख रहे हैं, मोहन चंद्र जोशी ने अपना एक मैसेज हमारे तक पहुंचाया है, और एक और मैसेज हमारे पास आया है जो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे। सैयद सर के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और स्वर रोड मुरसेना डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से मैसेज आया है, और गुलाफशाह इदरीसी जीनत और नाजिया शाजिया के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा है। कोकानूर से भी एक मैसेज आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम में वार्ता सुनकर हमें लग रहा है कि SSB कितना महत्वपूर्ण और बड़ा काम कर रही है। अमेरिका से एक मैसेज आ गया हमारे पास, एंड ऑफकोर्स वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। नाम लिखा नहीं है तो हम नाम ले नहीं पाएंगे। सूरज कुमार शेखुपुरा बिहार से हमें मैसेज लिख रहे हैं, SSB को सैल्यूट दे रहे हैं। SSB कमांडेंट साहब को संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का नियमित श्रोता तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से विजय कुमार विश्वनाथन का प्रणाम, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं आपकी गैलेंट्री अवार्ड के लिए। सैनिकों का जज्बा जो है उनकी शौर्य गाथा पर ये केंद्रित प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। संतोष श्रीवास्तव को पसंद आ रहा है जो प्रयागराज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में प्रोग्राम्स करते हैं। सुरेश कुमार 68 बटालियन SSB मणिपुर LNO ड्यूटी कर रहे हैं सर, और LNO ड्यूटी के लिए कुछ टिप्स बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? ASI सुरेश कुमार आपसे परिचित हैं, SSB के ही हैं
0: जी बिल्कुल,
1: तो वो कह रहे हैं कुछ टिप्स बताइए। LNO
0: बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होता है।
1: okay.
0: आप जानते हैं मणिपुर की सिचुएशन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ाई हुई है, और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस जो रेगुलर फोर्सेस वहाँ तैनात है उसके अलावा अभी वहाँ पे तैनात की गई है ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको जो ड्यूटी आपकी कंपनी कमांडर के द्वारा या जो एडहॉक कमांडेंट आपके हैं वहाँ पे उसके द्वारा लगाई गई है, या अभी हमारे 68 बटालियन वहाँ पे बेसिकली उनका KLP वहाँ पे रिलोकेट हो गया है, तो अभी 68 बटालियन की लगभग सभी वाहिनियाँ मणिपुर में हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपको ड्यूटी दी जाती है उस ड्यूटी को आप बहुत ही सतर्कता के साथ में और विजिलेंट होकर के करें,

0: और किसी भी अनटूवर्ड स्थिति के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें और साथ ही साथ स्थिति को समझें और सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए एक्शन लें। और जो आपके सीनियर हैं, जो आपके जस्ट सीनियर हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, उनके जो ऑर्डर्स प्रॉपर फॉलो करें और जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है उस ट्रेनिंग को वहाँ पे जो है पूरी तरीक़े से उतारें और आपकी अपने आप ही जो ड्यूटी है वो परफेक्ट हो जाएगी।
1: वाह, बहुत अच्छे विचार आपने शेयर किए हैं यहाँ पे। और बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई से उनमें से एक हैं, और आपको दिल से वो बधाइयाँ दे रही हैं। कह रही हैं कि आज के मेहमान अफसर सर और सब दलों के फौजी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, और मैं हमेशा सुनती हूँ प्रोग्राम, एंड ऑफ कोर्स वो अपने भाव भले ही व्हाट्सएप के ज़रिए 4 लाइनों में ही व्यक्त कर रही हूँ, लेकिन इन 4 लाइनों के पीछे ढेर सारा प्रेम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, एंड ऑफ कोर्स फॉर द ग्रेट नेशन दैट वी लिव इन।

0: तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, एंड ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें. तो सबसे पहले उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफ़र था वो कैसा था?
1: जी, यह सफ़र मेरे लिए निरंतर लर्निंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफ़र रहा है। मैंने एसएसबी में अपने कैरियर की शुरुआत सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री के रूप में की और आज असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्वरूप बदलता गया। एक जूनियर रैंक्स में आपका फोकस मुख्य रूप से अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रोफेशनली पूरा करने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने साथ काम करने वाले कार्मिकों की सेफ्टी, उनका मोरल, डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफेक्टिवनेस की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इस सफ़र ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। लीडरशिप का अर्थ केवल आगे रहना नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी टीम के लिए आगे खड़ा होना भी लीडरशिप है।
0: सशस्त्र सीमा बल, जितनी भी तारीफ हम करें शायद शब्द कम पड़ जाएं. जानते हैं कि साल 2013 में सशस्त्र सीमा बल पर एक पोस्टल स्टैंप इशू किया गया था, और वहां पे भारत की वो सरहद जहां पर बर्फीली चट्टानों के बीच में हमारे जाबाज सैनिक सुरक्षा का वो दायित्व संभालते हैं, एक कवच पहनते हैं, भारत माँ का दिया हुआ वो कवच उस यूनिफॉर्म के रूप में. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हर प्रांत, हर जगह में सशस्त्र सीमा बल लगभग हर जगह अपनी सेवाएं हमें देती हैं. और इस सशस्त्र सीमा बल में लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं. तो यहां हमारे साथ स्टूडियो में जो बैठे हैं असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार एक अच्छा लीडर कौन होता है.
1: जी बिल्कुल, लीडर्स की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकती है। जो

0: मेरे लिए है, मैं बताना चाहूंगा, मेरे विचार से अच्छा लीडर वह होता है जो अपनी टीम को केवल आदेश ना दे बल्कि उन्हें समझे। एक लीडर को अपने कार्मिकों की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस दोनों को समझना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, लीडर को अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर आप अपनी टीम से कमिटमेंट की अपेक्षा करते हैं तो आपको भी उतना ही कमिटेड होना चाहिए।
1: वाह। और बहुत कम समय बचा है, लगभग हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आप अपने संदेश हम तक पहुँचा सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070। असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा चीज़ों को हमने बहुत सीरियसली लिया, लेकिन हमारे देश के युवा भी हैं जो शायद कोई मार्गदर्शन चाह रहे हों। अगर उन युवाओं के लिए मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ज़ुबानी, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की ज़ुबानी, अगर कोई मैसेज उन यंग लोगों तक पहुँचाया जाए तो वो क्या होगा?
0: जी बिल्कुल, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने कैरियर का चुनाव केवल सैलरी या स्टेटस के आधार पर ना करें। ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप समाज और देश के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें। अगर कोई युवा यूनिफॉर्म सर्विस में आना चाहता है तो उसे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस पर भी काम करना चाहिए। फेलियर्स आए तो उनसे सीखें, लेकिन अपने लक्ष्य को ना छोड़ें।
1: आज से अगर 14 साल पहले थोड़ा पीछे जाएं, साल 2012 में, तो 2012 के सईद अफसर और आज के अफसर जो हमारे सईद अफसर साहब हैं, उनसे अगर वो दोनों पर्सनालिटी मिलें तो 2026 के सईद अफसर 2012 के सईद अफसर से क्या कहेंगे? कुछ ऐसे ही भाव जो आपने युवाओं के लिए कहे?
0: जी बिल्कुल, मैं 2012 के सैयद अफसर से कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखो। आगे रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे, कई बार परिवार से दूर रहना पड़ेगा और कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स और अपने ड्यूटी से कंप्रोमाइज मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को मत देना। जिन लोगों ने आपके सफर में आपका साथ दिया है, उन्हें हमेशा याद रखना।
1: और आकाशवाणी ने भी तो आपका बहुत साथ दिया है, मेरे ख्याल से आपकी फोर्स में बहुत सारे लोग जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन में होंगे, क्या मतलब पहले तो बहुत सारे लोग खुले तरीके से आकाशवाणी को चला के रेडियो सुनते थे, आपका आकाशवाणी के साथ वो रिलेशन और जो आपके बटालियन हो या आपके ग्रुप के जो लोग हैं आकाशवाणी के प्रति, उनका भी एक भाव होगा, जुड़ाव होगा, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की अपनी भूमिका है। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्डवर्क को महत्व दें। जो युवा यूनिफॉर्म फोर्सेस में आने का सपना देखते हैं, वे पूरे समर्पण के साथ तैयारी करें और कठिनाइयों से कभी ना घबराएं। मेरे लिए राष्ट्र सेवा केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है, और पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मेरे लिए उस कमिटमेंट को और मजबूत करने की प्रेरणा है।
1: संदेश टू सोल्जर्स में समय निकलता जा रहा है बहुत ही जल्द, हमें इस प्रोग्राम का आज समापन करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते वो लोग जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप, जिनसे मैंने मंगाया है, उनके नाम मैं अपने ही अंदाज में लेना चाहूँगा। मंसूर अली बीकानेर से हमारे को

0: मैसेज भेज रहे हैं, साथ ही साथ SHQ बोंगाईगांव CTGD पार्था बर्मन, शायद ये भी SSB से ही हैं, इन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज भेजने के लिए। जय हिंद सर, नाम अपना नहीं लिखा। हाँ, सौरभ कुमार हमें मैसेज भेज बैठे हैं, 16वीं बाहिनी SSB से स्वागत, बंदन अभिनंदन संचार शाखा से, ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड ऑफ कोर्स सौरभ हिमाचल प्रदेश से हमें मैसेज भेज चुके हैं, जय हिंद कहते हुए वो कह रहे हैं कि एक नए योद्धा हैं, 73rd वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सेंथुक में नहीं टाटा योद्धा के आगमन के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना का आयोजन किया है, सर को बता दीजिए। जय हिंद सर। बहुत कम समय बच गया है, हमें ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो पे आए, अपने भाव शेयर किए, और वो गैलेंट्री अवार्ड मेडल मैं देख पा रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत ही इमोशन आ रहा है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, और उन मेडल्स को देख के मैं यही कह सकता हूँ दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: थैंक यू सो मच।
0: और यहीं पर हम संदेश टू सोल्जर्स से आप सभी लोग से विदा लेते हैं, आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है बांग्ला गीत। कलाकार हैं संजीत मंडल।

श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती के गीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं संजीत मंडल।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के साथ धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे हैं बांग्ला गीत। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बांग्ला गीत। कलाकार थे संजीत मंडल। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का प्रोग्राम युवावाणी।

0: मुश्किलें लाख आए मगर टूट के बिखरना नहीं, मंजिल मिले ना मिले सफर से मुकरना नहीं।
1: रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज़ करते हैं आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शुभ्रा।
0: और मैं हूँ कृतिका। नमस्कार, नमस्कार।

0: चेक।
1: जाना पड़ेगा।
2: अरे गेम छोड़ के?
1: एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है?
2: अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बड्समैन को।
1: कैसे?
2: आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
5: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
6: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए
9: 0542227658।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें
10: 0542227658।
11: कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है दोस्तों कि चेहरे पर मुस्कान होती है, हमारी बातचीत सामान्य होती है, लेकिन मन के किसी कोने में बहुत कुछ चल रहा होता है।
12: क्योंकि जिंदगी में हर किसी की यात्रा एक जैसी नहीं होती, इसीलिए कभी कभी किसी की बस इतना पूछ लेना कि तुम ठीक हो, अगर बात करना चाहो तो मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, बहुत ही मायने रखता है।
11: दोस्तों आज 10 सितंबर है और आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका सीधा सा मकसद बस यही है कि आपको, मुझे और हम सबको यह एहसास दिलाना कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है।
12: बिल्कुल, आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में युवाओं पर प्रेशर बहुत है।

0: है एग्जाम का टेंशन, करियर की चिंता या किसी के पीछे छूट जाने का डर। लेकिन दोस्तों, कभी ठहर कर सोचिए, क्या कोई भी असफलता आपकी ज़िंदगी में से इतनी बड़ी हो सकती है?
1: बिल्कुल भी नहीं। अक्सर हम अपने मन में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको दबा कर रखते हैं दोस्तों। हमें ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे।
0: पर दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप अपने किसी भरोसेमंद दोस्त, माता पिता से अपना दर्द शेयर करते हैं, तो दिल का बोझ आधा हो जाता है।
1: अच्छा कृतिका, एक बात बताओ, जब भी तुम्हारा फ़ोन हैंग हो जाता है या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो तुम सबसे पहले क्या करती हो?
0: शुभ्रा, ऑब्वियसली रीसेट करती हूँ, या तो सर्विस सेंटर ले जाकर उसे ठीक करवाती हूँ।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो फिर ज़रा सोचिए कि जब एक मामूली से फ़ोन के ख़राब होने पर हम उसे ठीक होने का मौका देते हैं, उसे रीसेट करते हैं, तो फिर इस खूबसूरत ज़िंदगी में ज़रा सी परेशानी आने पर कुछ लोग हार क्यों मान लेते हैं?
0: याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, दिए की एक छोटी सी लौ उसे रोशन कर देती है।
1: और दोस्तों, ज़िंदगी में जब भी लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो याद रखिए कि यह सिर्फ़ एक बुरा दौर है, पूरी ज़िंदगी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब एक वादा करें कि हम खुद भी मजबूत बनेंगे और अगर कोई हमारा साथी मुश्किल में होगा।
0: तो उसका हाथ थाम कर कहेंगे, यार अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है।
1: और दोस्तों, सुन लेते हैं इसी के साथ एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, जब भी कोई आपसे पूछता है कि आपकी पसंद क्या है, तो दिमाग में कई चीज़ें आती हैं। किसी की पसंद हो सकती है रील्स स्क्रॉल करना, या फिर कोई दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता है, कोई नेटफ्लिक्स देखना। लेकिन कृतिका, तुम्हें क्या पसंद है?
1: शुभ्रा, मुझे तो किताबें बहुत पसंद हैं।
0: किताबें?
1: बिल्कुल शुभ्रा, किताबों की दुनिया में जो सुकून है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है।
0: हो सकता है कृतिका, तुम्हारी बात बिल्कुल सही हो। और दोस्तों, जब आप एक अच्छी किताब खोलते हैं, तो आप सिर्फ पन्ने नहीं पलटते, आप एक नई दुनिया की यात्रा पर निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल शुभ्रा, किताबें वो दोस्त होती है जो बस हमें खुद से बेहतर बनाती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ चलिए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: डायरी है आज की यू डायरी की, जहां हम सीखते हैं ऐसे शब्द जो हमारी सोच और अभिव्यक्ति दोनों को मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल सुब्रा, और हमारा आज का हिंदी का शब्द है अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया या ज्ञान प्राप्त करना। और अगर आप इसका वाक्य प्रयोग करना चाहें तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, शिक्षा हमारे जीवन में निरंतर अधिगम की प्रक्रिया है।
0: और दोस्तों, हमारा आज का इंग्लिश वर्ड है जुडिशियस, जिसका अर्थ है विवेकपूर्ण या सोच समझकर निर्णय लेने वाला। और इसका सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकता है कि अ जुडिशियस पर्सन थिंक्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन।
1: दोस्तों, हर तारीख अपने अंदर कई कहानियां समेटे होती हैं, कुछ संघर्ष की, कुछ उपलब्धियों की और कुछ प्रेरणा की। चलिए अब चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां आज के दिन क्या कुछ खास दर्ज हुआ था, जान लेते हैं।
0: दोस्तों, 1846 में अमेरिकी आविष्कारक एलायस होवे जूनियर को आधुनिक सिलाई मशीन का पेटेंट मिला।
1: 1872 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कुमार रणजीत सिंह का जन्म हुआ था।
0: और दोस्तों, 1966 में भारतीय संसद ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के गठन को मंजूरी दी।
1: 2002 में यूरोपीय देश
0: स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। और दोस्तों, 2008 में जिनेवा में यूरोपीय संगठन पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रयोगशाला में दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रयोग लार्ज हैड्रन कोलाइडर को पहली बार सफलतापूर्वक शुरू किया गया था।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: और अब समय है उन श्रोताओं के लिए खास सेगमेंट का जो अपने करियर और रोजगार से जुड़ी नई संभावनाओं की तलाश में हैं।
3: जी हाँ दोस्तों, अब बारी है रोजगार सूचना की। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी MPESB ने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट के 7,500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
2: जी हाँ, यानी पुलिस विभाग में अपना करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है।
3: और दोस्तों, अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 22 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 6 अक्टूबर। और आयु सीमा की बात करें तो इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है।
2: बाकी इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
3: तो मध्य प्रदेश पुलिस में करियर बनाने का सपना देख रहे सभी पात्र अभ्यर्थियों को हमारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब पेन और पेपर लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि अब वक्त है हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का। लेकिन उसके पहले हम आपसे जान लेते हैं कि हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था और उसका सही जवाब क्या था। दोस्तों, हमारा कल का आपसे क्वेश्चन था कि 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था, और इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। और जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम है प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़, अंकेश कुमार सिंह नाम ग्राम नकहरा चुनार मिर्जापुर से। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई दोस्तों। और अब जान लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि जल संचय, जन भागीदारी और कैच द रेन अभियानों में कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है।
2: और इसका सही जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी youthairvns@gmail.com पर या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर youthairair वाराणसी पर।
3: तो दोस्तों, जल्दी से हमें अपने सही जवाब को भेजिए और बन जाइए विनर्स।
2: और अब बात करते हैं आपके तरक्की और सुनहरे भविष्य की। दोस्तों, जब देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने का सामान्य अवसर मिलता है तो तभी तो देश मजबूत बनता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं हमारा प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम।
3: बिल्कुल दोस्तों, भारत सरकार का यह विशेष कार्यक्रम 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी के कल्याण के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के बेहतर अवसर देना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करना, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना।
2: सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आप तक पहुंच जाए, यह इसका लक्ष्य है। और दोस्तों, इसी 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गौरव और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत ही लोकप्रिय योजना चलाई जाती है।
3: और दोस्तों, इसका नाम है आसान ऋण योजना। दोस्तों, इसका उद्देश्य है लोगों के लिए जो लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रोज़गार स्टार्ट करना चाहते हैं या पढ़ाई शुरू करने के लिए, ये बहुत ही कम ब्याज दरों पर सरकारी लोन उपलब्ध कराती है। दोस्तों, यह योजना मुख्य रूप से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम और विभिन्न राज्यों की अल्पसंख्यक

0: कल्याण एजेंसियों द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत मुख्यतः तीन प्रकार के लोन दिए जाते हैं।
1: और अधिक जानकारी के लिए आप अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और इसी के साथ सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके जीवन केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहता। उनके विचार, उनका संघर्ष और समाज के लिए उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहा है।
1: और दोस्तों, ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को नमन करते हैं।
0: पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 दिसंबर 1800
1: 10 सितंबर

0: 1887 को हुआ था। वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में रहे और स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और बाद में भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। उनके जीवन का की सबसे प्रेरक बात यह है कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को केवल पद और प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए राजनीति का अर्थ था जनसेवा और राष्ट्र सेवा।
0: और शायद आज के युवाओं के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है दोस्तों, कि किसी भी जिम्मेदारी को केवल अधिकार के रूप में नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में भी देखना चाहिए।
1: बिल्कुल शुभ्रा, आज हम अक्सर सफलता को पद, पैसा और प्रसिद्धि के से जोड़कर देखते हैं, लेकिन पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हमें याद दिलाता है कि असली सफलता इस बात में है कि हमें अपने समाज और देश के लिए क्या योगदान दिया।
0: बिल्कुल कृतिका, मुझे लगता है कि उनके जीवन को याद करते हुए हमें एक बात विशेष रूप से युवाओं तक पहुंचानी चाहिए कि देश के निर्माण की जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं होती।
1: बिल्कुल कहा, सही कहा तुमने शुभ्रा, देश का निर्माण हर नागरिक के छोटे छोटे अच्छे प्रयासों से होता है। एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ता है, एक युवा अपने कौशल को बेहतर बनाता है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाता है, एक नागरिक अपने कर्तव्य को समझता है, और तो ये सभी राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं।
0: और शायद यही पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे व्यक्तित्वों को याद करने का सबसे सार्थक तरीका है दोस्तों, कि सिर्फ उनकी जयंती ना मनाई जाए बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा भी ली जाए।
1: बिल्कुल, आज उनकी जयंती पर हम यह संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझेंगे।
0: और अपने देश की विविधता का सम्मान करेंगे और समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: और जहाँ भी संभव हो अपना ज्ञान, समय और क्षमता के माध्यम से दूसरों की मदद करेंगे, क्योंकि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता।
0: बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्र बनता है उसके लोगों से, उनके सपनों से और उनकी मेहनत से।
1: और उस जिम्मेदारी की भावना से जो हर नागरिक को अपने देश के प्रति जोड़ती है।
0: तो दोस्तों, आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और शत शत नमन।

0: दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत बहुत पसंद आया होगा। लेकिन कृतिका, फ़ोन तुम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हो आजकल।
1: नहीं शुभ्रा, मैं कहाँ फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ।
0: क्यों, तुम तो रील स्क्रॉल कर रही हो बैठे बैठे।
1: अरे तो रील स्क्रॉल कर रही हूँ तो मतलब कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ।
0: मुझे ऐसा लगता है कि रील स्क्रॉल करना एक हमारी डेली लाइफ का पार्ट हो गया है, जिससे हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन तो गया है, बट इसको लोग बहुत ही नेगेटिव वे में लेते हैं। बट मुझे लगता है कि आप किस तरह का रील या फिर मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग अपने टाइम को बस ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, घंटों बस यूं ही बैठे रहते हैं, बिना मतलब की चीज़ें देखते रहते हैं। और वहीं अगर आप चाहो तो फिर आप उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी कंज्यूम कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो, जिससे आप कुछ सीखने को मिले। हालांकि देखो, चीज़ें तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती ही हैं।
0: अच्छा, तो अगर मान लो, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल कर रही हूँ, तो मैं इससे बचूँ कैसे? ये लाइक एक लत टाइप की होती जा रही है कि मैं दिन भर रील स्क्रॉल कर रही हूँ, तो इससे बचा कैसे जाए?
1: देखो शुभ्रा, मैं अपनी लाइफ में एक चीज़ जो करती हूँ, मैं ये तुम्हें बताती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर रील्स देख रही हूँ तो बस मैं एक कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं उस टाइम पे रील देख रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं सडनली ये करती हूँ कि मैं उस चीज़ को मतलब उस टास्क को वहीं रोक देती हूँ कि नहीं भाई, अब मैं मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं तुरंत हट जाऊँ उस चीज़ से और फिर मैं किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगाती हूँ, ध्यान लगाती हूँ कि मैं अगर टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये रियलाइजेशन हो गई है मुझे, तो मैं अब तो जानबूझ के ये गलती ना करूँ। और ऐसा करने से शायद मुझे लगता है थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं कुछ हद तक।
0: ओके कृतिका, मतलब आगे से मैं तुम्हारी इस बात को ध्यान रखूंगी कि मैं रील्स स्क्रॉल करने की लत से कैसे बचूं, क्योंकि हमारी आज की जो जनरेशन है वो उसमें से मोस्टली लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि कब रील स्क्रॉल करना उनकी आदत बन जाती है।
1: बिल्कुल शुभ्रा, जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा रील स्क्रॉल करना कम करिए और साथ ही साथ

0: तो रील स्क्रॉल करना तो कम करेंगे ही, लेकिन उसका कोई यूज़ भी है वो भी तो बताओ। कि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि रील्स स्क्रॉल करना एक बुरी आदत भी है, हम लोग उसका कोई अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख करके आप उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया जानने सीखने का मौका मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे एक नए दिन, नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपने सपनों को जीवित रखिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए और मुझे यानी शुभ्रा
1: और मुझे यानी कृतिका,
0: को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना प्रोग्राम युवावाणी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से प्रसारित भोजपुरी में समाचार।

0: साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल बागची तथा वी मोहना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री पर रोक के लिए कड़े कानून होने के बावजूद इंटरनेट प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री की स्वचालित निगरानी और उपयोगकर्ताओं की उम्र की पुष्टि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। याचिका के अनुसार फेसबुक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म 13 वर्ष की उम्र से खाते बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग माने जाते हैं। समाचार कक्ष से रितेश।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के पूर्व गृह मंत्री और प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का 139वां जयंती कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। इस दौरान वहां के लखनऊ में उनके मूर्त पर फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि देनी। सतही मीडिया से बतियावत मुख्यमंत्री श्री योगी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के व्यक्तित्व कृतित्व पर रोशनी डर लें।
2: उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से मैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के 139वीं पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी एक महान अधिवक्ता थे, स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा क्रांतिकारियों के खिलाफ जो अभियोग दर्ज हुआ था, उस अभियोग के खिलाफ क्रांतिकारियों की पैरोकारी पूरी मजबूती के साथ करने वाले जो महान नेता थे वह पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के लगातार सेवा काल पूरा भइले के उपलक्ष्य में प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर ले सेवा संकल्प अभियान चलावल जाए। यही क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल के साथ बैठकी कई के अभियान के तैयारियों का समीक्षा कैले। बैठकी में मुख्यमंत्री कहने कि सेवा संकल्प अभियान के जरिया से प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सेवा काल के जन कल्याणकारी उपलब्धियन, नीतिगत सुधारन आ देश प्रदेश में आयल बदलावन के जन जन ले पहुंचौले के साथ ही हर नागरिक के विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प से जुड़ल जाए। बैठकी के दौरान मुख्यमंत्री सजो प्रभारी मंत्रियन के जिलन

0: आपने अपने विधानसभा में जाके तैयारियन का समीक्षा कैले का निर्देश देने। उत्तर रेलवे वाराणसी लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलोले के फैसला ले हो। ये विशेष ट्रेन 22 अक्टूबर से 12 नवंबर ले हर बीएफए के चलावल जाये। हमारे जौनपुर प्रतिनिधि बतौले कि ये ट्रेन वाराणसी से रात 1:35 पर रवाना होके रतिया में 2:35 पर जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव कैल गेल बा। एगो रिपोर्ट।
1: बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि विज्ञान गृह विज्ञान में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बोर्ड खुद 30 नंबर की प्रैक्टिकल की परीक्षा लेगा, जबकि अन्य विषयों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, यानी मार्कशीट में ग्रेड के साथ प्रैक्टिकल के नंबर भी दिखेंगे। पहले मूल्यांकन 5 प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर होता था, जिसे अंक पत्र में ग्रेड के रूप में दर्ज किया जाता था। समाचार कक्ष से अरुण।
0: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शैक्षिक सत्र 2026-27 बदे कक्षा 9 आ 11 का अग्रिम पंजीकरण आ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म भरले का आखिरी तारीख बढ़ा दिले हो। अग्रिम पंजीकरण ए समय सीमा से पहले 13 सितंबर तय रहल, जेके बढ़ा के 30 सितंबर कह दिल गई बा। एही तरियन हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरले का आखिरी तारीख के 1 सितंबर से बढ़ा के 28 सितंबर कैल गैल हो। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। बरखा और बांधन से पानी छोड़ेले के नाते प्रदेश का करीब 26 जिला अबहिनो बाढ़ से प्रभावित हम है। सज्जो जगहिन पर राहत बचाव कार्य जारी बा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ज्यादातर पूर्वी या पश्चिमी जिलन में अगला 2 दिन ले गरज चमक के साथे बरखा भइले के संभावना बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज शाम 7:31 पर महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भारत और बांग्लादेश के बीच पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम में जैविक विधि से कृषि प्रबंध विषय पर डॉक्टर आशीष मेहरोत्रा लतारे से अर्चना सिंह की बातचीत के अलावा सुनिएगा मन्ना लाल यादव और साथियों का गाया लोकगीत। 7:00 संस्कृति कार्यक्रम में डॉक्टर शुभांकर बाबू की वार्ता का प्रसारण होगा, विषय होगा त्वम विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कल यानी 11 सितंबर सन 2026 को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल शाम 7:31 पर महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित पाकिस्तान बनाम श्रीलंका क्रिकेट मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में उसरीली भूमि में वृक्षारोपण विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत आप सुन सकते हैं प्रातः 6:10 पर कार्यक्रम आराधना के अंतर्गत। प्रातः 6:25 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम में बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ की 146वीं कड़ी का प्रसारण होगा। वाचन और प्रस्तुति अरुण पांडे की होगी। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ आप सुनते हैं प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर और दिन में 12:45 पर सुनेगा पंडित शिवनाथ मिश्रा का सितार वादन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 12:00।

0: दिन में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम की कलाकार होंगी नियति वर्मा। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों के अलावा सुनिएगा गीत संगीत। युवा साथियों का प्रोग्राम युववाणी का प्रसारण होगा रोज की तरह शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत सुनिएगा जवाहरलाल यादव और साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला सुनिए आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6:30।
0: कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सीता और गीता का गीत। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।
6: Eek!

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से। आवाज हेमलता की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR TTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: रक्तचापस्य मधुमेहस्य सामान्यकर्करोगाणाञ्च प्रारम्भिकपरीक्षणानां व्यवस्था प्रापिता सहैव अग्रिम उपचारार्थं सुगमप्रेषणमार्गाः कल्पिताः केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मलेशिया तैमोर लेस्ते म्यांमार देशानां स्वसमकक्षीयैः सह उच्चस्तरीयोपवेशनम् अकरोत् एताः मन्त्रणाः ह्यः नवदिल्ल्यां समनुष्ठितायाः कृषि वानिकी विषयिण्याः नवम आसियान भारत मंत्री स्तरीय संगोष्ठ्याः अवसरे सम्पन्नाः भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य ओडिशा राज्ये क्वचित् अतितीव्र वृष्टेः क्वचित् च अतितीव्रतर वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता महिलानां क्रिकेट क्रीडायां एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धा भविष्यति इयं प्रतिस्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते इति वार्ताः
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

0: जय
1: जवान
0: जवान जय
1: जय किसान।
0: किसान। और हो जितन भैया,
1: हाँ मुनक्का दीदी,
0: का हो थो खेती किसानी में हो ये समय?
1: खेती किसानी तो देखा ठीक हो, और बदरी बुनगी देखता हो कि बरसात होत बा, असम है आदमी ऐसे अपन जन खेती किसानी हो ये पर भी प्रभाव पड़त बा।
0: अरे देखा हो दाऊ, बरसत हुआ तब्बो तू कहत हुआ कि प्रभाव पड़त है, नाही बरसत ना तो कहिया बरसियन कहिया बरसियन। आ हमहन किसानन के खातिर तो देखा ये बड़ा अच्छा मतलब चलत है मौसम, काहे से पानी के देखा जरूरत है खेतन में है ना। लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा जहाँ खलार बा पानी लग जाता तो अपन जो धान का फसल बा ना ओके थोड़ी सा दिक्कत पहुँचत है। लेकिन अब का करबा देखा दऊ, हमहन के मन से तो चलियन नहीं करियन उहे जौन उनके करे के हुई है।
1: ओए, और देखा जोन बरखा बुनी हो तो देखा
0: हाँ
1: ऐसे अपने जोन माटी हो ये पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हो, कहीं कहीं कटाव हो जाता हो, और कहीं कहीं लोग उगे संजुवत हुन के कैसे वो सही से रहे। यही में देखा जोन अपन जैविक पदार्थ हुन है ना, मृदा और पौधों पर प्रभाव बा। एक देखल जाए तो मुनक्का बहिन, आज के समय में खेती में लागत बहुत बढ़ गल हो और किसान भाई लोग के सामने अनेक चुनौती आ गल हो। यही कारण से जैविक तरीका से खेती के समझल और अपनावल बहुत जरूरी हो।
0: ई बात सही कहत हुआ देखा। हमरे कह का मतलब ई है जितन की जवन जैविक खेती का बात हम हने करत है तो एमन जौन जैविक पदार्थ हुआ है, जैविक पदार्थ का मतलब है बा कि अपने खेती किसानी में जौन खर पतवार बा या जवन जीव जंतु हुआ जौन मरगल बा मर गए हुआ जैसे कुछ पशु हुआ जानवर हुआ हैं ओके साथे साथे जौन अपने पशुअन का मल मूत्र है ना ओके मट्टी में ए तरह से मतलब रखना जैसे पहले के बड़ बूढ़ पुरनिया जौन रहें आपन जौन पुरनिया किसान हुआ उन्होंने के मुँह से सुनत होबा तो ई लोग का करें ना कि ई सब जौन हव पदार्थ एके एक जगह गढ़ा खन के है ना ओमन रख दें। ऐसे रखत जा ऐसे का हो ना कि ई कुछ समय बाद जौन है बन जाए खाद। आ जब ये खाद के अपने खेती किसानी में जब डालल जाए तो ई ऊ जौन खाद है जौने के वर्मी कंपोस्ट कहल जाला, ऐसे जौन अपने खेती के जौन फसल है जितना बढ़िया होए ना कि पूछा मत, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया रहा और साथे साथे आपन जौन खेती का मट्टी है ना ओहू को उर्वरता जौन है ओकर पोषणता जौन है वो बहुत बढ़िया हो चल जाए।
1: सही कहलू मुनक्का दी, देखा जो

0: कल आदमी खाद खोजला बाजारी में, देखा अपने आसपास ही खाद हो, जौन खर पतवार हो, जैसे जौन कहली है ना कि जैविक पदार्थ, तो देखा अपने सड़ल पत्ती हो, फेंका जाला, गोबर फेंका जाला है ना, तो खर पतवार के इकट्ठा करके गड्ढा में वो वर्मी कंपोस्ट खाद बना के वो भी अपने खेती के लिए बड़ा उपयोगी हो जाला।
1: उपयोगी हो जाला। यही के साथे साथे देखा अपन जो जैविक

0: साथे देखा अपन जोन जैविक पदार्थन के बात हो तो इमन देखा हम हमरे गांव में न अपन जोन जोखू कक्का हुआन ई का कैले हुआन कि गया रहने कृषि अनुसंधान संस्थान है वहाँ से न ई केचुआ लिए ना और केचुआ के न छाहे में मजे से मेढ़ी बना के वही में उन लोगन के जो है बढ़िया से कह दिले हुआन आ उनकर कहना हो ना कि ई अपने वो खेतन में डालब जौनन का उपजाऊ क्षमता कम हो और कहे से कि देखा विज्ञानी भैया लोगन भी बतावे न कि जौने खेत के मट्टी में केचुआ रहे न वो खेत का उपजाऊ क्षमता बढ़ जाला इसलिए कि वो जो है मट्टी के एकदम भुरभुरा बना दे ना इसे का होला ना कि मट्टी में जो है हवा सूखे का पानी सूखे का क्षमता बढ़ जाला इसे उत्पादन जो है ना वो बहुत बढ़िया होला।
1: सही कहलू है। देखा केचुआ के बात कहलू ना तो खेते में जब देखा केचुआ जब जालन तो खेते में मट्टी चाल देवन एकदम और एकदम भुरभुरा कर देवन इसे का होला कि बड़ा उपजाऊ हो जाला और जो उनकर उपजाऊ क्षमता है बढ़ जाला। तो इसे ये चीज़ के अपनावे के चाहिए जौन वर्मी कम्पोस्ट के बात कहलू है तो इमन जौन है अपने तरीके से जौन अपन किसान हुअन तो इमन ध्यान दें इमन जितना खर पतवार हो गड्ढा बना करके डाल के ओके पूरा कम वर्मी कंपोस्ट बनावे ताकि अपन खेत उपजाऊ रह सके।
0: उपजाऊ रह सके। आ एक बात और है जितन कि ई जवन जैविक पदार्थ का हमने बात करत ही जाना ऐसे अपन मट्टी तो बढ़िया होबे करला लेकिन मट्टी के भीतरा हो अपने खेतन में जवन एकदम छोट छोट सूक्ष्म जीव हो ना जवन की पौधन के पोषणता के बढ़ावा न बढ़िया बनावा न उनसे जौन है कि ये जौन जैविक पदार्थ मिलला तो ऐसे उनकर जौन है पोषण मिलला उनके और ऐसे अपने जौन फसल का हो वो बढ़िया हो जाला और मट्टी जौन उपजाऊ हो जाला मट्टी में पानी सूखे के क्षमता ई तो बढ़ी जाला। यही के साथे साथे तू जौन कहत हुआ ना कि फसल चक्र का बात करत रहला हा
1: वर्मी कंपोस्ट के बात करत रहली हा तो देखा ई तो मतलब वर्मी कंपोस्ट होगा लेकिन यही में यही फसल चक्र का भी अपनावक चाहिए जौन कहल जाला कि खेती जौन बदल बदल के करल जा ताकि आपन जौन मट्टी का उपजाऊ शक्ति बनल रहे। और देखा ई तो बात बत कही होता हो तई हई जौन एक संदेश है ना तो किसान भाई के सुना दे जाए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: देखा हो मुनक्का दीस सनीस तो होगल, और आज के मौसम के बारे में जान लेवल जा। तो देखा अपने वाराणसी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहल है और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहल है, और चंदौली के जौन हो 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहल है, और साथ ही साथ देखा गाजीपुर का 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहल है, और मिर्जापुर का जौन हो 33 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहल है, और वही में जौनपुर का 32 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान और 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान।
7: कुल मिला करके जितन जौन है मौसम हो ना, आज का जितना भी जिला हमन के बनारस के आसपास का हुआ ओकर तापमान अधिकतम और न्यूनतम कुल एक दूसरे से मिलत जुलत हो, यानी किसान भैया लोगन सतर्क रहे के जरूरत हो कि बरखा देखा अब ही होई है, ये नहीं कि तन्नी से मतलब असावधान हो जाए कि चला बादल इधर नहीं है तो न हो, लेकिन बरखा तो हो था बढ़िया से। और जितन एक बात और कहे के बा कि देखा हमने बात करत रही जा जैविक पदार्थन का अपने मट्टी पर अपने पौधन पर का प्रभाव पड़ेला, लेकिन ई भी

0: जरूरी है कि जैविक विधि से जौन अपन खेती किसानी है अगर ओकर प्रबंधन कैल जाए ना, तो ऐसे किसान लोगन के लाभ है लाभ पाए हैं।
1: देखा, अब प्रबंधन का बात कैलू है ना, तो देखा यही विषय पर निमन के बत कही है, और डॉक्टर साहब आ गल हन, तई तू बतिया ला। देखा विषय तो ये बा कि जैविक विधि से कृषि प्रबंधन, तो ये विषय पर डॉक्टर आशीष लतारे से आप बतिया लें।
0: हाँ, किसान भैया, देखा हर किसान चाह न कि अपने खेती किसानी में जवन भी उपज करे ना, तो ओकर सीधा प्रभाव मने के स्वास्थ्य पर पड़ेला। आज जितना भी किसान भैया हुआन, उनकर यह प्रयास रहेला कि उ जवन भी उत्पादन करत हुआ, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, या एकरे साथे जितना भी अनाज हो, वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। यही से बहुत से किसान भैया लोगन जैविक विधि से अपने खेती किसानी में जौने विधि के अपना ले ले हुआ, और जे ना अपने ले है वो थोड़ा प्रयास भी करत हुए कि ए विधि के अपनावे। तो जैविक विधि अपने खेती किसानी खातिर काहे इतना जरूरी हो? ए विधि से अपने किसानी का जौन प्रबंधन कैसे हुई, यही विषय पर जानकारी देवे बदे आज हमन के बीच में आयल हुन डॉक्टर आशीष लतारे जी। और आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हुन। तो आज हमन डॉक्टर भैया से जानल जाये कि जैविक विधि से कृषि का प्रबंधन जवन है कैसे होवे के चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका अपने किसानवाणी कार्यक्रम में स्वागत हो।
2: धन्यवाद।
0: और आप बताई किसान भैया लोगन के कि जैविक विधि का होला?
2: सभी किसानों को मेरा नमस्कार। जैविक विधि वो होती है जिसमें हम किसी भी रासायनिक उत्पादों का, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैविक विधि में हम कार्बनिक खाद को ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से मृदा में कार्बन बढ़ जाए, क्योंकि जब से हरित क्रांति हुई है तब से ज्यादा पैदावार लेने के लिए हमारे किसान भाइयों किसान भाई रासायनिक खाद ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खेती में, जिसकी वजह से मिट्टी में बाकी न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी
0: जी
2: बहुत कमी पाई जा रही है। जैविक खाद ही होता है, कार्बन ही होता है, जो मिट्टी में जो जीवंत बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए पोषण का काम करते हैं। तो जब से हरित क्रांति हुई है, रासायनिक खाद की उत्पादन की वजह से जैव मिट्टी की उर्वरता बहुत कम हो जा रही है, तो इसलिए हमें जैविक खेती को अपनाना जरूरी है, जिसमें हम लोग कार्बनिक खाद, हरी खाद, जैव उर्वरक, देन फसल चक्र, जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन का इस्तेमाल करते हैं।
0: मतलब हम लोग भी बचपन से ही, और हम लोग देखले भी है कि फसल चक्र अपनावल जाला। जैसे जब धान का फसल लगाव कला, तो उससे पहले हरी खाद और साथ में दलहन तिलहन जब होला, तो उके पलट के, जैसे ए साल एक खेते में दूसर दलहन, तो अगले साल यही हो, मतलब जैविक विधि ना। तो लोगन के मन में ही भ्रांति भी होला कि ऐसे उपज जवान है डॉक्टर साहब वो प्रभावित होला, उनकर मानना हो कि कम उपज होला, तो का इस सही बात है या केवल एक भ्रम है?
2: हाँ, ये सही बात है। शुरुआती 2 से 3 वर्षों में उपज में लगभग 20 से 30% तक की कमी देखी जा सकती है, क्योंकि मिट्टी को वर्षों की रासायनिक निर्भरता से बाहर निकालकर प्राकृतिक उर्वरता को की ओर लौटने में समय लगता है। इस अवधि को हम परिवर्तन काल कहते हैं। इसी काल में किसानों को धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि तीसरे और चौथे साल से मिट्टी की जैविक सक्रियता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उपज जो आपकी होती है वो स्थिर हो जाती है और बेहतर भी होने लग जाती है, और साथ ही लागत भी उल्लेखनीय रूप से घट जाती है।
0: मतलब शुरुआत में थोड़ा धीमा रही, लेकिन धीरे धीरे फिर जब मट्टी ओकरे लायक हो जी, उपज के लायक, तो उत्पादन बढ़िया मिले लगे। तो अच्छा, जैसे जैविक विधि से अपन कृषि प्रबंधन करे के बात हो, तो जैसे खाद के बात हो, तो खाद ये अपने घर पर बना ली हन या फिर इनके खरीदे के पड़ी, का करे के पड़ी किसान भैया लोगन के?
2: ये जो खाद होती है वो हमारी जो गोबर की खाद होती है,
0: जी जी
2: गाय भैंस जो होती है हमारी, तो गोबर की खाद जिसे हम FYM कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी हम बना सकते हैं घर घर में ही, हमारे खेती में ही हम लोग केचुए ले आकर वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद सनई, ढैंचा जैसे हरी खाद जो होती है, जिसे हम खेती में बुआई करके उसको जब 30 दिन हो जाते हैं तो उसको हम जमीन में ही

0: मिक्स करके उसको मिला सकते हैं जिससे मिट्टी में उर्वरता बढ़ जाती है। ये तीनों चीजें घर पर ही आसानी से तैयार की जा सकती है और फसल अवशेष, गोबर तथा रसोई के जैविक कचरे को एक गड्ढे या टाके में परत दर परत भरकर नियमित नमी बनाए कर रखेंगे तो 2-3 महीने में अच्छी गुणवत्ता की कंपोस्ट तैयार हो सकती है।
1: मतलब इमन ज्यादा समय ना लगा ला, 3 से 4 महीना में तैयार हो जी। मतलब ये फसल में ये समय अगर करत हुआ तो गेहूं की जो फसल हो वाली है वो समय आवत आवत जो है कि उनका खाद तैयार हो जाएगी।
0: खाद तैयार हो जाएगी, 2-3 महीने में ही तैयार हो जाएगी।
1: अच्छा अच्छा, एक जैसे कि अगर माल नहीं जे ना तैयार कर पावत बा तो अगर खरीदल चाह तो फिर उनके कहाँ जाए के पड़ी?
0: ये खरीदने के लिए जैसे केचुए खरीदने के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है आपका वहां से भी आपके मिल सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस जो होता है वहां से भी आपको मिल सकता है।
1: अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आप अभी बतैनी है खाद के बारे में, लेकिन कीटनाशक भी जैविक विधि से बन सकला?
0: हाँ, कीटनाशक भी जैविक विधि से बन सकते हैं। जो नीम की पत्ती है अथवा नीम का तेल का घोल होता है वो भी कीटनाशक का काम करता है। गोमूत्र आधारित अर्क वो भी कीटनाशक का काम करता है तथा लहसुन मिर्च का घोल जैसे घरेलू उपाय कई सामान्य कीटों पर प्रभावी है। इसके अतिरिक्त जैव नियंत्रक जैसे ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, ये भी सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है। इन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से भी प्राप्त किया जा सकता है।
1: अच्छा, जैसे आप गोमूत्र का बात कहनी है तो गोमूत्र ऐसे ही सीधे जैसे पशु हुन गाय अपने घरे हैं तो उनके सीधे गोमूत्र के किसान भैया लोग कीटनाशक के रूप में प्रयोग में लिया सकें या फिर ओहू के शोधन करे के पड़ी कोनो माध्यम से?
0: उसे आपको पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करना
1: अच्छा,
0: पड़ेगा।
1: अच्छा, सीधे ना छिड़के।
0: अच्छा, नहीं तो पत्तियां जल जाएगी।
1: जी जी वही, मतलब ये कभी कभी देखल गया लो कि जैसे सीधे अगर छिड़काव हो जाता कोई जिके मतलब जानकारी ना है तो ज्यादातर अपन जो फसल हो उतना दूर के एकदम झुलस जाला। अच्छा, यही के साथे साथे जैसे हम लोग जैविक विधि से कैसे अपन कृषि प्रबंधन होवे के चाहिए खाद का या कीटनाशक का या फसल के देखभाल का, तो इमन चरण का हो कैसे अपन किसान भैया लोगन एक अपने हैं जो उन्हें से कि उनके आसानी हुई?
0: इसमें जैसे आप रासायनिक खाद मिट्टी में डालते हैं
1: जी,
0: तो रासायनिक खाद की जगह पे जैविक खाद जैसे जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम के साथ सीड को जो बीज होते हैं बीज को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एजोटोबैक्टर के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो जीवाणु होते हैं ये वातावरण में हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसको मिट्टी में फिक्स करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में फॉस्फोरस जो आपने फर्टिलाइजर थ्रू ऐड किया है डाला गया है उसको घोलने का काम करता है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो इस तरह से जैव उर्वरक भी मिट्टी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। माइकोराइजा नाम से भी एक फफूंद होता है जो पौधों के जड़ों के साथ बाइंडिंग होकर मिक्स होकर वो मिट्टी में फॉस्फोरस का सोल्यूबलाइजेशन का काम करता है और मिट्टी पौधों को न्यूट्रिएंट देने का काम करता है।
1: अच्छा, इसके लिए सरकार के ओरी से भी कुछ योजना चला था जो उन्हें का लाभ किसान भैया लोगों के मिल सके?
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक खेती के बढ़ावा देने के हेतु परंपरागत कृषि विकास योजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन संचालित की जा रही है। अच्छा। उसके साथ ही सहभागी गारंटी प्रणाली के अंतर्गत किसान समूह सामूहिक रूप से जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करते हैं जो विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय की भी जैविक खेती से संबंधित प्रशिक्षण प्रदर्शन तथा अनुसंधान कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जैविक खेती जो है वो जब तक आप समूह में नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा सफल नहीं होता है।
1: जी जी, अच्छा, तो एकर अपने पर्यावरण पर प्रभाव का पड़ला पर अपन पर्यावरण इसे प्रभावित होला, मतलब पर्यावरण प्रदूषित होला या फिर पर्यावरण स्वच्छ होला?
0: जैविक खेती से पर्यावरण स्वच्छ होता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जैविक खेती में हम लोग कार्बन जो वातावरण में जाना था उसको हम मिट्टी में उसको फिक्स करते हैं जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन की मात्रा कम होती है और उसको मिट्टी में डाला जाता है।
1: कुल मिलाकर के जो जैविक विधि

0: एकरे माध्यम से अगर खेती होता तो अपन हवा, अपन पानी और अपन मट्टी जोन तीनों है, ये सब हर तरह से एक पोषण मिली और इमन जोन फसल उत्पादन हुई वो जो ना मने के स्वास्थ्य खातिर बिल्कुल निरोगी रही। तो किसान भैया लोगन के डॉक्टर साहब चलत चलत कुछ और जानकारी अगर आप देवल चाहत।
1: संक्षेप में अगर कहेंगे तो जैविक खेती न केवल मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है
0: जी,
1: अपितु यह किसानों की आय बढ़ाने तथा उपभोक्ताओं को पौष्टिक एवं सुरक्षित खाद्यान्न उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम है। स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग तथा वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर किसान भाई इसे सफलतापूर्वक अपना सकते हैं।
0: किसान भैया लोगन देखिए डॉक्टर साहब कितना बढ़िया जो है कि जानकारी बताइना है कि जैविक विधि जौन हो उसे अपने खेती बाड़ी में प्रबंधन करके जौन फसल या जौन आप खाद्यान्न उत्पादन करत हुआ वो पूरी तरह से निरोगी हो सकला। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा उत्पादन में कमी देखल जा सकला लेकिन फिर बाद में ये आपके आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाई, कहे से कि जैविक विधि से जो उत्पादन होला ओकर जोन बिक्री होला वो अच्छा पैसा देवला। तो आप लोगन ये विधि के जरूर अपने खेती किसानी में अपनाई और डॉक्टर आशीष लतारी जी आप हमारे इनके किसानवाणी कार्यक्रम में ऐलन और इतना बढ़िया जानकारी हमारे किसान भैया लोगन के देना, एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चिंतन हाँ मुनक्का दी कहा थी ना कि जैविक विधि से कृषि कैसे प्रबंधन करल जा, ये विषय पर बड़ा फरिया से पूछलू है डॉक्टर लतारे और
0: डॉक्टर आशीष लतारे दिया रहना है। अब इन्हों का धन्यवाद कह दिहल जा, हाँ इनके छोड़ल जा और फिर से आवल जा अपने किसान वाणी में और कहे कि ई हो ना जितन की देखा जौन जैविक विधि के बात भइल है एमन जौन हरी खाद के बात भइल है तो अभी भी बहुत से लोग नहीं जौन खाद के प्रयोग करत हुन जैसे धैचा भयल उर्दी भयल उतैला भयल इकुल मूंग भयल डाल देवन है तो ऐसे का होला ना कि मट्टी जौन बढ़िया हो जाले आगे जब फसल होला तो उपजाऊ होला है ना। अब फसल का मान तो भाई किसान है जाता खेती किसानी के बात तो जितन होबे करी एहू में तू कहत अला है ना कि आज का मंडी भाव का हो बाचना जरूरी है अपने किसान भैया लोगन से। तो हम कहीं कि चला बताई देवल जाए कि आज का अपन जौन पहाड़िया मंडी रल है उमन अपन जौन सब्जी है ओकर का भाव चलत रहा है। तो देखा अपने थरिया में सबसे पहले जो ने तरकारी के बात होला वो होला आलू का। आलू नहीं है तो समझ ला कि अपन रसोईया तनी सा फिक्का फिक्का हो जाला ना। तो आलू सफेद जौन रहा वो 600 से 650 रुपया प्रति क्विंटल रहा और लाल आलू रहा 900 से 950 रुपया प्रति क्विंटल। और लाल आलू में भी एक आलू है जौन थोड़ी लंबा लंबा होला हो ये रहा 1100 से 1200 रुपया प्रति क्विंटल। यही के साथ प्याज तो देखा ऊपर नीचे होत है कहे से जैसन जी प्याज है छोट बड़ वो हिसाब से उकर दाम भी है। तो 4500 से लेके 4800 रुपया के साथे एकर जौन भाव है ऊपर नीचे रहा। अब परोरा जौन रहा ई रहा 4000 रुपया प्रति क्विंटल, मरचा रहा 2800 रुपया प्रति क्विंटल और तुहके बड़ा पसंद है इस सूरन है ना। तो ई जौन कोहड़ा आदि सूरन है एहू को जौन बाजार भाव रहा बता दा तनी देखा किसान भैया लोगन के।
2: बहन कोहड़ा 1600 रुपया प्रति क्विंटल रहा है, अदरक रहा 6000 रुपया प्रति क्विंटल, सूरन रहा 2500 रुपया प्रति क्विंटल और मक्का रहा 900 रुपया प्रति कैरेट और खीरा वही में रहा 2000 रुपया प्रति क्विंटल। देखा ये तो हो गल मंडी का भाव हो गल, किसान भैया लोग जान गल हुए कि का भाव हो और देखा हो चाहते हो मन मनसान। तो मन मनसायन में देखा मन्ना लाल यादव और साथी का विकास गीत हो किसान भाई लोग सुने।

0: जीतन बड़ा निक मन्ना लाल यादव और साथी लोगन के विकास गीत रहल। हमके लगत अपन किसान भैया भी झूमत हुई हैं जैसे तू झूमत हुआ। अब आवा इधर, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ।
1: तो कार्यक्रम में देखा जोन अग्रिम विशेष जोन कार्यक्रम हो ओकरे बारे में बता देवल जाए। तो देखा किसान बाड़ी के जोन अगला कार्यक्रम हुई शनिवार के यही समय हुई 6:30 बजे है ना, 12 तारीख के। तो इमन बात हुई बागों की देखभाल ना, ये पर जानकारी दी है प्रोफेसर AK पाल।
0: एके पाल का बत कही रही आ हमहूँ आई वो बत कही में जानकारी दिवाओ बदे अपने किसान भैया लोगन के, है ना। लेकिन एक बात ई कह देवल जाओ पंच भैया लोगन से कि देखा बरखा बुन्नी का मौसम चलत हो, बरसात हो, आ इमन अपने स्वास्थ्य का देखभाल भी करना जरूरी है। और स्वास्थ्य का देखभाल तो होबे करी, बाकी जौन सनेस हो ना तनी इहो हो जाओ।

0: पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं,
1: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: जीतन, हाँ, देखा बतकही करत करत कहाँ पहुँच गए समय, है ना। अब ही अपने किसान भैया लोगन से तो बात बहुत कुछ करे के रहल है, लेकिन देखत हुआ घड़ी में भी समय हो गल है चले का। अब मौसम का देखत हुआ है, कुल छाता ले ले हुआ, बरसाती ले ले हुआ है। हम कही देखा हमरे लगे तो छाता ना, हम ले लेते ही, बरसाती तू अपन ले ला। और देखा अब किसान भैया लोगन से विदा लेवे के भी तो समय होता।
5: बोलल जा जय जवान जय किसान।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट

0: भवति परदिने च सर्वेषु मन्दिरेषु ब्राह्मण भोजनं कारयित्वा भक्तेभ्यः प्रसाद वितरणं भवति इति शम।
1: संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शुभांकर बाबू की वार्ता, विषय था तुम विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार सैदा बीवी पुत्री जमाल अहमद निवासिनी काजीपुरा कला नई सड़क वाराणसी। सैदा बीवी 16 मई सन 2026 से लापता हैं। सैदा बीवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 26 वर्ष, लंबाई 152 सेंटीमीटर, रंग गोरा है, शरीर सामान्य है, चेहरा गोल है। यदि आपको सैदा बीवी के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार श्रीमती प्रभा यादव पत्नी शिव बदन यादव निवासिनी ग्राम भंडारी थाना नगरा जनपद बलिया। श्रीमती प्रभा यादव 6 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। प्रभा यादव के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 53 वर्ष, रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है, बाल सफ़ेद और काले हैं, लंबाई 5 फीट 2 इंच है, शरीर मजबूत है, गोल चेहरा और दोहरा बदन है। ये भोजपुरी भाषा का प्रयोग करती हैं। मानसिक रूप से इनकी स्थिति ठीक नहीं है। यदि आपको श्रीमती प्रभा यादव के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना है और ये सूचना हमें मिली है थाना पीपरी जनपद सोनभद्र द्वारा। शिवानी केन पुत्री स्वर्गीय हरिकिशन केन निवासिनी लोनी गेट छोटा बाजार शाहदरा दिल्ली। शिवानी केन 26 मई सन 2026 से लापता हैं। शिवानी केन के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। आयु 28 वर्ष, लंबाई 147 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ है, मजबूत जिस्म दोहरा बदन है, गोल चेहरा है। ये गुलाबी रंग का सूट पहनी हुई हैं। ये हिंदी और भोजपुरी भाषा बोल लेती हैं। यदि आपको शिवानी केन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या फिर थाना पीपरी जनपद सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र, क्षमा करें, हमारे लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल टीईटी परीक्षा, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में राज्य के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और विकसित भारत 2047 के संकल्प को जन संकल्प बनाने का अवसर है। इस दौरान सेवा गतिविधियों, विकास कार्यों, लाभार्थियों की वास्तविक कहानियों, युवाओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को जोड़कर अभियान को सेवा से संकल्प की व्यापक यात्रा के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के तहत दीप प्रज्वलन के साथ होगी। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। इनके अतिरिक्त प्रमुख स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर नमो सेवा थीम पर लेजर शो, तीर्थ स्थलों और शक्तिपीठों में राष्ट्र कल्याण एवं विकसित भारत के संकल्प के लिए महायज्ञ, 25 सितंबर को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाएगा। 17 अक्टूबर को अभियान का समापन होगा। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
2: केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज सेवा संकल्प अभियान की कार्ययोजना को लेकर देश के सभी राज्यों के नगर विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शामिल हुए। बैठक में नगर विकास मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रमों के साथ ही विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। श्री शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुल 157 घंटे का अनवरत स्वच्छता अभियान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देश के पूर्व गृहमंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकभवन में आयोजित पुष्पांजलि

0: जलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रख्यात अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत का देश की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इस बड़े राज्य की व्यवस्था को सुशासन के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना और इसके आर्थिक उन्नयन, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करना, इसके लिए उन्होंने उस समय अपना प्रयास प्रारंभ किया। अनेक प्रकार के रिफॉर्म लाए, लैंड रिफॉर्म का जो मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया।
0: उपमुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर रोगों वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने के लिए सरकार ने विभिन्न अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित करने की शुरुआत की है।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी व स्ट्रोक के जो पेशेंट्स आते थे, न्यूरोलॉजी के, उनको तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और सिविल अस्पताल के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए और वहां के चिकित्सक आकर के यहां पर ओपीडी करेंगे, मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि सिविल अस्पताल में सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी, अतः सिविल अस्पताल को उच्चीकृत करते हुए यहां पर चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है और इस प्रयोग को हम अन्य अस्पतालों में भी ले जाएंगे।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। शिक्षकों के लिए स्पेशल TET परीक्षा 3 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्पेशल TET के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है, वहीं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। पूर्व में TET या CTET उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों के लिए स्पेशल TET दोबारा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। जिन अध्यापकों ने पूर्व में TET या CTET उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें निर्धारित विज्ञापन के अंतर्गत पंजीकरण कर आवेदन करने और परीक्षा में भाग लेने की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने आज बिजनौर में महिलाओं से संबंधित विवादों पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मामलों के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मिशन से जुड़ी महिलाएं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली शक्ति हैं।
3: ये बहनें केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, बल्कि ये सभी बहनें विकसित भारत के संकल्प को लेकर अपनी प्रगति करने वाली सभी बहनें हैं। आप सभी वो शक्ति है जो परिवार को संवारती है, समाज को दिशा देती है और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करती है।
0: आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुगम यात्रा की सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे ने वाराणसी और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि यह विशेष ट्रेन 22 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को संचालित होगी। चित्रकूट में कल से शुरू होने वाले भाद्रपद अमावस्या मेले में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं की हैं। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेला क्षेत्र, प्रमुख मंदिरों, घाटों और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
4: हमारे इस मेले की सुरक्षा में

0: डिप्टी एसपी रैंक के 14 अफसर हैं, एसओ इंस्पेक्टर्स 15 लगे हुए हैं, 36 इंस्पेक्टर, 262 सब इंस्पेक्टर, 13 महिला सब इंस्पेक्टर, 820 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, 125 महिला कांस्टेबल, ट्रैफिक के 18 उप निरीक्षक और 80 कांस्टेबल्स, पीएसी की 2 कंपनियां हैं, फ्लड प्लाटून भी हमारे पास 2 प्लाटून हैं।
1: राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन लगातार निगरानी करते हुए राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर रहा है। अब तक 21,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। बदायूं बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी, अयोध्या व बलिया की तुर्तीपार में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल टीईटी परीक्षा, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में राज्य के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भारत और बांग्लादेश के बीच पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: Like that, you can't take any team lightly, and result is always a history. And today is a fresh game, and we have to go with a positive approach.
6: Any changes to your playing combination?
5: No, we're going with the same 11.
6: In terms of putting on a total now on this surface, what's a good total you'd be aiming for?
5: Well, I've been telling that you know, this pitch is a little tricky. You can't really set something in your mind, but I think.

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, धुन है आनंद मिलिंद की और फिल्म का नाम है सुहाग।

0: इनसे मिलिए। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक तांबे से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि सहायक पुलिस निरीक्षक साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे। बहुत बहुत स्वागत विवेक जी।
2: थैंक यू सर। थैंक यू।
1: मान लीजिए कि कोई कुरियर वाला बनके आपके दरवाजे पर आता है और वो कहता है कि आपको एक कोड आएगा। अमूमन नॉर्मल केसेस में भी ऐसा होता है कि कई कंपनीज हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं तो वो कोड आता है जो कुरियर वाले को देना होता है। इस तरह से भी कई लोगों के साथ साइबर क्राइम हुआ है जिसमें उनके साथ पैसे निकाल लिए गए या व्हाट्सएप या मैसेजिंग के जरिए एक लिंक आई और उसको आपने क्लिक कर दिया। सपोज ये दोनों चीजें हो गई कि आपने ओटीपी भी दे दिया या लिंक क्लिक कर दिया, उसके बाद एहसास हुआ कि मुझसे तो कोई गलती हो गई, अब क्या किया जाए? फौरन तो पैसे नहीं निकलेंगे, तो बचाव क्या है?
2: कैसे है सर कि जैसे ही आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है आपको इमीडिएटली 1930 पे कॉल करना है। वो इसके लिए कॉल करना है क्योंकि 1930 में कॉल करने के बाद फंड जो आउट हो चुका है आपके अकाउंट से और वो अब बढ़ रहा है जो भी साइबर क्रिमिनल है उसके अकाउंट की तरफ, क्योंकि वो मल्टीपल लेयर से उसके तरफ जाने वाला है, एक से दूसरे अकाउंट वॉलेट अकाउंट में। तो जैसे आप 1930 पे कॉल करते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, ट्रांजेक्शन डिटेल्स डालते हैं, आप सारी आपको ट्रांजेक्शन डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो वो जो कंप्लेंट है उसके बैकेंड में बैंकर्स जो भी है, हर बैंक के एम्प्लॉयज है वो लिंक्ड है, वो उस अमाउंट को, वो जो फंड का फ्लो है उसको ब्लॉक करना शुरू करते हैं और जिस वजह से जो फंड्स आगे बढ़ रहे हैं उसको होल्ड या रोकने की कोशिश की जाती है। तो जो अमाउंट रुक जाता है वो हम वापस विक्टिम को कोर्ट ऑर्डर के थ्रू रिटर्न भी कर रहे हैं, FIR रजिस्टर कर रहे हैं उसमें, और फिर जो भी कल्प्रिट्स है उसमें मोस्टली अदर स्टेट के ही, कोई साउथ इंडिया का विक्टिम है तो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया के अकाउंट्स यूज होंगे, कोई नॉर्थ इंडिया का विक्टिम्स है तो वो अकाउंट साउथ इंडिया के यूज करेंगे। तो जो भी लोकल पुलिस है जहां पे FIR रजिस्टर होता है वो वहां पे जाके उनको अरेस्ट करते हैं एंड फिर उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करते हैं। तो एक तरीके से ये पोर्टल से अकाउंट का पैसा बचता है और कल्प्रिट्स के ऊपर एक्शन भी लिया जाता है फिजिकली पुलिस जाके, इस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है।
1: 1930 पर तो हम रिपोर्ट करेंगे ही, ये आपने बताया, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं अपना फोन एरोप्लेन मोड पर डाल दूंगा या अपने वॉलेट्स को या मोबाइल ऐप के जरिए लॉग आउट हो जाऊंगा तो काम बन जाएगा या अपने कार्ड्स को ब्लॉक कर दूंगा तो काम बन जाएगा, क्या ये प्रभावी तरीके हैं?
2: सर कैसे है, अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे कि साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कोई UPI ID जो है उसको अकाउंट के साथ लिंक कर देते हैं और बहुत बार विक्टिम्स को ये मालूम नहीं होता कि उनके अकाउंट के साथ UPI ID लिंक कर दिया है। अब जब UPI ID लिंक हो जाता है तो उसको OTP की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ MPIN डालना है जो पहले से उसने सेट करके रखा है। मान लीजिए आज आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, हफ्ते भर के बाद पैसा आया तो वो आउट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है कि आपने बैंक को बोल के आपका अकाउंट फ्रीज करवा दिया, आपने सिम कार्ड चेंज कर दिया, आपने अननोन कॉल जो आ रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया, ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, सब कर दिया, मोबाइल फॉर्मेट मार दिया, ये सब करने के अलावा आपको बैंक में जाके ये भी चेक करना जरूरी है कि आपके जो भी बैंक अकाउंट है उसको कोई एक्सटर्नल UPI ID तो लिंक नहीं हुआ है। तो वो अगर लिंक हुआ हो तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हो उसको डीलिंक करो। दूसरा, सिर्फ किसी के लिंक भेजने से या सिर्फ किसी के भेजे हुए लिंक को ओपन करने से आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाने वाला।
1: ओके।
2: हाँ, आप जब तक एक्सेस नहीं देते आपके फोन का, जैसे बहुत बार आपको बोला जाता है कि आप टीम व्यूअर या फिर उससे सिमिलर ऐसे कोई ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करो जिससे आपके मोबाइल का एक्सेस किसी और को मिल जाएगा, जब तक उसके पास एक्सेस है तो उसको आप

0: आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो भी चीजें हो रही है वो दिख रही होती है, रियल टाइम में दिख रही होती है। वो आपको इसी के लिए कहेगा कि 5 रुपए का ट्रांजैक्शन कीजिए, ताकि वो देख पाए आप किस तरीके की एक्टिविटी फोन में कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद वाली एक्टिविटी वो शुरू कर देगा और ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। वो ओटीपी उसको दिख रहा है जो आपके मोबाइल में आपको SMS आ रहा है। तो कोई भी अननोन ऐप इंस्टॉल किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मत कीजिए। कोई भी एक्सेस आप किसी को दीजिए मत कि आपके फोन में होने वाली सारी चीजें उसको सामने वाले को दिखाई दे। तो ये अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कोई अननोन ऐप नहीं डालेंगे, तो आप आपके साथ होने वाले फ्रॉड को बचा सकते हैं। दूसरा, रही बात ओटीपी की, तो ओटीपी तो सर बेसिक चीज है कि हमको किसी को भी नहीं देना है। ये तो सबसे पहला रूल है कि ओटीपी तो किसी को भी नहीं देना है, किसी कंडीशन में नहीं देना है।
1: और ये जो कुरियर वाले मांगते हैं तब?
0: देखिए सर, कुरियर वाले जो मांग रहे हैं तो हमको उनको जो ओटीपी देना पड़ता है वो ऐप के जेन्युइन बेस्ड है क्या वो चेक करना जरूरी है। वो ओटीपी हमारे पास आ रहा है तो कहां से आ रहा है, वो हमारे बैंक का तो नहीं है। सामने वाला जो इंडिविजुअल मांग रहा है वो उसका, देखिए कोई भी इंडिविजुअल जो आपके पास आता है उसके डिटेल्स आपके ऐप में रहते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो बंदा वही है। आजकल सारे ऐप ने ये फैसिलिटी दी, और वो आपसे वो डिस्क्लेमर भी लेते हैं कि वो जो इंडिविजुअल आपके दरवाजे पे आया है उसकी आइडेंटिटी आपको ऐप में दिखती है, वो वेरीफाई किए बगैर आप उसको ओटीपी नहीं देना है।
1: क्या कोई लिंक भेज के आपका फोन हैक करके आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है?
0: देखिए सर, रिमोटली फोन हैक करना आसान चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लिंक ओपन करते हैं और लिंक ओपन करने के बाद कोई फॉर्म रहता है। जैसे आपका अगर HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में, SBI बैंक में अकाउंट है तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, उनको ये जानकारी रहती है इनका अकाउंट किस बैंक में। आप उसको फिल करते हो, उसके सारे डिटेल्स डालते हो, तो मीनवाइल आपको एक ओटीपी जनरेट हो जाता है। वो सारे डिटेल्स बैकएंड में वो क्रिमिनल को दिख रहे जो आप उस पर्टिकुलर वेब पेज पे फिल कर रहे हो जो उस लिंक से ओपन हुई है। जैसे ही आप फर्दर डिटेल्स उसमें डाल देते हो तो सामने वाले के पास आपके सारे डिटेल्स है जो कॉन्फिडेंशियल है, जो बैंक ने आपको कहा है किसी को देना नहीं है। तो आपको बैंक को भी रिपोर्ट करना है कि मेरे साथ इस तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। एंड अगर आपने कोई डिटेल्स नहीं दिए है, आपने कोई भी ओटीपी या कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है, फिर भी अगर आपके अकाउंट से पैसे गए तो आप डिस्प्यूट फॉर्म बैंक में भर सकते हो। और RBI की गाइडलाइन से अगर आप वो उस क्राइटेरिया में बैठते हो तो आपको बैंक रिफंड भी कर सकता है, बट उसके लिए आपको बैंक में जाके डिस्प्यूट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जो भी रूल्स रेगुलेशंस RBI ने सेट किए हुए उसमें आप क्राइटेरिया में बैठते हुए नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा, जो आपको आपके बैंक मैनेजर डिटेल्स दे सकते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि विवेक जी, इतना सारा आपका एक्सपीरियंस है, इतने सारे आप साइबर क्राइम सुलझाते रहते हैं, क्या अपना मोबाइल किसी जान पहचान के दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी या ट्रेन और प्लेन में यात्रा कर रहे साथ में लोग, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर अचानक मिल जाने वाले, अपने आप को मुसीबत में फंसा दिखाने वाले लोगों को देने के बाद कोई मुसीबत आ सकती है?
0: बिल्कुल आ सकती है सर। आपका फोन या आपका वाईफाई या आपको किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए।
1: कई बार लोग वाईफाई भी मांगते हैं कि जरा ये हॉटस्पॉट लगा दो।
0: आपके इस बात पे मुझे वही स्ट्राइक हुआ, क्योंकि अगर आप किसी को वाईफाई दे रहे हैं, उस वाईफाई को यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, मान लीजिए आप किसी ने मेल कर दिया आपके इंटरनेट को यूज करके कि इस पर्टिकुलर मॉल में बॉम्ब रखा हुआ है, इस एयरपोर्ट पे बॉम्ब रखा हुआ है, या फिर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, तो वो IP एड्रेस आपका कैप्चर होकर पुलिस आपके पास आएगी। तो पहले तो आपका जो भी इंटरनेट है मोबाइल का उसको बहुत सिक्योर रखिए। फ्री वाईफाई भी अगर आप यूज करें तो केयरफुली यूज कीजिए। और रही बात कि आपने आपका फोन किसी के हाथ में देना, इससे ज्यादा डेंजरस तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जितना भी डेटा है वो आपके मोबाइल में है। एंड वो डेटा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे एप्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे कि जो सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, एक सेकंड के लिए आपका मोबाइल चालू हो गया, इंस्टॉल कर लिया, उसने मैसेज डिलीट कर दिया, जो भी डेटा है वो रियल टाइम में सामने वाले के पास जा सकता है।
1: अगर हमने अपना फोन किसी रिपेयर शॉप को दे दिया तब?
0: देखिए सर, रिपेयर शॉप में काम करने वाला इंडिविजुअल उसके अंदर क्या ऐप इंस्टॉल करेगा इसका गारंटी आप नहीं ले सकते। तो जो ऑथेंटिक शॉप्स है, सर्विस सेंटर्स है, वहां पे ही आपने आपका मोबाइल जो है वो रिपेयरिंग के लिए देना चाहिए, क्योंकि किसी भी मोबाइल में कोई वायरस डालना या ऐप डालना कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसे भी ऐप्स है, लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि मेरे आईफोन है मेरे पास, एप्पल का फोन है तो उसमें, ऐसी चीजें किसी भी फोन में की जा सकती है। इसी वजह से आपका फोन प्रॉपरली पासवर्ड इनेबल्ड रखना, आपके जो ऐप्स है उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना ये बहुत जरूरी है। एंड वो आप करेंगे तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू है तो डेटा को वैल्यू है। तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है एंड आपके मोबाइल से कॉल की जा सकती है, मैसेजेस की जा सकती है, कुछ भी क्राइम हो सकता है, या आपका डेटा जो है उसको

0: यूज करके क्राइम हो सकता है. आपका ईमेल आईडी लॉग इन होता है, आपके सारे एप्लीकेशंस लॉग इन होते हैं, आपके सारे आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आपके मोबाइल में होते हैं, तो उसका भी मिसयूज हो सकता है.
1: तो अपना फोन सुरक्षित रखना सबसे पहले
0: बहुत जरूरी है. अच्छा पासवर्ड प्रोटेक्टेड वो होना चाहिए, 4x0 नहीं होना चाहिए. लोग आजकल 4x आईफोन में पासवर्ड सेट करते जीरोस. सो पासवर्ड ऐसा रखिए, या तो डेट ऑफ बर्थ सेट करते तो ऐसे पासवर्ड रखिए, और उसको ऑफनली चेंज भी करना चाहिए. और किसी को आपका पासवर्ड जो है बताना नहीं चाहिए, वो बहुत जरूरी है, जिससे हम आने वाले खतरे को टाल सकते हैं.
1: बिल्कुल. अब देखिए इतनी सारी बातें आपने बताई, तो एक गाना तो हम आपकी पसंद का सुनवाई सकते हैं आपको,
0: होश वालों को नजर क्या सरफरोश.
1: क्या बात है, गाने आप बहुत शानदार सुन रहे हैं. सरफरोश फिल्म का ये गीत जगजीत सिंह की आवाज में है.
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान. आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए. इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान. नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की. आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
3: विविध भारती से प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली. प्रायोजक देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री.
4: हमारी संस्कृति हमारे संस्कार. विश्व वैदिक सनातन न्यास द्वारा सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम संस्कृति संवाद डॉक्टर संतोष सिंह के साथ प्रत्येक शुक्रवार शाम 6:30 बजे विविध भारती वाराणसी पर.

0: बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे जी से, और बहुत सारी बातें हमने की। विवेक जी, चलते चलते एक आखिरी जरूरी नुस्खा, जादू की पुड़िया क्या देना चाहेंगे आप अपने सुनने वालों को?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि एक चीज हर किसी ने अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। आपको अगर साइबर क्राइम से बचना है तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, आपको आने वाला जो भी कॉल है, जो भी मैसेज है, वो जेन्युइन है या नहीं, आप उसको वेरीफाई करें। जहां पे भी पेमेंट की बात आएगी, आपको अलर्ट बोर्ड पे जाना जरूरी है कि कोई भी पेमेंट करने से पहले आप वो जेन्युइन है या नहीं, उसको आप वेरीफाई कीजिए। एंड अगर आपके साथ फिर भी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या आपके रिलेटिव फैमिली किसी के साथ भी हो जाता है, तो सबसे पहला काम है आपको 1930 ये जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल करना है। अगर वो व्यस्त आए तो cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे आपको रिपोर्ट कर सकते हैं आप। एंड फिर आपके पास और एक ऑप्शन है, आप जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन में आज साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं।
0: जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना वक्त और इतनी जानकारियां आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
2: आप सुन रहे थे महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक तांबे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं गुरमीत रामलमी द्वारा लिखित और निर्देशित झलकी मुबारकबाद।
1: श्रीधरन, अरे ओ श्रीधरन, श्रीधरन तुम भी अजीब आदमी हो। पुकारते पुकारते मेरा गला भी खुश्क हो गया। तुम हो कि अपनी धुन में ही चले जा रहे हो।
2: बंधु तुम, सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया।
1: श्रीधरन, तुम्हारे साथ ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: श्रीधरन होना क्या है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।
2: बंधु हम तो ये जानते हैं कि वही होता है जो मंजूरे बंधु होता है।
1: क्यों बेकार में फूंक दे रहे हो यार, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
2: बंधु पहले तुम्हारा इनसे परिचय तो।
1: अरे इतनी जल्दी भी क्या है?
2: क्यों,
1: परिचय तो वहाँ किया जाता है जहाँ इंसान की कोई जानकारी ना हो।
2: कैसी जानकारी?
1: श्रीधरन के शौक के बारे में किसको पता नहीं।
2: शौक? कैसा शौक?
1: वैसे ऐसा शौक पालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरह हर कोई ट्रिकबाज नहीं हो सकता।
3: आप किन बातों में उलझ गए, आगे क्यों नहीं चलते?
1: मैडम, मिस्टर श्रीधरन जी हमारे भी घनिष्ठ मित्र हैं। अगर अब नहीं है तो क्या हुआ, पहले तो थे ही। प्लीज हमें भी दो बातें करने दो।
3: आपके घनिष्ठ मित्र जरूर होंगे, लेकिन इस वक्त तो बोर मत कीजिए।
1: श्रीधरन जी, ये नई चिड़िया कहाँ से?
2: बंधु तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो?
1: जी कहना क्या है, मैं वही तो कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ।
2: क्या देख रहे हो?
1: नई चिड़िया।
2: क्यों बात बात बेसिर पैर के आंक रहे हो? तभी तो मैंने शुरू में ही कहा था कि तुम्हारा इनसे परिचय करा दो।
3: ये आपके कैसे मित्र हैं जी, मुंह में जो आता है बोले जा रहे हैं।
2: रेखा डॉट माइंड, इन्हें दिल लगी करने का शौक है।
1: मैंने सोचा था कि किसी दिन श्रीधरन के हाथ में कुमुदनी का हाथ होगा और मैं दोनों को मुबारकबाद दूंगा, पर तुम तो अभी अपना शौक ही पूरा कर रहे हो।
2: बंधु भाई मजाक छोड़ो, भी इस वक्त भी मुबारकबाद देने का ही शुभ अवसर है। मैं कब से कह रहा हूँ कि रेखा मेरी पत्नी ही तो है, 2 हफ्ते पहले ही तो हमारी शादी हुई है।
1: अच्छा, रियली आप दोनों की शादी हो चुकी है?
2: जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है, पर तुम मेरी कोई बात सुनो तब ना।
1: इसका मतलब ये हुआ कि बेचारी कुमुदनी के साथ सिर्फ शौक का ही इश्क चल रहा था।
2: कुछ कहने से मैं तुम्हें रोक तो सकता नहीं, पर अब रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और तसल्ली से बातचीत करें।
1: डियर अब नहीं, मैं अभी मिसेस के इंतजार में हूँ, हमें कहीं जरूरी पहुँचना है, उसने पहले ही देर कर दी है। ओके, शादी की मुबारकबाद, अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे।
3: अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, क्या आगे नहीं जाना है?
2: इस बंधु के बच्चे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
3: लेकिन एक बात तो पक्की है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता।
2: उस बंधु के कहने मात्र से ही तुम्हें आग नजर आने लगी है।
3: ज्यादा बहाने मत बनाओ।
2: भला मैं क्यों बहाने बनाने लगा?
3: अपराधी आदमी के पास बहाने बनाने के अलावा और कुछ नहीं होता।
2: देखा, सच मानो कुमंदनी नाम की किसी लड़की को मैं जानता तक नहीं। मैं यही सोच रहा था कि बंधु ने उसका नाम कैसे लिया।
3: जब आपका शौक ही ऐसा रहा है तो किस किस का नाम याद रखोगे?
2: तुम्हारे वहम का इलाज मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुमसे शादी से पहले और ना ही अब मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं।
3: झूठ बोलने के लिए किसी तरह का प्रयास

0: कि ममता मेरी पत्नी है जिसके लिए तुम ये सब कह रही हो।
1: लेकिन लेकिन तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम मैरिड हो।
2: अच्छा, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ना जाने क्यों गले पड़ती जा रही है, इतनी हिम्मत।
1: मैडम, गले मैं नहीं तुम पड़ रही हो। मिस्टर बंधु सत्यार्थी तो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड है। चलो जी, हम कहीं और चलते हैं। यहाँ रहेंगे तो ये बिना मतलब के कबाब में हड्डी बनती रहेगी।
0: तुम मुझे कहाँ खींचे जा रही हो, प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। कहा ना, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं।
1: लगता है इस वक्त तुम्हारा मूड नहीं है मुझसे बात करने का। ओके, मैं अभी चलती हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊंगी। ओके, बाय बाय।
0: अजीब बात है, ना जाने ये पागल कहाँ से आ टपकी।
2: वहाँ से ही टपकी होगी जहाँ आप उसे रोज मिलते होंगे।
0: क्या मतलब?
2: वही जो तुम जानते हो।
0: क्या जानता हूँ?
2: कि वो कौन है।
0: कौन है?
2: वही होगी जिससे रोज मुलाकातें करते हो।
0: कौन मुलाकात करता है, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानता।
2: मेरे सामने भोले बनने से वस्तु स्थिति में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं।
0: ममता, यकीन करो वो कोई पागल थी।
2: हाँ, जब पोल खुलने लगी तो वो पागल हो गई। भला ऐसी कौन शरीफ औरत होगी जो सबके सामने पराए पुरुष के गले में हाथ डाल देगी।
0: ऐसी बेवकूफी करने से भला मैं कैसे रोक सकता था।
2: जब सब कुछ मेरे सामने हुआ है तो और आप कह भी क्या सकते हैं। कितने आत्मविश्वास से वो आपको अपना फास्ट फ्रेंड कह रही थी, आपको हाथ पकड़कर खींच रही थी। ऐसी औरतों के साथ घूमते हुए आपको शर्म नहीं आती है क्या?
0: ममता,
2: दूसरों की तो नुक्ताचीनी करते हो जबकि खुद दिल से काले हो। बाल बच्चों वालों को ऐसी गिरी हरकतें करना शोभा देता है क्या? सच्चे और ईमानदार दिखाने के लिए अपने नाम के आगे क्यों सत्यार्थी लगा रखा है?
0: ममता, धीरे बोलो, सब सुन रहे हैं, फिर बेमतलब की बातें तो मत करो। बेहतर है अब घर चलते हैं।
2: मेरा कोई घर बार नहीं है। अब उसी नखरे वाली को ले जाओ, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे।
0: अब कहाँ जा रही हो?
2: जहाँ मेरा दिल करेगा। तुम उस परी को अपने साथ ले जाओ।
3: अब भाभी जी, क्या हुआ, क्यों भाई साहब से बिगड़ रही हैं?
2: मुझसे क्या पूछते हो, पूछो पूछो अपने धोखेबाज 420 दोस्त से।
0: श्रीधरन, मैं आप लोगों से मिलकर यहाँ आ गया। यहाँ से हम दोनों को बाजार जाना था, चलते चलते चाय पीने बैठ गए तो ना जाने एक मॉडल टाइप की कौन सी लड़की थी वो मेरे पास आकर बैठ गई और लगी इधर उधर की बेतुकी बातें हाँकने। मैं उसे जानता तक नहीं, पहचानता भी नहीं, बस उसी बात को लेकर ममता बिगड़ रही है।
3: रेखा, अब आ भी जाओ ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 10 वर्षों के वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाए।
1: भाई, बंधु जी ने सोचा शायद यही मुबारकबाद कहना जानते हैं।
0: ममता ममता, देखा मैंने कहा था ना कि ये मुझे मिसेस श्रीधरन ही लगती हैं। बदले हुए कपड़ों में मैं पूरी तरह से पहचान नहीं पाया था।
3: तुम भी तो सड़क पर चलते चलते हम दोनों के बीच में संदेह के बीज बोए थे।
1: और अगर चंदन भाई ना आते तो हमारा वही युद्ध छिड़ जाता, इसलिए बंधु भाई को सबक सिखाना जरूरी था।
3: मेरा ख्याल बंधु जी, आइंदा के लिए तुम शंका के बीज बोने की हरकत नहीं करोगे।
0: अरे बाबा, कभी नहीं। ममता का गुस्सा देखकर तो मेरी चिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ कि निष्ठावान से निष्ठावान नारी भी आशंका की कितनी जल्दी शिकार हो सकती है।
1: तो आप लाइन पे आ गए
0: हमेशा के लिए।
4: हवा महल में अभी आप सुन रहे थे झलकी मुबारकबाद। इसके लेखक और निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। आकाशवाणी शिमला की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल।

0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कमाल खान, सुजैन, सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है वांटेड।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों लीजिए सुनिए अगला गीत बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और नाजिया हसन और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अनवर खालिद ने, संगीत है बिद्दू का और फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत। नीरज श्रीधर अलीशा चुनौई की आवाजों में, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश सुनिए यो यो हनी सिंह और जैस्मिन की आवाजों में। गीतकार संगीतकार है यो यो हनी सिंह और फिल्म का नाम है किक।

0: साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इस गीत को लिखा है पुनीत शर्मा ने, संगीत है रोशन का रोहन का, और फिल्म का नाम है संजू।
1: प्राण प्रिय

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी 2 स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस

0: शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
1: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प

0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CFC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। 0 हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9.

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक महफूज और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर पेरिस में मुनाकिदा पहले बैन अल-अक़वामी खलाई समिट से खिताब किया। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के कल भारत पहुंचने की तवक्को है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कुदरती आफात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोई भी हलाकत न हो के नजरिए के तहत आबोहवा की तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले मजबूत गांव और शहर बनाने पर जोर दिया। भारत और रूस ने सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरका तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को 105 इलाकाई टर्बोप्रॉप तैयारियों की मुमकिन फराहमी के सिलसिले में पेशरफ की है। मरकज ने ई कॉमर्स जाब्तों में तरमीम करते हुए कीमतों में शफाफियत, स्पॉन्सर शुदा फहरिस्तों और तलाश के नतज में हेरफेर से मुतालिक जवाबित मजीद सख्त कर दिए हैं। जनूबी कोरिया में जारी आलमी पैराशूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार आगाज करते हुए 4 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने का एक तमगा भी शामिल है। और खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत रिकॉर्ड 0 के मुकाबले 19 गोल की जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बैन अल-अक़वामी कानून, बातचीत और कसीर मुल्की तआवुन पर मबनी एक महफूज, पुरमन और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि साइंसी डेटा को खुलेपन और दयानतदारी के साथ पूरी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वजीर आजम ने यह बात आज फ्रांस के शहर पेरिस में मुनाकिदा बैन अल-अक़वामी खलाई समिट से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कही।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि जैसे जैसे खलाई मदार ज्यादा गंजान होते जा रहा है और खलाई सरगर्मियों में शामिल ममालिक और इदारों की तादाद बढ़ रही है, टकराव के बजाय तआवुन, मुख्तसर मुद्दती फायदे के बजाय पायदारी और अखराज के बजाय शमूलियत को तरजीह दी जानी चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत का खलाई सफर इसी फलसफे की अक्कासी करता है।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: भारत के खलाई सफर में होने वाली नुमाया पेशरफ्त का जिक्र करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि चंद्रयान स्वयं ने भारत को चांद के कुतुब जनूबी के करीब उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनाया, जबकि आदित्य L1 सूरज के राजों से पर्दा उठाने के अमल में मसरूफ है।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar south pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way. The energy of enterprise is joining the excellence of ISRO.
0: वजीर आजम ने खलाई सफर में ISRO के रोल की सताइश करते हुए कहा कि ISRO ने अपनी शानदार कारकर्दगी और कम लागत वाले खलाई मिशनों के जरिए आलमी सतह पर काफी तारीफ हासिल की है। उन्होंने कहा कि ISRO की सलाहियतें किसानों और माहीगीरों की मदद, मौसम की पेशगोई, कुदरती आफात से निमटने और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में काम आ रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि 34 ममालिक के 430 से ज्यादा सैटेलाइट भारतीय रॉकेटों के जरिए खला में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ISRO की टेक्नोलॉजी और बैन अल-अक़वामी शराकतदारी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद

0: है। जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों, इंजीनियरों और तकनीकी माहिरीन की कई नस्लों की खिदमात, लगन और मेहनत को सराहा। वजीर आजम ने कहा कि इसरो ने मिशन दर मिशन और कामयाबी दर कामयाबी अपनी साख कायम की है और भारत को खलाई सफर करने वाले मुल्कों में बाइस इफ्तिखार बनाया है। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। कौमी राजधानी में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया है और वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। भारत मंडपम में हफ्ते के रोज शुरू होने वाली दो रोजा सरबराह मीटिंग दुनिया की 11 बड़ी उभरती और तरक्की पजीर मईशतों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करेगी। इब्तदा में ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल थे। 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब को शामिल किए जाने के बाद ब्रिक्स में तौसी हुई, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स शराकतदार ममालिक की हैसियत से सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स ममालिक मजमूई तौर पर दुनिया की तकरीबन 49% आबादी और आलमी मजमूई घरेलू पैदावार GDP के तकरीबन 40% की नुमाइंदगी करते हैं। चीन की वजारत खारजा ने आज ऐलान किया कि सदर शी जिनपिंग इस हफ्ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए भारत पहुंचेंगे। उनका यह दौरा आलमी सतह पर गैर मुस्तहकम सूरतहाल, मगरबी एशिया में जारी तनाजे और रूस यूक्रेन जंग के दरमियान हो रहा है। तकरीबन 7 बरसों में ये सदर शी जिनपिंग का भारत का पहला दौरा होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कौमी राजधानी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए आलमी रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की तवक्को है। यह एक बड़े पैमाने की लॉजिस्टिकल मशक रही है, जिसमें वजारत खारिजा ने वजारत दाखिला और दीगर वजारतों के साथ साथ दिल्ली पुलिस से भी करीबी राबता और ताउन किया है। दिल्ली पुलिस ने आने वाले मुअज्जज मेहमानों को ज्यादा से ज्यादा तहफ्फुज़ फराहम करने और आवाम को कम से कम दुश्वारी के लिए वसी इंतजाम किए हैं। कौमी राजधानी में दिल्ली पुलिस के तकरीबन 15,000 अहलकारों और नीम फौजी दस्तों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस के खसूसी कमिश्नर हिफाजती सिक्योरिटी डिवीजन मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा है कि मुअज्जज मेहमानों की आमदोरफ्त के रास्तों पर खसूसी निगरानी के कैमरे भी नस्ब किए गए हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: भारत की सदारत का महवर मौजू के 4 सुतून मजबूत इख्तरा, ताउन और पायदार तरक्की का क्याम है। सदारत संभालने के बाद से अब तक 350 से ज्यादा मीटिंगें मुनाकिद हो चुकी हैं, जिसमें ब्रिक्स वज़राए खारजा का इजलास, ब्रिक्स कौमी सलामती के मशीरों का इजलास, वजारती इजलास, शेरपा और इदारे के सरबराह सतह का इजलास, वर्किंग ग्रुप सतह का इजलास और आवाम से आवाम और कारोबार से कारोबार के रवाबित शामिल हैं। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
0: इस दौरान दो रोजा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से कबल दिल्ली पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आइंदा पीर तक कौमी राजधानी में ड्रोन्स और दीगर छोटे फजाई प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पेश नजर राष्ट्रपति भवन, म्यूजियम और अमृत उद्यान कल से 13 सितंबर तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरिएट ने कहा है कि इस हफ्ते राष्ट्रपति भवन के सब्जादार में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब भी मुनाकिद नहीं की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान तरक्याती नेटवर्क की खिदमात को सराहा। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और प्रिंस आगा खान के दरमियान हुई बातचीत में पानी, सफाई, सुथराई, खवातीन की क़यादत में अपनी मदद आप ग्रुपों, तालीम, माशरती तरक्की के तई आगा खान तरक्याती नेटवर्क की खिदमात के बारे में तबादले ख्याल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने हिफ्जान सेहत, ज़राअत, देही तरक्की, नौजवान और खवातीन को बाइख्तियार बनाने में आगा खान तरक्याती नेटवर्क के साथ भारत के इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے ملک کے قدرتی آفات

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवेरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए, इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर

फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो

बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे। महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती। वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलेन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी काम

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

0: छाया गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे पेश करेंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे।
2: वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
2: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

आसमान की खुली पलकों पर सितारों ने ख्वाब सजाए हैं, जरा सी देर हो जाए तो क्या होगा, दिल से दिल की बात कुछ और होने दो, शम्माए मोहब्बत कुछ और देर जलने दो, जुल्म ढाने का वरना डर होगा, ये इल्जाम भी हमारे सर होगा।

छाया गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सलूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: ढलती जाए रात।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ढलती जाए रात। FM 100.6 पर यह विविध भारती का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र

0: सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead,

0: And we have it there, a comprehensive, confident, a very convincing victory out there by the Indian women today. 149 for 6 that the Indian women made in 20 overs. Bangladesh was able to put up only 109 for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. And thereby, the Indian women finally storming into the finals of the ongoing Asia Cup 2026. I'm Sakshi Mandwal, joined over here by my dear friend and co-host for the evening, Anand Srivastav. Good evening, Anand.
1: Good evening. और इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत।
2: शुक्रिया।
0: ओके, वेरी क्विक क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को भी बधाई दे दें कि भारतीय महिलाएं अब की बार एक बार फिर से एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एंटर कर चुकी है। द 10th कंसेक्यूटिव एंट्री बाय इंडिया, इंडियन वुमेन शुड आई से, इन क्रिकेट इन एशिया कप फाइनल्स। मोना, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
2: बिल्कुल, 10वां टूर्नामेंट है, 10 बार इंडिया फाइनल में पहुंचा है, तो डोमिनेंस की अगर कोई परिभाषा होती है तो वो यही है। और जिस तरीके से आज खेल दिखाया है भारतीय टीम ने, हम पहले बात कर रहे थे कि रन में शायद हम पीछे रह गए, लेकिन गेंदबाजों ने वो कमी पूरी कर

0: कर दी। और स्पिनर्स खास तौर पे यहाँ बात करेंगे दीप्ति शर्मा की, क्या मैच विनर प्लेयर है, फॉर्मेट कोई हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी वर्ल्ड कप में, और अभी आप देखिए कि सबसे ज्यादा 11 विकेट उनके नाम हो गए हैं एशिया कप में भी, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन।
1: जी हाँ, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दीप्ति शर्मा का। 26 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, साथ ही साथ नंदिनी शर्मा को 2 विकेट मिले, दोनों विकेट उनको आखिरी 2 गेंदों पर मिले हैं। साथ ही साथ श्री चरणी जो इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस साल भारत की लीडिंग T20I विकेट टेकर हैं, उनके नाम एक विकेट, और प्रेमा रावत ने भी 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। रविंद्र, देखने में ओवरऑल बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा। एक समय लग रहा था कि हम 10-15 रन पीछे हैं, लेकिन बांग्लादेश कहीं से भी इस रन चेज में टक्कर देता नजर नहीं आया।
2: देखिए शुरुआत में तो जैसे 2 ओवर निकले थे, 3 ओवर निकले, तो ऐसा लग रहा था कि टक्कर शेष शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इत्ता है श्री चरनी। ये बॉलिंग एनालिसिस शायद उसके ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन जो 4 ओवर में 14 रन और एक मेडन है, एक मेडन T20 में होना बहुत बड़ी बात है, और ये जो बॉलिंग दिखा रहा है ये पूरे मैच को पलट देती है। श्री चरनी इस समय एक स्पिनर सारे अच्छे हैं, लेकिन जो श्री चरनी बॉल कर रही है वो वाकई उसको लेवल बहुत ऊपर है, इसकी वजह से आपको अच्छी अच्छी टीमें इस समय धराशायी होती दिख रही है।
3: जी, और इसी बात को थोड़ा आगे लेके भी जाए तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट में मतलब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने शुरुआती फेज में हम देखेंगे पहले 6 ओवर्स के अंदर कोशिश जरूर करनी चाहिए थी कि फास्ट अटैक के थ्रू अग्रेसिव क्रिकेट से इनको लीड दिलवा सके, बट दे वर नॉट एबल टू स्टिक टू दैट मोमेंटम एंड पेसिंग। कंटिन्यूअस विकेट लॉस affected the Bangladeshi women very strongly today, Mona.
0: बिल्कुल, आप देखिए कि 4 विकेट निकल चुके थे, 70-75 रन का स्कोर था जब टीम का, और शुरुआत में लगा था कि एक दो अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे, खासतौर पे जो दूसरे तीसरे ओवर में एक चौका आया था ज़बरदस्त, और भारतीय खिलाड़ियों से भी कुछ कैच छूटे, पहले प्रतिका ने कैच छोड़े, उसके बाद एक कैच बाद में भी छूटा, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फील्डिंग लैप्सेस भारी पड़ जाए या बांग्लादेश के बैटर्स आज अच्छा खेल जाएंगे, लेकिन वो जो नियमित अंतराल पे उनके विकेट गिरते रहे और वो मोमेंटम बन ही नहीं सका, जिसको कहते हैं कि 150 रन भी अगर आपको बनाने हैं तो आपको एक एंकर चाहिए जो पारी को संभाल के खेल सके और दूसरे छोर पे बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आज़ादी दे, वो कहीं नज़र नहीं आया। गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेल के बांग्लादेशी बल्लेबाज आउट होते चले गए।
1: इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं?
4: मेरा काम है जी पुराना जिला फाइल का, पंजाब से बोल रहा हूँ कुलदीप जी।
1: जी बताएं।
4: मैं पहले तो सब देशवासियों को अपनी जो टीम है वुमेन टीम है फाइनल में पहुंची है उसके लिए बधाई देता हूँ जी, और आज तो ना शेफाली वर्मा ने वृंदर सुहा की याद दिला दी हमें जी।
1: ये कह रहे हैं शेफाली वर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की, इनको वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की याद आ गई।
2: बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपको याद आई, वृंदर अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, चाहे 2-3 चांसेस मिले लेकिन वाकई अच्छी बैटिंग करके उन्होंने टीम को स्कोर को 150 तक पहुंचाया, नहीं तो टीम का स्कोर लग रहा था कि 125-30 पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन अगर लेकिन ऐसी बैटिंग उनसे कंसिस्टेंटली चाहिए, क्योंकि 6 ओवर जो पहले पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं वो बहुत क्रुशियल होते हैं। हमने पहले बताया था कि बांग्लादेश को भी पहले 6 ओवर में 40 रन तो चाहिए अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, क्योंकि स्पिनर्स के बाद गेम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, इसलिए वो मीडियम पेसर्स को अटैक भी कर रहे थे शुरू में कि इनको जितने ज़्यादा रन बटोरे जा सके, लेकिन वो श्री चरनी ने वो तीसरे ओवर में ही आके वो गेम को पाछा पलट दिया।
3: सवाल मेरा आपसे मोना ये होगा कि हम बात करते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट में काफ़ी बेहतरी हुई है ओवर द ईयर्स, इजाफा जिसको हम कहते हैं उनके खेल के प्रदर्शन में भी, लेकिन क्या आपको सही मायने में दिखता है दैट द बांग्लादेशी वुमेन्स क्रिकेट हैज़ इवॉल्व फॉर द बेटर और देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन बांग्लादेशी वुमेन क्रिकेट?
0: देखिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते, बेहतरी हुई है उनके पास, कई अच्छे खिलाड़ी आए हैं जिनमें से एक उनकी स्विंग बॉलर है मारूफा अख्तर, लेकिन एज अ टीम एज अ यूनिट आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेल दिखाना होगा, अगर एक डिपार्टमेंट कम रह गया है तो दूसरे को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी जैसा चैंपियन टीमें करती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमी है अभी जो नज़र नहीं है, जो नज़र आती है कि आप जब तक ICC टूर्नामेंट बड़े टूर्नामेंट नहीं जीतोगे, एक पैरामीटर होता है आपके जो आपने प्रगति